सुप्रभात। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज मंगलवार है। 1948 की बैसाख मास की 22वीं तिथि तदनुसार 12 मई 2026 सुबह की 5:56 हुए हैं। अब आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6 बज रहे हैं, अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल

0: करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब, दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन, शिक्षा का महत्व, मनुष्य का चिंतन। वाचन स्वर है मंजुला नेगी का।
3: मनुष्य का जीवन उसके स्वयं के चिंतन, मनन और विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक सोच होने से व्यक्ति का चिंतन उत्कृष्ट होता है और उत्कृष्ट चिंतन का धनी व्यक्ति सहज रूप से उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है व्यक्ति का पूर्ण विकास। यदि शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होता है तो इसका अर्थ ये होगा शिक्षा की पद्धति में या उस व्यक्ति की सोच में कोई कमी रह गई। प्रेम और सहानुभूति जैसे सद्गुणों के विकास के लिए ये आवश्यक

0: है कि घृणा को हृदय में कोई स्थान न मिले। विचारों की शुभता जीवन में कैसे प्रवेश पाए, साथ ही विचार कैसे तेजस्वी हो, विचारों में सकारात्मक का प्रवेश कैसे हो, इसके लिए आवश्यक है नकारात्मक चिंतन पर विराम लगाना और सकारात्मक चिंतन को स्थान देना, उत्कृष्ट और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, नियमित दिनचर्या, घर में पवित्र वातावरण का सृजन, गुरु के चरणों में आपकी श्रद्धा और प्रतिदिन उस शक्ति से प्रार्थना कि हमारा हृदय शुभ विचारों से युक्त हो। विचारों की श्रेणी भी जीवन में विभिन्नताओं से युक्त होती है। आप स्वयं के विचारों का परीक्षण कर सकते हैं, मंद विचार, मध्यम विचार, उग्र, प्रचंड या तीव्र विचार। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति जैसे चित्र की कल्पना करता है, जैसे विचार बनाता है, वो वैसे ही जिंदगी प्राप्त करता है। आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने मन मस्तिष्क में उन्हीं विचारों को प्रवेश दे और उसी पर चले। जीवन में चाहे विपरीत आंधियां चल रही हो, चाहे आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, दुख के कारण आपकी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा रहा हो और कोई मार्ग ना सूझ रहा हो, तब भी अपने सपनों को और अपने विचारों को कभी ना टूटने दीजिए और विचारों पर दुख की धूल भी कभी ना जमने दीजिए। भारतीय परंपरा में अनादि काल से सत्य, अहिंसा और त्याग बलिदान का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। भगवान बुद्ध और महावीर ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग सिखाया, किंतु महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को ईश्वर का दर्जा प्रदान कर व्यवहारिक जीवन में उन सिद्धांतों को स्वयं जीकर दिखलाया। इस प्रकार परंपराओं से प्राप्त विद्या तथा आसपास के वातावरण और पुस्तकों से प्राप्त शिक्षा का प्रतिपल व्यवहारिक उपयोग करते हुए नकारात्मक तत्वों को छोड़कर सकारात्मक चिंतन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है और उसकी कीर्ति चिरकाल तक अमर रहती है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, शिक्षा का महत्व, मनुष्य का चिंतन। वाचन स्वर था मंजुला नेगी का। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब वक्त हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस मातृ वंदना के साथ।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवा रहे हैं गणपति वंदना हरिओम शरण के स्वर में।

श्रोताओं, समझ, शक्ति और सहनशीलता जीवन में बेहद ज़रूरी गुण हैं। जिस व्यक्ति के पास सहनशीलता और समझ शक्ति होती है, वही जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत, मजबूत और सफल बना रहता है। सहनशीलता व्यक्ति को टूटने से बचाती है और समझ शक्ति उसे सही दिशा दिखाती है। इसलिए समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें ना दें, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं।

समूह स्वर में ये भजन अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 MHz पर। और पेश है कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

कृतार्थ हो गया है। एक दिवस मुनिवर वशिष्ठ श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुए। समुचित आदर सत्कार पाकर कुलगुरु प्रेम विफल हो गए। सूर्यवंश का पुरोहित बनना स्वीकार किया था। बोले, यूं तो पुरोहिती कर्म बहुत अच्छा नहीं होता, इसी कारण वेद पुराण स्मृति सभी ने इसकी निंदा ही की है, किंतु ब्रह्मा ने उन्हें ये भार इसलिए ग्रहण करने का परामर्श दिया था कि एक दिन स्वयं परब्रह्म परमात्मा नर रूप धारण कर सूर्यवंश में जन्म लेंगे। अतः जो स्थिति योग यज्ञ दान और तपस्या से प्राप्त होती है वो उन्हें इसी कर्म यानी पुरोहिती के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने याचना

याचना की, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतर मेरे हृदय में आपका प्रेम अक्षुण्ण बना रहे, कभी कम न हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्रोताओं आपको बता दें कि आज रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होगा। आज सुबह 10:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम यादें रेडियो की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बात होगी श्री अरुण डबराल से कल्पना पंकज की। सुबह 7:30 पर शैल संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा राकेश कुमार शाह और साथियों के गाए गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा सुबह 8:30 का। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और 9:05 पर सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर आज हम आपको सुनवाएंगे लतिका

0: चौहान के गाए रोहेल खंडी लोकगीत और व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा सुबह 11 बजे का। आज दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा अरुण कुमार स्वामी के गाए भजन। दोपहर 12:30 पर महिला जगत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्षों के अवसर पर भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम महिला स्वास्थ्य जागरूकता में रेडियो की भूमिका। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे आज दोपहर 1:30 पर। कार्यक्रम सैनिकों के लिए का प्रसारण होगा दोपहर 2:30 पर और 3:02 पर सुनिएगा गाने नए तराने के अंतर्गत फिल्मी गीत। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे वीजी जोग का वायलिन वादन, आप प्रस्तुत करेंगे राग शुद्ध सारंग। युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:10 का और पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का खास कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुनेंगे शाम 5:45 पर। शाम 7:00 सुनिएगा किसान साथियों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत और शाम 7:50 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार और 8:15 पर सुगम संगीत में सुनिएगा मुकेश के गाए गीत। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। सुबह के 6:55 होने को हैं, अब आप सुनेंगे समाचार पहले संस्कृत में फिर हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता पश्चिम एशियाया संघर्ष दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है, पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पंच देशानां यात्रायां

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए

0: सहित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduce consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
2: Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to United Arab Emirates UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Senior BJP leader Himanta Biswa Sharma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. 4 ministers, including 2 from the BJP and 1 each from the AGP and BPF, will also take oath along with the Chief Minister. They are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. In a social media post, Mr. Sharma said that former Minister Ranjit Kumar Das will be the NDA's candidate for the Assam Assembly Speaker's position. This will be the second consecutive term for Mr. Sharma as Chief Minister and third term for an NDA government in Assam. The swearing-in ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen, among others.

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो
5: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज की आवाज में, फिल्म दिल्ली 6 से।

0: अभी आप सुन रहे थे शीर्षक गीत। यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 7:20 हुए हैं, सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। कुंभ मेला 2027 के लिए गंगा की स्वच्छता और अविरलता सुनिश्चित करने को केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर नगर निगम में महापौर जनता के द्वार अभियान का शुभारंभ। और राज्य के पर्वतीय जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। श्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों

0: की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत गंगा की स्वच्छता और अविरलता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि गंगा नदी की स्वच्छता और अविरलता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय प्रदेश सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और हेली सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि चारधाम हेली यात्रा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अधिक सुरक्षित, सरल और सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है।
1: DGCA के डायरेक्शंस के क्रम में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर जो एस्टेब्लिश किया है सिरसी और सहस्त्रधारा में, वहाँ पे DGCA के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बैठते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी रहते हैं, साथ ही वो ATC के कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट में रहते हैं और उसके बेसिस पे ही हम लोग सेफ फ्लाइंग को इंश्योर करते हैं। बैड वेदर कंडीशन को या अचानक से चेंज होने वाले वेदर के केस में हम लोग जो फ्लाइंग को स्टॉप करते हैं या सिक्योरिटी के दृष्टिगत तो और जो क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं वो विजिबिलिटी को लेके भी लगातार उस पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा भी मल्टीपल एविएशन सेक्टर के जो मैटर्स होते हैं उनको ये लगातार मॉनिटर करता है और डील करता है, तो इससे कहीं ना कहीं स्मूथ तरीके से या सेफ तरीके से यात्रा को इंश्योर करने में महत्वपूर्ण मदद मिल रही है।
0: यूकाडा के अनुसार 22 अप्रैल से अब तक 21,000 से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से चार धाम यात्रा कर चुके हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 11 में महापौर जनता के द्वार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मेयर विकास शर्मा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल शिकायतों का समाधान करना नहीं बल्कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना भी है।
3: माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का निवेश है कि जो भी केंद्र की योजना है, राज्य की योजना है, वो आम जनमानस तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हम लोग नगर निगम में समस्याएं सुनते हैं, अभी नगर निगम में हर हफ्ते हमारे यहाँ सारे विभागों के अधिकारी भी बैठ रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो काम पे जाती है जो नहीं पहुंच पाती है। तो आज हमने तय किया था कि हर सोमवार को अब हम अपने विभागों के साथ, जो हमारे जिले के प्रमुख विभाग है, पूर्ति विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, बिजली विभाग है, इनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो आज पहली बार वार्ड नंबर 11 संजय नगर में आपका मेयर आपके द्वारा अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है।
0: सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में गुरु शिष्य परंपरा के तहत भव्य शास्त्रीय संगीत समारोह 2026 का आयोजन किया गया। समारोह में देश के प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत वादकों और गायकों के साथ स्थानीय संगीत प्रेमियों और संगीतज्ञों ने भी भाग लिया। समारोह की मुख्य शास्त्रीय गायिका आकाशवाणी लखनऊ और वाराणसी की पूर्व कार्यक्रम निदेशक रश्मि चौधरी ने रागपुरिया, खमाज और दादरा की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका रश्मि चौधरी ने कहा कि संगीत की रोशनी निरंतर जलती रहे, इसी संकल्प के साथ इस शास्त्रीय संगीत समारोह की शुरुआत की गई।
4: खासतौर से इंटीरियर ऐसी जगह जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार नहीं पहुँच पाते, तो उनको यहाँ तक लाना, बच्चों को दिखाना कि ये किस तरह से संगीत की सेवा की जाती है और किस तरह से लोग कितनी मेहनत करते हैं तभी ऊंचाई तक पहुँच पाते हैं, तो ऐसे कलाकारों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना, लाना, जो नई पीढ़ी है उनको समझाने की बात है। और जैसे वो यहाँ आ करके उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया और वो शिष्य और शिष्यों को तैयार कर रहे हैं, तो हमारी भी गुरु, चूँकि मैंने भी संगीत सीखा, मेरा वोकल है, तो मेरी गुरु कहती थी कि एक दिया यदि मैंने जला दिया वो दिया अनेक दिया जला सकता है, तो ये रोशनी हमेशा जलती रहे, यही संकल्प के साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है।
0: मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग के अनुसार इस अवधि में राज्य के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा 4,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रियों से मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते

0: हुए यात्रा करने की अपील की है। साथ ही मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की भी सलाह दी गई है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न वैश्विक व्यवधानों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की अपील को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। इसी खबर पर नवोदय टाइम्स लिखता है, 24 घंटे में दूसरी बार प्रधानमंत्री ने की तेल गैस बचाने की अपील। दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, केंद्रीय मंत्रालय खुद भी पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करेंगे। हिंदुस्तान समाचार पत्र प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। अमर उजाला ने लिखा है, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें, कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। कुंभ मेला 2027 के लिए गंगा की स्वच्छता और अविरलता सुनिश्चित करने को केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर नगर निगम में महापौर जनता के द्वार अभियान का शुभारंभ। और राज्य के पर्वतीय जिलों में अगले 36 घंटे के दौरान भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 7:30 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल संगीत, जिसमें आज सुनिए राकेश कुमार शाह और साथियों के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं राकेश कुमार शाह और साथियों के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राकेश कुमार शाह और साथियों के गाए गढ़वाली लोकगीत। यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 8 बज रहे हैं, सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए

0: ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेउक शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
4: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त

0: अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच

0: समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
1: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sharma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality Recruitment Scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
4: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होता है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
3: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
4: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
3: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. Four ministers, including two from BJP and one each from AGP and BPF, will also take oath along with Chief Minister. We have more from a correspondent.
5: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The four cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers of BJP-ruled states. The Veterinary College ground at Khanapara in Guwahati has been fully decorated to host the swearing-in ceremony. Elaborate arrangements have been made at the venue in view of the large gathering expected for the event. The Kamrup Metro District Administration has also issued traffic advisories in several parts of the city to avoid congestion and ensure smooth movement of vehicles. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
3: Enforcement Directorate ED has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata, in connection with the South Domdom Municipality recruitment scam. We have more from a correspondent.
6: After more than 10 hours of interrogation, he is the first former minister to be arrested since the BJP government took charge in Bengal. ED officials say the alleged irregularities took place between 2014 and 2016. According to ED sources, across 17 municipalities, about 1,000 employees were recruited unlawfully. In the recent assembly poll, Bose lost to BJP by over 37,000 votes. According to Enforcement Directorate, the arrest was made under provisions of the Prevention of Money Laundering Act. Investigators have alleged that Bose recommended appointments of several candidates in the South Domdom municipality in exchange for financial benefits. The agency has also reported suspicious financial transactions during the course of the investigation. Sandeep Bandashgupta, Akashvani News, Kolkata.
3: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. The visit will further deepen India's partnership with Europe across sectors, particularly trade and investment ties, in light of the recently concluded India-EU FTA. We have more from a correspondent.
7: On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. Then the Prime Minister will reach Netherlands on Friday and call on King William Alexander and Queen Maxima. He will also hold talks with Prime Minister Rob Jetten. For the third leg of the visit, Mr. Modi will travel to Gothenburg, Sweden on Sunday and hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway on Monday for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. As part of the final leg of his visit, the Prime Minister will undertake an official visit to Italy on Tuesday.

नमस्कार श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं वंदना आप सभी के साथ हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से गीत के साथ। फिल्म है हावड़ा ब्रिज।

कार्यक्रम में अब कुछ सुर्खियां समाचार पत्रों से। चारधाम यात्रा पर ऑरेंज अलर्ट जारी, 12 और 13 मई की विशेष सावधानी बरतें श्रद्धालु। मौसम विभाग की ओर से 12 और 13 मई को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा और प्रतिकूल मौसम की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से अपील की कि वे यात्रा के दौरान मौसम की ताज़ा जानकारी अवश्य प्राप्त करें तथा पूरी सावधानी के साथ अपनी यात्रा की योजनाएं बनाएं। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने धामों के दर्शन किए। युगांडा के अनुसार 12 अप्रैल से अब तक 21,000 से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से चारधाम यात्रा कर चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत गंगा की स्वच्छता और अविरलता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रियों के मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करने की अपील की है। साथ ही मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की सलाह भी दी है। ये थी सुर्खियां समाचार पत्रों की। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर। मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म है श्री 420।

और अब एक नज़र इतिहास के पन्नों से। आज 12 मई है, साल का ये पांचवा महीना और इसका 12वां दिन इतिहास के पन्नों में रखता है कुछ खास जगह। आइए आपको बताते हैं। जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा नगर है। राव जोधा ने आज ही के दिन यानी 12 मई को 1459 में आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की थी। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर शहर यहाँ के महलों और पुराने घर में लगे छित्र पत्थरों से इसकी पहचान होती है और इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय नोबल सर्विस देने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हुई थी। इसकी शुरुआत साल 1965 में हुई। तब से लेकर अब तक इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ नर्सिंग द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज ही के दिन यानी 12 मई को हर साल मनाया जाता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले की आवाज़ में।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आया कि
2: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो
5: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027, आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: वेलकम बैक श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्कार देहरादून का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ब्लैकमेल से, जो कि 1973 में आई फिल्म थी, और इस गीत को कल्याण जी आनंद जी ने अपना संगीत दिया है। इन्जॉय कीजिए इस गीत को।

छोड़ के हर एक पिंजरा उड़ चलो आसमां की ओर, चाहे लाख लगा ले कोई बंदिशें, तोड़ दो हर एक छोर, करना है हर सपनों को पूरा, ठान लो एक बार, हर मुश्किल हल होगी जब इरादा होगा तुम्हारा कठोर।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए इसी गीत के साथ ही अब कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, जिसके लिए पता है आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 7088000731। इस पर आप भेज सकते हैं अपना मैसेज। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून, कल फिर से हाजिर होंगे नए साथी के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 9 बज रहे हैं। अब सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से टिहरी गढ़वाल जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख है जयप्रकाश कुकरेती का। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल ने पात्र लाभार्थी को मनरेगा योजना का लाभ न दिए जाने के मामले में गंभीर लापरवाही बरतने पर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मकानलाल पठोई के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आर्थिक दंड अधिरोपित किया है। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मकानलाल पठोई पर 95 मानव दिवस के समतुल्य 20,235 रुपये का दंड अधिरोपित किया गया है। 16 अप्रैल को टिहरी गढ़वाल के तहसील घनसाली के गेवाली गांव में निर्माणाधीन पुल को लेकर सामने आई लापरवाही पर जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कड़ा रुख अपनाया है। 9 अप्रैल 2026 को गांव के निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने पुल निर्माण कार्य में हो रही देरी और अनियमितताओं की शिकायत की। श्रोताओं, जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल के निर्देशानुसार भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना को बढ़ावा देने हेतु जनपद स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। डीएम ने बताया कि दिनांक 10 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक जन सामान्य के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नागरिक स्वयं आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। टिहरी जनपद में प्रस्तावित THDC परिसर में बहुउद्देशीय हॉल, इंडोर गेम्स एवं अत्याधुनिक सभागार, साइंस सेंटर के स्थायी निर्माण को लेकर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल ने विभिन्न संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र, डिबनू, भागीरथीपुरम, खांडखाल और कोटी सहित आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय जायजा लिया। बीते 18 अप्रैल को जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोटी कॉलोनी झाक डोबरा पर्यटन सड़क निर्माण से प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन लोगों को अपनी भूमि या संपत्ति के आकलन पर आपत्ति है, वे अपनी शिकायतें लिखित रूप में प्रस्तुत करें। बैठक के दौरान कुल 14 लिखित आपत्तियां दर्ज की गई। वहीं बीते 21 अप्रैल को भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सूर्य देव भूमि चैलेंज के द्वितीय संस्करण का गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में समापन समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि चैलेंज का आयोजन करने के लिए भारतीय सेना का हृदय से आभार व्यक्त किया एवं सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अधिशासी अभियंता जल संस्थान प्रशांत भारद्वाज ने 22 अप्रैल को आगामी ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए शाखा अंतर्गत पेयजल उपभोक्ताओं की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना की है। यह कंट्रोल रूम प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से साय 8 बजे तक संचालित रहेगा। किसी भी शिकायत के समाधान हेतु उपभोक्ता विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1804-100 अथवा कंट्रोल रूम नंबर 01376-232154 पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, बीते 3 मई को टिहरी गढ़वाल में आए तेज आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि के कारण उद्यानिकी फसलों को हुई क्षति के संबंध में अवगत कराया जाता है कि जिला प्रशासन एवं उद्यान विभाग इस कठिन समय में काश्तकारों के साथ खड़े हैं तथा उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार क्षेत्र में सेब, आड़ू, प्लम, कीवी तथा सब्जी फसलों जैसे टमाटर एवं शिमला मिर्च को क्षति पहुंची है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 25 से 30% तक नुकसान होने का अनुमान है। समस्त कृषकों काश्तकारों से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र में हुई फसल क्षति की सूचना एवं आकलन हेतु संबंधित विकास खंड स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों से शीघ्र संपर्क करें। आवश्यकता होने पर जिला स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। जिले की चिट्ठी के आखिर में आपको बता दें कि जिला खेल कार्यालय नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल के अधीन संचालित आवासीय बालक क्रिकेट छात्रावास के प्रतिभावान खिलाड़ी गुरजीत सैनी ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जनपद का नाम गौरवान्वित किया है। श्रोताओं, इसी के साथ जिले की चिट्ठी का यह अंक यहीं पर समाप्त हुआ। आपसे फिर मुलाकात होगी जिले की चिट्ठी के एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 9:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कार्यक्रम का ये पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है द बर्निंग ट्रेन।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर देख
3: पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: ये दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: सुबह के 9:22 उस स्टूडियो क्लॉक में हुए हैं। आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला गीत 1976 की आई फिल्म नागिन से है। गीत के बोल हैं, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर।

जो कि हिंदी सिनेमा का सबसे एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग है। और इस गीत को अपनी आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। इसका संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, जो कि 70 के दशक के सबसे लोकप्रिय संगीतकार में से एक थे। वर्मा मलिक द्वारा लिखा गया ये गीत इश्क में डूबे दो प्रेमियों की भावनाओं का वर्णन करता है, और इस गीत में सुनील दत्त और रेखा की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली है। सुनते हैं ये गीत फिल्म नागिन से।

कहने को तो वो बहुत कुछ था, कहने को तो बहुत कुछ था, पर लफ्ज़ कम पड़ गए। इशारों में दिल ले गए वो और हम देखते ही रह गए। तुमने तो कह दिया इशारों में, हम समझ बैठे वो प्यार है। तुमने तो कह दिया इशारों में, हम समझ बैठे वो प्यार है। अब तुम ही बताओ ऐ हसीं, ये कैसा अजीब इकरार है।

ये लगता है कि यहाँ

0: अब हमारे श्रोता जहाँ, हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का यह अगला गीत 1980 में आई फिल्म आशा से है। इस गीत में आम आदमी की सादगी को दर्शाया गया है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ है। आनंद बख्शी द्वारा लिखा हुआ ये गीत सामाजिक असमानता को दर्शाता है और कहता है कि चाहे गरीबी हो या अमीरी, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को गर्व से जीता है।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10 बज रहे हैं, अब सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नीता कांडपाल से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गंगा की स्वच्छता एवं अविरलता के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। पौड़ी जिले के पैठानी स्थित महाविद्यालय में अगले शैक्षिक सत्र से BTech, BEd, MBA, MCA पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षाएं आज से। प्रशांत पीसे को ओमान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने धामों के दर्शन किए। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है और रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। बाबा विश्वनाथ की जगदीश शिला डोली यात्रा गोपीनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हाईटेक निगरानी व्यवस्था लागू की। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण एवं भाषा मंत्री खजान दास ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से शिष्टाचार भेंट की। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने देहरादून स्थित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। IIT रुड़की में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विषयक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य में सरकारी स्कूलों की मासिक परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। साल भर में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों की 4 मासिक परीक्षाएं होंगी। आगामी 16 मई से उज्बेकिस्तान में होने वाले सेंट्रल एंड साउथ 7S रग्बी चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड की खिलाड़ी महक चौहान का भारतीय सीनियर महिला टीम में चयन हुआ। और मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:02 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम यादें रेडियो की, जिस पर सुनिए श्री अरुण डबराल से कल्पना पंकज की बातचीत, परिकल्पना मंजुला नेगी की।

0: नमस्कार। आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर प्रस्तुत है कार्यक्रम यादें रेडियो की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पूर्व कार्यक्रम आदिशाषी और प्रोग्रामर श्री अरुण डबराल। अरुण डबराल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले आपसे हम यही प्रश्न पूछना चाहेंगे कि रेडियो से आप कब जुड़े?
1: देखिए, रेडियो में जहाँ तक नौकरी की बात है वो तो बहुत बाद की बात है
0: जी।
1: लेकिन जब मैं छोटा था तभी से रेडियो हम लोग सुनते आए थे।
0: कितने बरस की होंगी आप?
1: 6-7 साल का था
0: जी।
1: तो उस समय हम लोग लैंसडाउन में रहते थे और वहां पे हमारे घर में जो रेडियो था वो बैटरी से चलने वाला था क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे नहीं थी।
0: जी जी
1: उसके बाद जब हम लोग लखनऊ गए तो वहां पे हमारे पास बिजली वाला रेडियो था
0: जी
1: और उस पे हम लोग आकाशवाणी लखनऊ इलाहाबाद सुना करते थे।
0: जी जी तो लखनऊ कैसे जाना हुआ?
1: लैंसडाउन में होने के बाद जब पढ़ाई की बात हुई तो मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई थे उनको स्कूल की दिक्कत हुई तो फिर मेरी माँ उनको पढ़ने के लिए लखनऊ ले गई क्योंकि मेरे पिताजी लखनऊ में नौकरी करते
0: जी
1: थे।
0: तो आपका लखनऊ में अध्ययन हुआ,
1: लखनऊ
0: पढ़ाई
1: में
0: लिखाई?
1: मेरा बचपन उसके बाद का और पढ़ाई लिखाई लखनऊ में रही। फिर
0: जी
1: ग्रेजुएशन मेरी बाद में कानपुर से हुई।
0: जी जी तो रेडियो जब आपने पहली बार सुना तो कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा और हम लोग उस समय सुनते थे। उस समय की मुझे यादें रेडियो की हैं जब
0: जी
1: हम भजन सुना करते थे, चलो रे मन गंगा जमुना तीर,
0: जी
1: पायो जी मैंने राम रतन।

0: धन पायो। सुबह के समय ये भजन आते थे, गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने भी लिए।
1: क्या बात है।
0: तो लोकगीत भी सुनते थे और गजल भी थी। जब मैं बड़ा हो गया था, 56-57-58 की बात है, तो उस समय सुगम संगीत भी आता था वहां से।
1: जी, जी।
0: तो हम लोग उस समय एस डी बर्मन साहब हैं, पंकज मलिक साहब हैं, डी बी पलुस्कर साहब हैं, आशा जी हैं, रफी हैं, मुकेश, तलत महमूद साहब, इन सबके गीत गजल ये सब सुना करते थे। मुझे तो एक मुकेश जी की और तलत महमूद साहब की एक डुएट थी, उनकी गजल बहुत पसंद थी।
1: जी जी जी
0: और मास्टर मदन ये मेरे फेवरेट थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ दो ही गजलें गाई हैं, और लेकिन बहुत अच्छा गाते थे। आइए आ जाइए, यू न रह रह कर हमें तरसाइए, आइए आ जाइए आ जाइए, ये पुराने जमाने की गजलें थी जो मेरे ख्याल में सदाबहार है, हमेशा मुझे याद रहेंगी।
1: जी जी डबराल जी, हम देखते हैं कि उस समय के बचपन को और आज के बचपन को जमीन आसमान का अंतर है। उस जमाने में जब आप छोटे थे तो मम्मी पापा आपको सुनने देते थे रेडियो?
0: ये रेडियो लखनऊ इलाहाबाद तो हम लोग सुन लेते थे, लेकिन चूंकि फिल्मी गानों की तरफ हमारा आकर्षण ज्यादा होता था युवा लोगों का, मेरी बहन भी थी बड़ी, उनका भी, तो हम लोग रेडियो सीलोन भी सुनना चाहते थे, बिना का गीत माला आती थी, लेकिन उधर हमें सुनना अलाउड नहीं था।
1: ऐसा क्यों?
0: शायद अच्छा नहीं समझा जाता था कि फिल्मों के प्रति ज्यादा लगाव होना। जो भजन जो गीत आकाशवाणी लखनऊ इलाहाबाद से प्रसारित होते थे, हम लोग वही सुन पाते थे और रेडियो वही का सुन पाते थे। सीलोन रेडियो हमें वैसे भी बिना का गीत माला रात को आती थी, हमारे पिताजी घर आ जाते थे, लिहाजा सुनने का कोई चांस नहीं होता था।
1: हाँ।
0: तो, लेकिन इच्छा हमारी होती थी कि हम भी गाने सुने।
1: अच्छा, तो जैसे आपको तो नहीं सुनने देते थे तो वो सुनते थे रेडियो?
0: नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन घर में तो हमारे ये रेडियो सीलोन लगता ही नहीं था, सिर्फ हम लोग आकाशवाणी का लखनऊ इलाहाबाद ही सुना करते थे। और उस समय मैं आपको बताऊं कि 60 की मैं बात आपको बता रहा हूं, आकाशवाणी लखनऊ के केंद्र से फिल्म म्यूजिक के हफ्ते में सिर्फ दो चंक हुआ करते थे,
1: बस दो।
0: जी हाँ, और उनमें भी शायद उनके पास गिनती के रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, एक अली बाबा 40 चोर, एक नागिन, और एक तुमसा नहीं देखा
1: जी,
0: और एक आध ऐसी कोई और पिक्चर थी जिनके गाने, और वही रिपीट गाने बजते रहते।
1: वो फिल्मों के गाने अब भी आपको याद है कि क्या क्या बजा करते थे? क्या
0: अली बाबा 40 चोर का आता था, चलो चलने चलो चले, बबूल के तले ठंडी ठंडी हवा हमें पंखे जले,
1: क्या बात,
0: बबूल
1: है?
0: नहीं जाएंगे हम, बबूल बड़ी दूर है,
1: क्या बात,
0: तो
1: है?
0: वो कहता है नखरे उठाने के लिए साथ ये मजदूर है।
1: वाह वाह, बहुत को बहुत को डबराल जी। चलिए, ये तो रेडियो के शुरू के दिन थे आपके, जब आपको नई नई इच्छा जागृत हुई कि चलो रेडियो को सुनना चाहिए, रेडियो पर अच्छा गीत संगीत आता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, रेडियो से आप कैसे करीब होते गए?
0: यही सब चीजें हम सुनते थे उसमें, और संगीत के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ा। इसके अलावा बच्चों के प्रोग्राम भी आते थे, संडे को हम अपने पिताजी के साथ बैठ के नाटक वगैरह भी और समाचार भी सुनते थे, न्यूज।
1: अच्छा, रेडियो पर?
0: हाँ, रेडियो में। इस तरीके से हमारा रेडियो के साथ में जुड़ाव बहुत ज्यादा था, सुनते थे मनोरंजन के लिए, सूचना के लिए। रेडियो सुनने के लिए एक किताब होती थी, उसमें लाइसेंस फीस जमा करना पड़ता था पोस्ट ऑफिस में जाकर के।
1: जी जी।
0: और रेडियो कीमती चीज होती थी, हर एक आदमी अफोर्ड भी नहीं कर पाता था, कम लोगों के पास होते थे, बिजली भी जरूरत होती थी, बैटरी वाले रेडियो भी उस समय चला करते थे।
1: जी जी।
0: तो तब रेडियो इस तरीके से कुछ लोगों के पास होता था, लेकिन जहां भी होता था लोग इंजॉय करते थे।
1: बिल्कुल, तब उस जमाने में लाइसेंस लेना
0: जरूरी था,
1: और तभी रेडियो सुन सकते थे।
0: और बगैर लाइसेंस के आप पकड़े जाएंगे तो जुर्माना वगैरह हो सकता था, ये चीज।
1: रेडियो से आप जुड़े, रेडियो में जब आपने देखा कि यहाँ पर तो बहुत कुछ है, मनोरंजन भी है, गीत संगीत भी है और जानकारी भी है, तो ऐसे में आपको रेडियो से जुड़ने का अवसर कब मिला, यानी कि सेवा का मौका कब मिला?
0: देखिए, रेडियो में नौकरी करने का विचार तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी का पढ़ने लिखने पे ज्यादा जोर था, तो वो कहते थे पढ़ो पढ़ो, तो हम लोग पढ़ते ही रहते थे, और पढ़ लिख करके फिर हम लोग अपनी अपनी नौकरी में आ गए, और गाना सुनते रहते थे, रेडियो सुनते रहते थे।
1: कौन सी नौकरी में थे आप?
0: रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, उत्तर प्रदेश की, तो उसकी नौकरी में मैं आ गया, और फिर वहां मेरा मन नहीं लगता था, तो वहां मैंने 10 साल नौकरी करी, और नौकरी करी 10 साल, उसके बाद नजीबाबाद रेडियो स्टेशन शुरू हो रहा था, 78-79-80 की बात होगी, और यहाँ से कोई पोस्ट निकली सहायक संपादक कृषि के लिए, और मैंने कृषि में ही ग्रेजुएशन किया था, तो मैंने उसके लिए आवेदन कर दिया, एक 4 आने के लिफाफे में एक एप्लीकेशन शादी से लिख के, कि मैंने कहा शायद मेरा नहीं होगा।

0: 10 साल की उम्र इतनी मेरी बढ़ गई है, 34-35 का हो गया हूँ, तो मैंने ऐसी एप्लीकेशन डाल दी। बाय द वे उन्होंने बुला लिया रिटन टेस्ट के लिए,
1: जी जी
0: तो रिटन टेस्ट भी मैंने दे दिया। अब रिटन टेस्ट में भी क्वालिफाई हो गया तो फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया, तो
1: जी
0: मेरे को थोड़ी ज्यादा उत्सुकता हो गई,
1: जी जी
0: तो फिर इंटरव्यू में मैं चला गया। लेकिन मुझे उम्मीद कम ही थी, और उसमें बहुत नए नए लोग भी थे वहां पे,
1: जी
0: तो मुझे ये था कि भाई नए लोग हैं शायद उनको प्राथमिकता मिले, है मुझे शायद नहीं मिले। और उसके बाद फिर बाय द वे इंटरव्यू भी हो गया और मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो फिर मैंने वहां ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरे घर वाले बहुत नाराज थे, क्योंकि जो सहायक संपादक की जो नौकरी थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी, और मैं पेंशनेबल यूपी गवर्नमेंट का पक्का कमीशन से अप्रूव जॉब छोड़ करके वहां आया था।
1: जी जी
0: शुरू में मैंने एक एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला, फिर एक एक महीने का मिला, फिर एक साल का मिला, फिर 2 साल का मिला, और उसके बाद सौभाग्य से फिर ये
1: परमानेंट हो गए।
0: परमानेंट हो गया, पेंशनेबल जॉब भी हो
1: जी
0: गई।
1: जी जी
0: तो इस
1: अच्छा
0: तरीके से मेरे नजीबान
1: जी
0: से शुरुआत
1: जी
0: हुई।
1: जब आप रेडियो में पहले दिन आपने कार्य किया, आपको कैसा लगा?
0: देखिए मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही थी उस दिन, लेकिन इन्होंने मुझे ले आके एकदम से माइक के सामने बैठा दिया,
1: अरे
0: और मेरे साथ उस समय जो सीनियर थे
1: जी जी
0: वो थे ब्रिजवाल, वो अल्मोड़ा चले गए थे बाद में, उनकी भी
1: हाँ
0: ज्वाइनिंग नजीबाबाद से ही
1: जी
0: थी,
1: जी जी
0: तो उनके साथ मुझे प्रोग्राम देना था। उन्होंने
1: हाँ
0: कहा मैं संभाल लूंगा, तुम आप मेरे साथ चलो और जो मैं बोलूँ तुम उसका जवाब दे देना।
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसके साथ बैठ करके मैंने बात करी उनके
1: जी
0: साथ, और इस तरीके से मेरे पहले गुरु
1: ब्रिजलाल
0: ब्रिजवाल
1: जी।
0: जी
1: हाँ
0: ये रहे।
1: जी अच्छा, तो तब से आप माइक फेस करते आ रहे
0: हाँ जी, उसके
1: हैं
0: बाद में
1: जी।
0: माइक फेस करते, तो शुरू शुरू में दिक्कत होती थी,
1: हाँ
0: जैसे समापन होता था तो
1: हाँ
0: हमारे कृषि जगत के बाद प्रादेशिक समाचार होते थे,
1: हाँ
0: तो गोइंग ओवर देना पड़ता था बड़े टाइम से,
1: टाइम्स
0: तो अगर नहीं देते थे तो हमारा अनाउंसमेंट कट जाता था, तो उसकी मुझे शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होती थी। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि कितने देर पहले टाइम को किस तरीके से फिल करें,
1: मैनेज करना
0: है
1: है।
0: ना, या कितने, मैंने तो अपना सारा अनाउंसमेंट लिखा है कि पत्र का भी पता बताना है और उनसे आज्ञा भी लेनी है, लंबा चौड़ा सारी बातें बतानी है, कल के कार्यक्रम भी बताने हैं, और अगर समय इतना नहीं है, 30 सेकंड ही है, तो उसमें समापन कैसे करें,
1: जी
0: ये मुझे शुरू शुरू में अंदाज नहीं था।
1: जी जी
0: हमारी एक सीनियर अनाउंसर थी सुधा मरार जी,
1: जी जी
0: मैं उनको याद करूंगा बहुत ज्यादा,
1: जी
0: वो बहुत
1: जी
0: अच्छी उद्घोषिका थी, बहुत अच्छी अनाउंसर थी,
1: जी
0: ड्रामा वॉइस भी थी B+, और अवधी फोक म्यूजिक भी वो गाती थी, और अनाउंसर बहुत अच्छी थी,
1: जी
0: बहुत टाइम तक उन्होंने
1: जी
0: काम किया, वो सुपर इम्पोज करती थी अनाउंसमेंट और म्यूजिक उस समय,
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: एक हाथ का अंगूठा और एक उंगली, ये दो से वो दो फेडर एक साथ ऊपर नीचे ऐसे चला
1: ऑपरेट
0: दिया
1: करती
0: करती थी।
1: थी। जी
0: बहुत ये
1: बिल्कुल
0: बड़ी ताज्जुब की बात थी। तो
1: जी
0: मैंने उनको इसलिए याद किया क्योंकि
1: हाँ
0: उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो अरुण जी, जब आप क्लोजिंग करते हो तो जितना समय आपका बच रहा है उतने में आप ये देख लो कि मुझे कल के कार्यक्रम बताने हैं या नहीं बताने हैं, अगर समय कम है
1: जी
0: तो आप कल के कार्यक्रम छोड़ दीजिए,
1: जी
0: सीधे वो
1: जी
0: कर दीजिए, अगर समय थोड़ा ज्यादा है तो आप पता भी बता सकते हैं,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: अगर और समय ज्यादा है तो कार्यक्रम भी बता सकते हैं, और ज्यादा है तो दो एक बार रिपीट करके कैसे कैसे इस टाइम को फिल करना है, ये शिक्षा उन्होंने सुधा मडार जी जो हमारी सीनियर उद्घोषिका थी
1: जी
0: उन्होंने दी
1: कृषि जगत आपने अनुभाग संभाला,
0: जी।
1: उसमें आपकी कैसी उपलब्धियां रही, क्या खास ऐसे कार्य रहे जो आपको बहुत पसंद आए?
0: उसमें देखिए कई सारे कार्यक्रम होते थे, तो लोगों से जो इंटरव्यूज करने होते थे मुझे वो अच्छे लगते थे, खास तौर से गांव में जाकर के लोगों
1: जाके
0: से इंटरव्यू करना, बातचीत करना, खेती किसानी की बात पूछना, ये मुझे अच्छा लगता था।
1: जी
0: उसके बाद हमारे एक प्रोग्राम अफसर हुआ करते थे, फार्म रेडियो ऑफिसर हरिशंकर जी, तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम शुरू किए थे OB बेस्ड, एक विकास की दिशाएं, एक छोटे ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम
1: जी
0: किलकारी, और एक और था विकास पत्रिका, तो ये OB बेस्ड कार्यक्रम होते थे, तो इनके लिए गांव में जाकर के कुछ रूपक वगैरह तैयार करने पड़ते थे, गांव से रिकॉर्डिंग लेके आने
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे और
1: हाँ
0: फिर तैयार करते थे,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होते थे, खेती
1: हाँ
0: किसानी के साथ साथ
1: हाँ
0: ये कार्यक्रम भी अच्छे होते थे, तो इन सब में धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई, और इसके साथ साथ फिर क्योंकि कृषि जगत अनुभाग को स्वास्थ्य विभाग भी दे दिया गया था,
1: जी जी जी जी
0: तो वो
1: हाँ
0: वहां के भी प्रोग्राम होते थे,
1: आपने कृषि जगत के अलावा और दूसरे अनुभाग भी देखे हैं, उनका दायित्व भी संभाला आपने।
0: कृषि जगत के अनुभाग नजीबाबाद में मैंने स्वास्थ्य विभाग, और कृषि जगत का ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम होता था
1: जी
0: वो,
1: जी जी
0: और फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम और विज्ञान वार्ता, बस
1: जी
0: यही देखे।
1: जी जी तो डबराल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको जैसे रेडियो में सेवा करने का मौका मिला, उसके बाद आपने कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दी हैं?
0: इसके बाद मेरा स्थानांतरण झांसी हो गया था बुंदेलखंड में,
1: बुंदेलखंड। हाँ
0: तो वहां फिर मैंने बुंदेलखंड

0: की संस्कृति देखी,
1: देखना
0: उनके
1: है।
0: लोकगीत सुने। वो FM रेडियो स्टेशन था तो वहाँ पे कम कार्यक्रम होते थे, लेकिन फिर भी जो भी कार्यक्रम थे बुंदेली संस्कृति के संपर्क में आया। और देखिए, जब आपको प्रोग्राम करना पड़ता है तो आपको उस संस्कृति में ढलना पड़ता है। उनका
1: जी
0: खान पान, उनका रहन सहन, उनकी बोल
1: हाँ
0: चाल, उनकी हर चीज आपको अपनानी पड़ती है,
1: जी
0: तभी जाके आप उनके
1: जी
0: प्रोग्राम कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते।
1: यही तो अच्छी
0: आप
1: रेडियो प्रोग्रामर की पहचान
0: जी
1: है
0: हाँ,
1: डबराल जी। बिल्कुल, आपने संस्कृति को धीरे धीरे अपनाया।
0: आप जहां जाएंगे
1: जी
0: आपको उसी
1: जी
0: परिवेश में ढलना पड़ता
1: जी
0: है,
1: जी
0: उनको अपना बनाना पड़ता है, तब आप वहां की बात को, भले ही आप उतनी अच्छी तरीके से उस मिट्टी को ना सुगंधित कर पाए, लेकिन फिर भी काफी कुछ आपको उसमें, उस भाषा के प्रसारण में
1: बिल्कुल
0: आपको सफलता हासिल
1: जी
0: तभी होगी जब आप
1: जी
0: उसमें रच
1: जी
0: बस जाएंगे। इसके बाद मेरा स्थानांतर राजस्थान हुआ
1: है तो वहां की संस्कृति आपको पसंद आई?
0: कि
1: जी
0: वहां की तो अभूतपूर्व संस्कृति है, क्योंकि
1: हाँ
0: कितना कठिन जीवन है,
1: बहुत।
0: पानी नहीं है वहां पे, है ना, रेत है, गर्मी कितना है, उसके बावजूद उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके रीति रिवाज, उनका संगीत,
1: जी
0: कितने तरह तरह का रंग बिरंगा है,
1: रंग
0: जिसने
1: बिरंगा
0: उनके
1: है
0: जीवन में रंग भरे हुए हैं।
1: जी बिल्कुल। ऐसे समय में कौन सा आकाशवाणी केंद्र मिला?
0: मैं आकाशवाणी के बाड़मेर केंद्र में
1: क्या बात है,
0: पोस्टिंग हुई थी,
1: सुदूर राजस्थान
0: सुदूर राजस्थान में।
1: रेगिस्तान।
0: हाँ जी,
1: जी बिल्कुल, आपने उस धरती को, उस मिट्टी को भी सलाम किया।
0: हाँ जी,
1: जी जी
0: वहाँ जैसलमेर और बाड़मेर से मांगणियार जो लोग होते थे, लोक गायक, वो लोग आया करते थे, अलंगा, बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत उनका। मुझे तो बहुत पसंद था राजस्थानी
1: लोक
0: लोक
1: संगीत।
0: संगीत।
1: जी
0: वाकई में राजस्थानी लोक संगीत है भी बहुत रिच।
1: जी जी
0: और मैं आपको बताऊं कि
1: हाँ
0: शायद इतनी बारीक बारीक उसमें मूर्तियां होती हैं ना, इतनी उसकी कलाकारी बहुत ज्यादा उसमें
1: बहुत
0: होती है,
1: ज्यादा
0: तान
1: है।
0: इतनी ज्यादा होती
1: जी जी
0: है, तो
1: जी
0: मैंने राजस्थानी फोक म्यूजिक को बहुत इंजॉय किया।
1: जी आप उत्तराखंड से, यानी कि एक ठंडी प्रदेश से, उसके बाद आप राजस्थान में गए जहां पर बिल्कुल तपता रेगिस्तान है, तो अपने आप को आपने वहां कैसे ढाला?
0: मैंने आपको बताया ना, आदमी को ढालना पड़ता है, आपको
1: जी
0: काम करना है, आपको अगर काम में सफलता हासिल करनी है तो आपको अपने खुद को बदलना होगा। तो देखिए, राजस्थान और पहाड़ दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं,
1: समानता है।
0: समानताएं हैं। वहां भी पानी की कमी है, पहाड़ में भी पानी की, हालांकि नदियां हैं लेकिन गांव दूर दूर हैं, वो चढ़ाई में हैं, तो गांव पानी लेने के लिए दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है,
1: जाना
0: नल
1: पड़ता
0: नहीं
1: है।
0: है।
1: जी
0: राजस्थान में भी ऐसा ही है और पहाड़ में भी ऐसा ही, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है
1: जी
0: और महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। पहाड़ में भी
1: पहाड़ में
0: सारी
1: भी
0: सारी घर गृहस्थी महिलाओं के ऊपर है,
1: जी
0: राजस्थान में भी उनके ऊपर ही है। तो इस तरीके से काफी सिमिलरिटीज उन लोगों में है। पहाड़ से तो राजस्थान काफी रिच मुझे लगा, खान पान उनका बहुत अच्छा है,
1: अच्छा।
0: खान पान बहुत रिच है, उनका घी बहुत ज्यादा वो लोग खाते हैं,
1: जी।
0: पहाड़ में भी खाते हैं, क्योंकि देखिए जब मोटा खाना आप खाएंगे, बाजरे की रोटी खा रहे हैं, मंडुवे की रोटी खा रहे हैं, तो सुखी कैसे खाएंगे, घी तो होना ही चाहिए, मक्खन
1: जी
0: तो होना चाहिए,
1: जी
0: दूध दही छाछ होनी चाहिए,
1: हाँ बिल्कुल। कहने का मतलब है कि वहां पर भी आपने अपनापन महसूस किया।
0: अपनापन महसूस किया। और
1: हाँ
0: लोगों से मुझे
1: हाँ
0: बहुत अच्छे लोग मिले, अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक वहां पे अपने 4 साल का टेन्योर पूरा किया।
1: जी। जब आपने वहां पर कार्य किया, ऐसे में गीत संगीत से आपका कितना जुड़ाव रहा?
0: गीत संगीत से देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, शुरू बचपन से ही
1: हाँ
0: मेरा लगाव संगीत के प्रति बहुत ज्यादा था
1: जी
0: और रेडियो में सुनता रहा था,
1: हाँ
0: तो संगीत के प्रति तो मेरा हमेशा से लगाव रहा।
1: कोई ऐसा गीत भी तो होगा रेडियो का जो आपकी बिल्कुल दिल के करीब है, जिसे आप बार बार गाते हैं, गुनगुनाते हैं अकेले में या सभी के बीच, वो कौन सा गीत है?
0: ऐसे तो देखिए बहुत सारे गीत हैं।
1: जी
0: इरा निगम एक लोक गायिका हुआ करती थी, आकाशवाणी लखनऊ की थी,
1: जी जी जी
0: उनके गीत थे,
1: हाँ
0: कौन ले आइल पथरा हो पानी, कौन ले बाहल पुरवैया हो राम, कौन ले आइल पथरा हो पानी, कौन ले बाहल पुरवैया हो राम, पश्चिम से आइल पथरा हो पानी, पूरब से बाहल पुरवैया हो राम, पश्चिम से आइल पथरा हो पानी, पूरब से बाहल पुरवैया हो राम, कौन ले। ये गीत मेरे बहुत करीब है
1: क्या बात है,
0: और
1: क्या बात
0: इन्होंने
1: है
0: एक
1: डबरा
0: होली भी गाई
1: जी।
0: थी।
1: मैं तो खुद आपके इस गायन को सुन के बिल्कुल डूब गई।
0: नहीं, आप देखिए इस उम्र में तो वो बात नहीं है,
1: लेकिन
0: लेकिन हाँ
1: बहुत
0: जी,
1: अच्छा आप गाते हैं। तो हम बात करें फिल्म संगीत की, जो फिल्मी गीत आपको बहुत अच्छा लगता है, फिल्मी गीत जिसको आप बार बार गाते हैं।
0: फिल्मों के गीतों में तो मेरे पास बहुत सारी मेरी पसंद के बहुत सारे गीत हैं,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: फिलहाल मैं आपको आशा जी का और रफी साहब का गाया हुआ, फिल्म अदालत के लिए है ये,
1: जी जी
0: एक गाना है।

0: जमीन से उठा के हमें आसमान से गिरा तो न दोगे, अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे भुला तो न दोगे, ऐसा कोई गीत।
1: बहुत सुंदर गीत है। चलिए डबराल जी सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है डबराल जी। हम आज आपसे बात कर रहे हैं यादें रेडियो की। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तरह तरह की संस्कृति आपने जगह जगह देखी है, उनको महसूस किया है। रेडियो में भी आप इतने साल रहे हैं, लेकिन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको खास पसंद आए हैं?
1: कार्यक्रम देखिए, मैंने झांसी में बहुत सारे कार्यक्रम किए, करीब करीब सारे ही कार्यक्रम मैंने देखे। और सबसे मुश्किल जो मुझे लगता था, जो मुझे दे दिया था, मैं आपको अभी उनकी भी बात बताऊंगा। गुलाब चंद जी थे उस समय, तो उनके अंडर में मैंने काम किया, जो मेरे सबसे नजदीक स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं, बहुत सारे रहे। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय एक एक्सन थे राम मूर्ति जी, और एसडी थे एस के शर्मा जी, और उसके बाद पालित साहब भी थे जो कलकत्ता से आए थे। और उनसे मैंने काफी सीखा भी।
0: जी,
1: वो प्रोग्राम में भी हमें बताते थे।
0: जी,
1: और गुलाबचंद जी की भी बात यही है, वो भी प्रोग्राम में बहुत मदद करते थे, सुन करके स्क्रिप्ट दिखाओ, उनकी भी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी।
0: कि रेडियो संस्कृति के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपने देखा कि तरह तरह की संस्कृति को किस तरह से

0: आम आदमी तक पहुंचाता है।
1: देखिए, रेडियो इसमें बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और आज भी निभा रहा है और आगे भी निभाएगा।
0: जी
1: रेडियो देखिए, एक तो कई तरीके से रूरल ब्रॉडकास्ट होता है, एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट होता है, यूथ के लिए प्रोग्राम होता है, ग्रामीण महिलाओं के लिए होता है, शहरी महिलाओं के लिए अलग होता है, ग्रामीण युवाओं के लिए अलग होता है, बच्चों का प्रोग्राम होता है, तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म देता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: कल्चर है आपकी,
0: हाँ,
1: आपका लोक संगीत है,
0: हाँ,
1: लोक नृत्य है, जो कुछ भी है,
0: हाँ,
1: उन
0: हाँ,
1: सबके लिए एक प्लेटफॉर्म आकाशवाणी ही उपलब्ध कराता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल।
1: जो युवा है, उनमें कोई प्रतिभा है बातचीत करने की, वार्ता करने की, और किसी तरह की प्रतिभा है, तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म आकाशवाणी ही है,
0: जी
1: जहां से
0: बिल्कुल
1: आगे उनको बढ़ने का एक मौका मिलता है। और
0: बिल्कुल।
1: बहुत से लोग हैं देखिए, जो नई नई प्रतिभाएं हैं, जो आकाशवाणी से ही निकल करके आगे गई हैं।
0: जी बिल्कुल। आपने रेडियो का पहला जमाना देखा और अब भी देख रहे हैं, पहले के समय में और आज के समय में कितना अंतर महसूस करते हैं?
1: बहुत अंतर देखिए, पहले जमाने के SDs
0: जी
1: बता नहीं सकते हैं,
0: जी
1: आज
0: जी
1: के जमाने में भी SDs अच्छे हैं,
0: हाँ
1: लेकिन जो पहले जमाने के थे,
0: हाँ
1: आपके साथ बैठ करके मदद करते थे, आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को भी अगर समझते थे, वो जानते थे कि आपके पास कोई व्यक्तिगत समस्या है, तो उद्घोषिका जो है वो अच्छे से अपना उद्घोषणा नहीं कर पाएगी,
0: क्या
1: तो
0: बात है,
1: उनके साथ फीलिंग्स जुड़ी होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल सही
1: मदद
0: कहा,
1: करते थे,
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: वो
0: कहा।
1: आउट ऑफ वे जाकर के उनके व्यक्तिगत तौर पर,
0: हाँ
1: प्राइवेटली भी उनको बहुत तरीके से उनको
0: जी
1: मदद और सुविधाएं देने की
0: जी
1: कोशिश करते थे, सिर्फ इस
0: जी
1: उद्देश्य से कि अनाउंसमेंट प्रोग्राम अच्छा जाए।
0: जी कोई भी प्रेजेंटर हो वो तभी अच्छा कार्य कर सकता है जब बिल्कुल वो
1: हाँ,
0: चिंता
1: उनका
0: मुक्त
1: कहना
0: हो,
1: था वो
0: तनाव मुक्त हो।
1: चिंता मुक्त होना
0: जी
1: चाहिए,
0: जी जी
1: और उस जमाने में क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। आज की तारीख में धीरे धीरे वो बात कम हो गई, उस जमाने में कुछ समर्पण की भावना भी ज्यादा थी, प्रोग्राम पर्संस कम हो गए हैं, ये बात भी मुझे कुछ महसूस होती है, जिससे कि प्रोग्रामों के उसमें गुणवत्ता में कमी आई है। रेडियो कंपटीशन ज्यादा हो गया, स्पर्धा ज्यादा हो गया, देखिए कितने चैनल्स आ गए हैं, और सबसे कंपटीशन करना पड़ता है सूचना और मनोरंजन के साधन में, सिर्फ चैनल ही नहीं, आपका सोशल मीडिया है, पॉडकास्ट वगैरह है, जो इसमें चीजें आती, उनसे कंपटीशन करना पड़ता है, लोगों की मांग बदल गई है, उसके
0: जी
1: हिसाब से रेडियो को बदलना है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन रेडियो की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं,
0: जी जी जी हाँ
1: एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट, रूरल ब्रॉडकास्ट, इनकी जिम्मेदारियां उसको निभाना है। एक समय के लिए लोग घड़ी मिलाते थे रेडियो की टाइम के हिसाब से, और
0: जी
1: उद्घोषिका ये बताती थी, उद्घोषक ये बताते थे कि 8:45 और 15 सेकेंड्स हुए हैं
0: जी जी
1: अनाउंसमेंट के लिए,
0: हाँ
1: लोग ये कहते थे कि आप
0: हाँ
1: रेडियो में सुनो अनाउंसमेंट उद्घोषणा के लिए, कि प्राइवेट चैनल्स में ये बात नहीं है,
0: हाँ
1: जो समझनी चाहिए,
0: जी जी बिल्कुल
1: प्राइवेट चैनल्स में ना तो अनाउंसमेंट है और
0: हाँ
1: ना ही मेरे ख्याल में टाइमिंग्स का इतना ध्यान रखा जाता है। आपके रेडियो में तो पेप्स बजती ना, समाचार जब शुरू होते हैं तो उसके पहले भी कहाँ पे समाचार सही समय पे शुरू होना, और घड़ियां भी मिलाई जाती हैं,
0: जी बिल्कुल
1: टाइमिंग्स बिल्कुल पक्का चलता है,
0: पक्का चलता
1: तो
0: है।
1: इसका कोई मुकाबला नहीं है।
0: जी जी डबरा जी, आपको बहुत सारी बातें याद हैं, बहुत सारे किस्से आपके करीब रही हैं जिनको आप रेडियो पर कहना चाहते हैं, जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं उनको बताना चाहते हैं।
1: देखिए, कुछ मेरे साथ में जो लोग थे, एक तो मैं विभूति भूषण भट जी थे,
0: जी
1: उनको मैं बहुत मान सम्मान के साथ याद करता हूँ,
0: जी
1: वो मेरे साथ के थे, लेकिन वो बाद में चूंकि डायरेक्ट पैक्स होके आए थे तो मेरे से सीनियर हो गए थे, तो
0: जी
1: मेरे ASD भी वो रहे, और प्रेम कुकरेती जी
0: जी
1: आकाशवाणी दिल्ली के थे,
0: जी जी
1: उनके
0: जी
1: साथ मेरा बहुत सहयोग था,
0: हाँ
1: केशव अनुरागी साहब ये म्यूजिक के थे,
0: कलाकार
1: उत्तराखंड के तो बहुत ही देन थे,
0: गायक
1: उनको मैं
0: कलाकार
1: बहुत याद करता हूँ,
0: जी जी
1: और सुधा मदार जी मैंने आपको बताया, सीनियर अनाउंसर थी
0: जी
1: जो
0: जी
1: नजीबाबाद की,
0: जी जी
1: इनके साथ इनसे मैंने बहुत सीखा भी, देखिए सीखा, इन्होंने मुझे बताया, मुझे मदद किया कार्यक्रम में कैसे एक प्रोग्राम करने हैं,
0: जी
1: इन चीजों में बहुत
0: जी
1: मदद
0: जी
1: करी।
0: जी जी डबराल जी, हम आकाशवाणी के इस साल 90 वर्ष पूरे कर रहे हैं, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगी?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आगे इतने सारे चैनल्स हैं और इतने सारे सोशल मीडिया है और कई चीजें, तो हमारे सामने बहुत चैलेंजेस हैं,
0: जी
1: इस चैलेंज को हमें
0: स्वीकारना।
1: स्वीकार करना है, उस हिसाब से हमें अपने प्रोग्राम, अपना ब्रॉडकास्ट तैयार करना है,
0: क्या बात
1: ताकि हम अपने प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचा सके,
0: जी
1: और
0: जी
1: जिस तरीके से आकाशवाणी ने सुगम संगीत बना करके फिल्म म्यूजिक को मात दी है, उसी तरीके से हमें भी अपने प्रोग्राम को, अपने ब्रॉडकास्ट को दूसरे जो चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स हैं,
0: जी
1: उनके मुकाबले में ज्यादा बेहतर बना करके उनको, उनके चैलेंज को स्वीकार करके इनको पॉपुलर बनाना है।
0: जी बिल्कुल। आज अरुण डबरा जी, पूर्व कार्यक्रम अधिक

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम यादें रेडियो की, जिस पर आपने बातचीत सुनी श्री अरुण डबराल से कल्पना पंकज की। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी मंजुला नेगी ने। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। पौड़ी जिले स्थित राजकीय महाविद्यालय पैठाणी को व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए महाविद्यालय में रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे ताकि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही रोजगार के अवसर मिल सकें। ये बात प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय पैठाणी में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आधुनिक तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पैठाणी में राज्य का पहला व्यावसायिक महाविद्यालय खोला है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यहां उद्योगों एवं बाजार की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें। डॉ. रावत ने कहा कि अगले शैक्षिक सत्र से महाविद्यालय में बीटेक, बीएड, एमबीए एवं एमसीए जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। हरिद्वार में अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ मेले को लेकर मेला प्रशासन एवं रेलवे ने तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में हरिद्वार एवं नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं के सुधार एवं विस्तार के साथ ही आधुनिक तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित व्यवस्थाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मेलाधिकारी सोनिका ने रेलवे अधिकारियों से हरिद्वार सहित आसपास के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के साथ ही स्टेशन के सौंदर्य का आग्रह किया। IIT रुड़की परिसर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विषय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप पत्रा ने कहा कि विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार केवल आधुनिक विकास के साधन नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक अवसर पहुंचाने का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा समन्वित मॉडल विकसित करना चाहती है जो गांव, गरीब, किसान, छात्र और युवा सभी के जीवन को सशक्त करे। श्री बत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया स्टार्टअप और इंडिया AI विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत तेजी से वैश्विक टेक्नोलॉजी लीडर बन रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी विज्ञान एवं तकनीकी आधारित विकास को दिशा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण एवं भाषा मंत्री खजान दास ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण

0: मैट्रिक एवं मेरिट का मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं में लंबित मामलों एवं जांच प्रक्रिया से छात्रों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी देते हुए छात्रवृत्ति योजनाओं को पुनः संचालित करने का आग्रह किया। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में चारों धामों के दर्शन को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। पर्यटन विभाग के अनुसार चारधाम यात्रा में अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में सर्वाधिक 4,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम में 2,70,000, गंगोत्री में 1,65,000, यमुनोत्री में 1,69,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा चारों धामों के दर्शन के लिए यात्रा पंजीकरण की संख्या 32,75,000 से अधिक हो चुकी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:35 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए लता लतिका चौहान के गाए रोहेल खंडी लोकगीत।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर में
3: पहले ही बोला ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027, आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लतिका चौहान के गाए रोहेलखंडी लोकगीत।
1: उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: FM 100.5 यानी 100.5 गीगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं 11 बजे हैं, पेश है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोता अपनी फरमाइश की फिल्में गीत सुनने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7088000731। जी हाँ, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजें, साथ ही अपनी पसंद के जो फिल्मी गीत को आप सुनना चाहते हैं उसके बारे में लिखें और फिल्म का नाम अवश्य लिखे और साथ ही अपना नाम लिखना न भूलें। और आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं आप सभी की फरमाइश के इस पहले गीत के साथ। मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। साथ ही फरमाइश होता हमें लिखते हैं, जिला मुरादाबाद गांव दूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोनी रितिक और साथ में है बलवीर सिंह। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आप हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश पल्लू निषाद और तरुण यादव। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं गांव उमेड़ा निजामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन, आबिद आयशा और स्नेहा भानु जैनुद्दीन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज ये लिख भेजा है, दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नुद्द सीर मुजकी साबरी और जरीफ अंसारी। ये फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल से PS नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्ची और आशीष। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की, फिल्म का नाम है सिंदूर।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: वर्ष फरमाइश का ये अगला गीत था आप सभी की पसंद पर। जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से पूनम कुकरेती, सुनील कुकरेती, विवेक, वंदिता वंश और अंजना। साथ ही ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, पिम्बला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल योगेश, दीपक, कुमारी पूजा। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, पिया, दिशानी और निमिता आहूजा। फरमाइश होता हमें लिखते हैं छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली, शफी आबाद खान चौहान, सेफी लीबा मलिक और साथ में इनकी परिवारजन। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा और हर्ष आहूजा। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित चौहान, बेबी गर्वी। फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है गाँव महेश्वर मलकापुर से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि, नीना जी और स्वप्निल धाड़े। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिखते हैं आप हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम गागड़ा, बबीता पोते, तन्वी, अंकित कांगड़ा। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं सोनाली, आशा नारंग, सुरेश नारंग सहारनपुर से। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिदो शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल और जैनब मुजावर। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं मोहल्ला हलवायान कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन रोजी, परवीन बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हीना कौसर। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिखते हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रजित कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरत, कीरत, गुरु शब्द सिंह राहुल। साथ ही फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद और नदीम पटेल। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और बाबला मेहता को, फिल्म का नाम है चांदनी।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम वर्ष फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी के अनुरोध पर भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा ईशान पूजा परिहार। साथ ही फरमाइश लिखते हैं आप हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा परवीन और इसी गीत को सुनना चाहा है करताल जिला रंगा रेड्डी तेलंगाना से कानूगुला गोपाल मयूश्री प्रवालिका विष्णुवर्धन और विघ्नेश। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं वीरम गाँव गुजरात से अजीत भावसार प्रमिला भावेश सन्नी भावसार और साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आपने फरमाइश लिख भेजी है जिना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव कुणाल हर्ष मनीष यादव अंशिका यूनुस खान और साथ में हैं सोफिया खान। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक कमल दीपिका गव्या भाई सुच्चा सिंह पाठक। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म का नाम हमसाया।

कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा और साथ में है माही मलिक। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट डोजी पल विलेस डिकेस्ट। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरू, शाइना सनक, सनाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन। फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा है, मरहरा दरवाज़ा इटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज, नवेद, सुहेल, रसीद, नम यशफ अब्बासी और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं रेलवे रोड गंज डिंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम, शबनम अनवार, नजमा बेगम, भाभी सरिता गौतम। और इसी गीत को सुनना चाहा है भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं शांति निवास लहेगाव रेलवे से कुमारी कल्पना कुराड़े, वंदना आशीष और दीपक कुराड़े। और इसी गीत को सुनना चाहा है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड और जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबेराय। ये फरमाइश होता है हमें लिखते हैं शाही मार्केट सोहरा बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, आराफा तदीब और कादिर चौधरी। और इसी गीत को सुनना चाहा है कुंभार गले कोलगांव से पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक चंदन, प्रथमेश और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता है हमें लिखते हैं गोवर्धन।

बिहारी कॉलोनी दिल्ली से ही तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु और साथ में है रिदान खुराना। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं बाजार रोड मुंगीसपुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। साथ ही ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं छोटूपाल तेलंगाना से कस्तूरी रामायडू, माँ देवी पराइडू और साथ में इनके परिवारजन। और ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा आयुष, विवेक बेबी आयुष श्रीवास, कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता सुमित सोमू और मानस राज। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर, फिल्म का नाम है गाइड।

फिल्म गाइड के इसी गीत को सुनना चाहा था। गुमला झारखंड से एसएम जावेद और शगुप्ता चुमड़ी फरमाइशी लिखने वाले शोताब थे। शाहजी नगर देगलू नांदेड़ से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। श्रोता सुन रहे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 हरी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद वर्मा, राजेंद्र मनहर वर्मा और इसी गीत को सुनना चाहा है। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्शी, बेगम राबे शेख, शेख रही मुन्ना दान।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड देख
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की

0: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
1: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: समय 11:30 और 20 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर। इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता शोभा रघुवंशी, नंदिनी और साथ में ललित नारायण भाऊ। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काली, वंदनादेश कुमार काली, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, निज़ामुद्दीन, कौसरुद्दीन। और फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडुकार। साथ ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से इरमा रावत। साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, बड़ा बम्बू सुपर से गांव से देवेंद्र, ताती, राकेश, तांती, प्रकाश और साथ में इनके बहुत सारे साथी। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, फूल वाले दुखना सदब, जो इकबाल, इमरान अहमद, कपास हेड़ा बाडा, नई दिल्ली से आमना नसरीन, बागवान आसमा परी राबिया और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनना चाहे बड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमर, पिंकी लवली और साथ में ही आरती अरोड़ा, बीड शहर महाराष्ट्र से हैं। आप हैं नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जय श्री महतेरी, अंजलि करवा, बाला साहब। साथ ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आप हैं नई बस्ती गंज डिंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजम बेगम, मोहम्मद आशिफ हाशमी, मोहम्मद तेमू, मोहम्मद कलीम अंसारी। और इसी गीत को सुनना चाहे दंतरेंगी के हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और साथ में ही रुद्र वर्मा। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है खामोशी।

कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर। गांधी चौक पाड़बे राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी मास्टर मनीष पंवार, रामदेव रसी, दिनेश चौहान, बाबू राम, जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। साथ ही फरमाइश होता लिखते हैं कस्बा गुन्नूर यूपी से फारूक अली खान, फेजी फरहाज, फरहीन, फारिया और ताहिरा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बा, नब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। और इसी गीत को सुनना चाहा है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता दिव्य भारती, साथ में इनके परिवारजन। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी है। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब और इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं करोला मुरादाबाद से अयूब खान, ईरमगुड़िया शोएब खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं पद्मा टाकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पलवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और साथ में राजेंद्र जी शाह। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं शेरवानी स्कूल गंज डिडवारा से आपता बंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश श्री, उत्कर्ष चौहान। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं सौगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देवी कारानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन। और इसी गीत को सुनना चाहे करनाल से हैं ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं चक पाँच एम डी पत्रोड़ा से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर और डॉक्टर सुनील जैनागल। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं वन्य बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन की, फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

कार्यक्रम वर्ष फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने, नांदेड़ येताला से आप हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, कुमारी दुर्गेश्वरी, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद बेबी आलिया और साथ में ही आयान बाबू। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राम कारी में नकारी पूंजीराज आरती आकर्षण और साथ में जयश्री। ये फरमाइश हमें लिखते हैं लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी काना मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। साथ ही ये फरमाइश हमें भेजी है आप हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं जिन्होंने हमें मैसेज लिख भेजा है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मधु गोस्वामी, आशीष शिवन्या, अनु गोस्वामी और मुकेश गोस्वामी। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिखते हैं आप हैं संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक जियाउलक, मोहम्मद उमर डावर और साथ में राजेंद्र कटारी। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं निज़ामाबाद तेलंगाना से आप एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद मुकर्रम, साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक और परी खर्चे। और इसी गीत को सुनना चाहा है आपने, फरमाइश लिख भेजी है गांव पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश शर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिखते हैं मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। साथ ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है देहरादून

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आया कि
3: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: कार्यक्रम का ही अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने आप हैं गोकुल चौक कंगचला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे राकेश रंजन राजीव रंजन संजय कुमार ओम कुमार गुंजेश कुमार साथ में इनके परिवारजन और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप हैं कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर अनिल शर्मा और साथ में टी डी मल्होत्रा शुभचंद्र बजाज ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप हैं राजधानी रायपुर से नीलू बेग नीलम डॉक्टर वंदना कुमार बिट्टू कुमार मित्रगण और साथ में इनके परिवारजन ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं गांव मोहरा अंबाला हरियाणा

बन शिला संधू, और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, कच्छ गुजरात से गंगा वणकर प्रीति जूली गीता महिमा विशाल विजय विराट महेश जयंती और साथ में इनके परिवारजन, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी और साथ में इनके परिवारजन, और ये श्रोता हमें फरमाइश लिखते हैं। आप हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और साथ में इनके परिवारजन, ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। जिला मुरादाबाद गांव दूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोनी रीति को साथ में है बलवीर सिंह, मोहल्ला बारादरी महमूद खारापुर से भाई रफत साहिब, सईद भाई, राशिद भाई, असद भाई, फिरोजा, मुस्कान अफसर अली और साथ में नगमा नाज मंसूरी, और ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, शीतल, राजेश, और साथ ही मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आप है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभिया, नसुरीहन, साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं गुजरात गांधीग्राम से पवीन सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिख भेजी है। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है कोहिनूर।

श्रोताओं, कार्यक्रमों के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलोचना के लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला में, जिसका पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून उर्पिन है 248।

शून्य एक। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिखते हैं, कार्यक्रम आपका पत्र मिला में। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर वही है जो व्हाट्सएप फरमाइश के लिए है। नहीं पता है तो चलिए हम आपको नोट करवा देते हैं, व्हाट्सएप नंबर 7088000731 है। और आइए बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के इस अगले गीत की ओर। मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती विनीत मिथिल नाचानी, प्रगति बाबू भाई और साथ में भारती देवी। ये फरमाइश हमें लिखते हैं अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलना सलमा, सदर हम हाशमी और साथ में मोहम्मद आलम हाशमी। और इसी गीत को सुनना चाहे ज़िला मुरादाबाद गांव दूलापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरा और साथ में नरगिस खातून। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुश, दिल संगीता रानी, पप्पू मैक, सुनीता रानी, आरजू हंसमुख लालो, साथ पे इनके परिवार जन। और इसी गीत को सुनना चाह है आप हैं शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी और साथ में इनके परिवार जन। और ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा है, गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आप हैं गांधी रोड गंज डिडवारा से मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद जावेद और साथ में इनके परिवारजन। करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनमिंदर सिंह पांधा और साथ में जी एस रामगढ़िया। और इसी गीत को सुनना चाह है आप हैं जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी है, फाजिल का पंजाब से आप हैं भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाडी, शालिनी और साथ में इनकी परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आप हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ी से नाना जी लाम से, मीना तेजस जय लाम से और साथ में इनकी परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से अजीज़ भाई, मतीन भाई और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनना चाहा है, अकोला महाराष्ट्र से राम रमेश कामले देवयानी और गणेश कामले। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, शीतोर खुशी गोस्वामी। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में गीत, फिल्म का नाम है सूरज।

इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी जनकपुर सहारनपुर से जो डिकेश्वर रोजी पलो बिले से डिकेश्वर ने। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। मैसेज लिखने वाले श्रोता आप हैं गाँव गाला अम्बाला से राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी, राघव हरमन साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल लक्ष्मी, प्रियंका, सृष्टि बनी और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधी नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमें लिख भेजी आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश मेंडी सावना और साथ में निवान शर्मा। और ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं जसपुर उत्तराखंड।

0: سی ریاست حسین صدیقی، نازمہ بیگم ریاض، رفاقت محمد، ریحان، سمرین پروین اور ساتھ میں ماہرہ نور. اور یہ فرمائش ہوتا ہمیں لکھتے ہیں آپ پری محل کاسگن سے آباد خان عابل خان اور ساتھ میں ان کے پریواجن. اور اسی گیت کو سننے کے لیے میسج ہمیں لکھ بھیجا تھا آپ جلال آباد شاملے سے راشد منصوری آیان اور ساتھ میں جیشان منصوری. ساتھ یہ فرمائش ہمیں لکھنے والے شوتا آپ ہیں گاؤں پٹپک کا تلنگانہ سے بھوانی وینکٹ، ماسٹر متھن اور مہادیو. شوتم اسی کے ساتھ آج کے پروگرام یہیں پر سمپن ہوا. ہم آکاشوانی کے دہرادون کیندر سے بول رہے ہیں. اس سمے 12 بجنے کو ہیں. اب سماچار ہوں گے.
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں کنک لتا. بھارتیہ جنتا پارٹی نیتا ہیمنتا بسوا سرما نے آج اسم کے مکھیہ منتری پد کی شپتھ لی.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরের নামত শপথ লও যে বিধির দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি মই প্রকৃত বিশ্বাস আর আনুগত্য পোষণ করিম.
1: শ্রী শর্মা কে সাথ চার মন্ত্রীনে ভি শপথ লি. ইনমেঁ সে দো ভাজপা কে আর এক এক সহযোগী দল অসম গণ পরিষদ তথা বোডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট কে হ্যাঁ. यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है. श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है. वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं. पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे. तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है. इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा. वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है. इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे. इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है. प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया. निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की. जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं. उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है. भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया. ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था. इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे. पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे. यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है. गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं

0: lady health visitors serving across central and state governments, union territories and voluntary organizations. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today. The Sensex dropped 800 points to 75,216, while the Nifty dropped 220 points to 23,596 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 12:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप नीता कांडपा से सुनिए न्यूज़ हेडलाइंस। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गंगा की स्वच्छता एवं अविरलता के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से शिष्टाचार भेंट की। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने धामों के दर्शन किए। पौड़ी जिले के पैठानी स्थित महाविद्यालय में अगले शैक्षिक सत्र से बीटेक, बीएड, एमबीए एवं एमसीए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने 3 विशेष जन जागरूकता अभियान शुरू किया। राज्य में सरकारी स्कूलों की मासिक परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया। साल भर में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों की 4 मासिक परीक्षाएं होंगी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षाएं आज से शुरू हुई। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है और रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। नैनीताल जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल में 14 और 15 मई को भौतिक विज्ञान और विज्ञान के शिक्षकों की कार्यशाला होगी। बाबा विश्वनाथ की जगदीश शिला डोली यात्रा गोपीनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हाईटेक निगरानी व्यवस्था की। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से शुरू होगी। आईआईटी रुड़की में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विषयक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगामी 16 मई से उज्बेकिस्तान में होने वाले सेंट्रल एंड साउथ एशिया 7S रग्बी चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड की खिलाड़ी महक चौहान का भारतीय सीनियर महिला टीम में चयन हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की टीम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ समन्वय स्थापित कर हेली संचालन को सुरक्षित व व्यवस्थित बना रही है और मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:12 हुए हैं, लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए अरुण कुमार स्वामी के गाए भजन।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
0: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो
5: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अरुण कुमार स्वामी के गाए भजन। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब बहने सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत।

बहनों, शुरू हो चुका है कार्यक्रम महिला जगत, जिसे लेकर मैं आ चुकी हूँ आपके बीच में, आपकी अपनी सखी अर्चना। बहनों, हम सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन क्या कभी हम उन पौधों की सेहत के बारे में सोचते हैं जिनसे हमें भोजन, ऑक्सीजन और जीवन मिलता है? तो इसी सोच को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आज यानी हर साल 12 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, यानी कि पौधों की सेहत का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई, जिससे लोगों को ये समझाया जा सके कि पौधों की सुरक्षा केवल किसानों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि पौधे सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार हैं। हम जो अनाज खाते हैं, जो फल सब्जियां हमारी प्लेट में आती हैं, और यहाँ तक कि हमारी सांस भी पौधों की वजह से ही तो चल रही है। लेकिन आज पौधे कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, मिट्टी की खराब गुणवत्ता, पानी की कमी और कीटों का बढ़ता असर। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पौधों की सेहत को खराब कर रही हैं। इसलिए जब फसलों को नुकसान पहुंचता है तो खाने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं और कई बार पोषण की कमी भी हो जाती है। बहनों, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो पौधों और महिलाओं का रिश्ता बहुत गहरा है। गांव में महिलाएं खेती का अभिन्न हिस्सा हैं, बीज बोने से लेकर फसल की देखभाल तक हर कदम पर महिलाओं का जुड़ाव देखने को मिलता है। वहीं शहरों में आज महिलाएं किचन गार्डनिंग या टेरेस फार्मिंग की तरफ बढ़ रही हैं, और शायद यही कारण है कि महिलाएं पौधों की देखभाल को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक रिश्ते की तरह निभाती हैं। पौधों की सेहत बनाने के लिए बहनों बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए, बस कुछ छोटी छोटी आदतें जो हैं वो हमें अपने जीवन में अपनानी होंगी। जैसे पौधों को समय पर पानी देना, ज़रूरत से ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करना, जैविक खाद को बढ़ावा देना, किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना, पौधों में बीमारी दिखने पर तुरंत उसका उपचार करना, और हर साल कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगाना, और साथ ही बच्चों को भी नेचर यानी कि प्रकृति से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे प्लांट्स से प्यार करते हैं तो वो पर्यावरण की अहमियत भी समझते हैं। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में पौधे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गए हैं। कई रिसर्चेस के अनुसार पौधों के बीच समय बिताने से जो तनाव है वो कम होता है और मन को शांति मिलती है। तो आइए इस पौधों की सेहत के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम ये संकल्प लें कि सिर्फ पौधे लगाएंगे ही नहीं बल्कि उनकी सही देखभाल भी करेंगे, क्योंकि स्वस्थ पौधे ही स्वस्थ जीवन की पहचान है। यानी कि जब धरती हरी भरी होगी तभी भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो बहनों, कार्यक्रम में बातें आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: मार्केट के बारे में क्या
2: परफॉर्मेंस का बोलो?
1: बी द फ्यूचर
2: मार्केट ट्रेंड टेक
1: सुनने में आएगी।
3: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो।
2: माय प्रेडिक्शन इज
1: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
2: ये दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो।
5: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: संगीत समाचार जानकारी और भावनाओं का ऐसा माध्यम जिसने पीढ़ियों को जोड़े रखा, और वो माध्यम है रेडियो। साल 2026 में आकाशवाणी अपने 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी कर रहा है। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने और महिलाओं को जानकारी देने और अभिव्यक्ति का मंच देकर उनके सशक्तिकरण की दिशा भी निर्धारित की। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के इस विशेष अवसर पर हमने विभिन्न महिलाओं से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि उनके जीवन में रेडियो की क्या भूमिका रही, महिलाओं के विकास में रेडियो ने कितना कंट्रीब्यूट किया और आज के डिजिटल दौर में भी रेडियो की प्रासंगिकता कितनी कायम है। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
8: इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के इस खास मौके पर आइए रूबरू होते हैं कुछ महिलाओं से और जानते हैं कि उनके जीवन में क्या है रेडियो की भूमिका।
9: सबसे पहले आपका नाम?
10: मेरा नाम प्रतिभा राय है।
9: और आप क्या करती हैं?
10: मैं जॉब करती हूँ प्राइवेट सेक्टर में।
9: अच्छा, तो रेडियो सुनती हैं आप?
10: हाँ, रेडियो सुनती हूँ, हमेशा से, बचपन से रेडियो सुनती हूँ।
9: आकाशवाणी के कार्यक्रम कितने सुनती हैं?
10: आकाशवाणी ही सुना बचपन से, क्योंकि जब हम छोटे थे तो कोई और मनोरंजन का और जानकारी का इतना साधन था नहीं, तो उस समय तो हम रेडियो ही सुनते थे। और आज भी रेडियो सबसे ज़्यादा मतलब सशक्त माध्यम है जानकारियों का, और सबसे सटीक जानकारी रेडियो पर ही मिलती है। किसी काम में बाधा डाले बिना हम कोई भी काम कर रहे

0: होते हैं, तो मुझे लगता है कि रेडियो सबसे सुगम तरीका है जिसे हम कामों के साथ भी अपने मनोरंजन के लिए, जानकारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं।
1: तो सबसे पहले जब आप रेडियो शब्द सुनते हैं तो सबसे पहली बात आपके मन में क्या आती है?
0: मेरे मन में आता है आकाशवाणी नजीबाबाद। मैं जब छोटी थी तो वही स्टेशन हमारे घर में बचपन से सुबह से लग जाता था। हमारे दिन की शुरुआत भक्ति आराधना के साथ होती थी, जो सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाता था, और फिर रात तक कभी न्यूज़ आएगी, कभी कार्यक्रम महिलाओं के लिए, कभी युवाओं के लिए, तरह तरह के कार्यक्रम, और गढ़वाली भाषा में, कुमाऊनी भाषा में, तो तरह तरह के कार्यक्रम हम सुनते थे, और वही हमारा पूरे दिन का साथ ही रहता था।
1: क्या आपकी जिंदगी में रेडियो से जुड़ी कोई खास मेमोरी रही है?
0: आकाशवाणी के साथ मेमोरी के तौर पर मैं यही कह सकती हूँ कि हमेशा से रेडियो ही साथ ही था। अच्छे दिनों में भी, जब बीमार पड़े तो फिर तब भी गाने सुनने के लिए हमने रेडियो का इस्तेमाल किया। जब बोर्ड के एग्जाम्स रहे तब भी रात को देर तक जागने में रेडियो ने ही साथ दिया। और वैसे भी जब कोई साथी, दोस्त साथी सब अलग अलग हो गए, हम बड़े हुए, सब अपने अपने रास्तों में चले गए, लेकिन रेडियो ऐसा साथी रहा जो आज तक हमारे साथ है।
1: घर के काम करते समय रेडियो सुनने की जो आदत थी, वो क्या आज भी बनी हुई
0: आज
1: है?
0: भी बनी हुई है, और सिर्फ काम करते हुए नहीं, हम कहीं जाते हैं तो जर्नी के दौरान हम रेडियो सुनते हैं। और पहले जब मीडियम वेव्स का ज़माना था तब शायद हम कहीं जर्नी करते थे तो इतना आसान नहीं था, लेकिन अभी जब से सैटेलाइट और एफएम मोड है तब तो हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ये साथी हमारा निर्बाध हमारे साथ चलता है।
1: क्या रेडियो ने महिलाओं को अपनी आवाज और पहचान देने का काम किया है?
0: हाँ बिल्कुल दिया है, बिल्कुल, क्योंकि हम शुरू से ही देखिए महिलाओं, उनका नेचर भी समझा जाता है कि उनके अंदर करुणा भाव ज़्यादा होता है, उनके अंदर मातृत्व ज़्यादा होता है, उनके अंदर ममता ज़्यादा होती है, तो लोग ज़्यादा उनसे जुड़ाव रख पाते हैं, मतलब ऐसा समाज में अमूमन ये माना जाता है। तो इसी इसी भाव के साथ महिलाओं को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर रेडियो ने दिया, महिलाओं की आवाज़ को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया और महिलाओं को रेडियो पे ज़्यादा सुना गया। हालांकि पुरुषों को भी समान अवसर मिले, लेकिन महिलाओं को जब कहीं बहुत अच्छी शुरुआत में, मुझे लगता है बहुत बड़ी पहचान का मौका जब कहीं और समाज में इतनी आसानी से नहीं मिल रहा था, तो वो रेडियो ने दिया, और इसकी शुरुआत रेडियो ने महिलाओं की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक सहयोग दिया।
1: अच्छा, आज के मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में रेडियो की अहमियत क्यों बनी हुई है?
0: देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी, जो हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत विश्वसनीय कारक नहीं है इससे, लेकिन रेडियो ने लगातार अपनी विश्वसनीयता को बनाया हुआ है। जब हम कोई खबर रेडियो पे सुनते हैं तो हमें उसकी विश्वसनीयता पर कोई शक नहीं होता है, तो वो जो एक फैक्टर है वो लगातार बना हुआ है।
1: अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि रेडियो ने समाज की सोच बदलने में भी योगदान दिया है?
0: हाँ बिल्कुल की है, जैसे जैसे समाज ने प्रगति की है वैसे चीज़ों में बदलाव तो आया ही है, और उसमें रेडियो की भी एक बड़ी भूमिका रही है। हम अमूमन उसको श्रेय नहीं देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों के पास जब सूचनाओं का कोई दूसरा साधन नहीं था तो वो सूचनाएं कैसे प्रसारित हुई, कैसे समाज में बदलाव आया, तो रेडियो की ज़रूर एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है लोगों की सोच को विकसित करने में, बदलने में।
1: अच्छा, अगर आपको महिलाओं के लिए कोई खास रेडियो प्रोग्राम बनाने का मौका मिले तो वो किस विषय पे होगा?
0: मुझे लगता है करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स तो दिए जाते हैं, लेकिन कुछ और हम और ऐसा कर सकते हैं, जैसे जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं या छोटे टाउन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी लड़कियों के लिए कौन से ऐसे क्षेत्र करियर के हो सकते हैं, वो अभी छोटे शहरों में इस तरह की जानकारियाँ कम हैं। मेट्रो सिटीज़ की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर तो इस तरह के सबको कोर्सेज पता होते हैं कि ये कोर्स करके आप इस स्ट्रीम में भी जा सकते हैं, या इस तरह की जानकारी ज़्यादा होती है, लेकिन छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में इस तरह की जानकारियों का अभाव है, और क्योंकि रेडियो की पहुंच दूर दूर तक है, हर हर जगह तक है, तो इस तरह के कार्यक्रम पे फोकस और होना चाहिए।
1: आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पे इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं?
0: सबसे पहले तो मेरी तरफ से आकाशवाणी परिवार को बहुत सारी बधाई। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि रेडियो ने आज भी अपनी जो उपयोगिता है उसको बनाए रखा है, और वो आज भी लोगों के लिए विश्वसनीय बना हुआ है, लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। जैसे जैसे लोगों की पसंद बदली है उस हिसाब से रेडियो के कार्यक्रमों ने भी अपने अंदर बदलाव किया है।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपका नाम?
2: मेरा नाम मीरा शर्मा है।
1: आप क्या करती हैं?
2: मैं एक गृहिणी हूँ।
1: क्या आपकी जिंदगी में

0: ये रेडियो से जुड़े कोई खास मेमोरी रही है?
1: हमारे यहाँ तो मतलब ये समझ लीजिए कि बचपन से हमने रेडियो सुना, और हमें याद है कि हम बहुत छोटे थे तब हमारे घर पहली बार रेडियो आया था। हमारी मम्मी को बहुत शौक था संगीत का, तो उन्होंने अपने शौक के लिए खरीदा था रेडियो, और वो बहुत बजाती थी, उसको हम खूब सुनते थे बचपन से। और उसमें उनको खास तौर से संगीत के प्रोग्राम सुनने का शौक था ही, उसमें कृषि से संबंधित, क्योंकि उनको वो अपने घर के खेती कराने में भी बहुत रुचि लेती थी, तो उससे संबंधित भी सभी कुछ वो सुनती थी कि किसानों के जो प्रोग्राम आते थे कृषि दर्शन का, तो उसमें भी वो सब कुछ सुनती थी कि फसल में क्या क्या कैसे डाला जाता है, खाद पानी या बीज कहाँ से लें, ये सब चीजें हमने ये देखा कि रेडियो से सभी कुछ जानकारी मिलती है।
0: घर के काम करते समय पहले जो रेडियो सुनने की एक आदत थी, क्या आज भी वो कहीं ना कहीं आपकी बनी हुई है?
1: बिल्कुल, मेरी तो ये समझ लीजिए बचपन से तो थी ही, और वो शौक मेरा अभी तक उतना ही बना हुआ है। और मैं जहाँ कहीं भी रहती हूँ, रसोई में हूँ तो मेरा रेडियो बजता ही रहता है। जैसे जैसे जो जो भी प्रोग्राम आते हैं, सुबह भक्ति संगीत चलता है, उसके बाद लोक संगीत भी सुनती हूँ, और बीच बीच में जो भी दोपहर में महिला जगत जो आता है वो भी सुनती हूँ, शाम को भी ग्राम जगत है वो उसको भी सुनती हूँ। तो मतलब कह सकते हैं कि विस्तृत जो भी प्रोग्राम आते हैं वो मैं सब सुनती हूँ।
0: गांव की महिलाओं तक सही जानकारी पहुंचाने में रेडियो की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है, और गांव की महिलाओं के लिए तो मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत सुलभ साधन है ये, उनको हर चीज के लिए मतलब जागरूक करने के लिए और ज्ञान देने के लिए, कि सभी चीज से संबंधित जानकारी इतनी होती है रेडियो में कि अगर हम इसको अपने जीवन में शामिल रखें तो कदम कदम पे हमें ये अच्छी जानकारियां देता ही रहेगा।
0: आपके अनुसार रेडियो की वो कौन सी खासियत है जो आज भी लोगों को रेडियो से जोड़े रखती है?
1: मैं छोटा बड़ा मतलब लेडीज और जेंट्स, किसान, सभी के लायक प्रोग्राम होते हैं। विस्तृत जानकारी पाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है ये।
0: आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं?
1: इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि जैसे ये 90 साल पहले था लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए, आज भी वो उतनी ही रुचि से सुनने वाले इसको सुनते हैं और उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं।
0: अगर आपको महिलाओं के लिए कोई एक खास रेडियो कार्यक्रम बनाने का मौका मिले तो वो किस विषय पर होगा?
1: तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा यही होगा कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस पे ही कोई प्रोग्राम बनाएं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा बच्चे हैं, जो उनसे भी छोटी पीढ़ी है, वो आए तो वो हमारी पिछली संस्कृति को जो है अभी भी चल रही है इसको ही आगे बढ़ाएं, इसको मतलब अपने जीवन में शामिल रखें इसको।
0: और अंत में महिलाओं और युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है?
1: बस यही संदेश है कि रेडियो से अपना लगाव बना के रखें, ये हमारा एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक है, शिक्षा प्रद है, मतलब इसको हमेशा ही अपने जीवन में शामिल रखें।
0: तो मीरा जी, कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका नाम?
2: मेरा नाम निशा चौहान है।
0: आप कहाँ से हैं?
2: मैं बेसिकली देहरादून से ही हूँ
0: जी
2: और मैं केंद्रीय विद्यालय में जॉब करती हूँ।
0: जी तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप शब्द सुनते हैं रेडियो, तो सबसे पहली बात मन में क्या आती है?
2: रेडियो से हमको मन में आता है कि मतलब पुरानी चीज़ों से हम जुड़ते हैं,
0: जी
2: है ना। और पुरानी चीज़ों से जुड़ते हैं तो हमें जैसे पुराने गाने, पुराने संस्कृति वगैरह,
0: जी
2: ये
0: जी
2: सब याद आता है और बहुत अच्छा लगता है पुराना टाइम।
0: और आपसे अगली चीज मैं जानना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए जानकारी और जागरूकता फैलाने में आपको क्या लगता है कि रेडियो कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा है?
2: देखिए, पहले जो था कि इतनी अवेयरनेस नहीं था, तो
0: जी
2: रेडियो से ही हमें जानकारी मिलती थी,
0: जी
2: महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हो गया,
0: जी
2: है ना, और भी बाहर की जानकारियां,
0: जी
2: तो काफी हेल्पफुल है रेडियो,
0: जी
2: पहले के उसमें तो बहुत ज्यादा ही है।
0: जी और आज की डेट में आप क्या मानते हैं कि रेडियो की कौन सी ऐसी खासियत है जो आज की डेट में भी लोग रेडियो से कनेक्ट हैं?
2: रेडियो से हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती है,
0: जी
2: जैसे हम लोग जैसे कार से जाते हैं
0: जी
2: तो हमको आगे का ट्रैफिक के बारे में मालूम चलता
0: जी
2: है
0: जी
2: ना,
0: जी जी
2: वेदर्स के बारे में हम

0: पता चलता है,
1: जी
0: और भी बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है।
1: आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पे इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं?
0: इसकी अवेयरनेस है जो हम लोगों को जानकारियां देती हैं, विभिन्न
1: जी
0: तरीके की जानकारियां देती हैं,
1: जी
0: चाहे वो हेल्थ के बारे में हो या फिर संस्कृति के बारे में हो,
1: जी
0: तो ये हम लोगों को जागरूक करती है, चाहे वो बूढ़े लोग हों, जवान हों, सभी सभी एज के ग्रुप के लिए है ये।
1: जी अच्छा, अगर आपको कभी महिलाओं के लिए खास रेडियो कार्यक्रम बनाने का मौका मिले तो वो किस टॉपिक पे होगा?
0: वो हेल्थ से रिलेटेड, और आजकल महिलाएं बहुत बिजी रहती हैं अपने जॉब के लिए भी
1: जी
0: और घर के लिए भी,
1: जी
0: तो उस चीज के लिए मैं
1: प्रोग्राम
0: प्रोग्राम
1: मैनेजर।
0: करना चाहूंगी।
1: और लास्ट में महिलाओं के लिए और जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: रेडियो एक ऐसा माध्यम है,
1: जी
0: चाहे हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हों,
1: जी
0: वो हमको अच्छी जानकारियां देता है,
1: जी
0: और जैसे इंटरनेट वगैरह है या कुछ है तो कहीं पे हम नहीं सुन पाते हैं, है ना,
1: जी
0: और रेडियो के माध्यम से हम सब जगह से जुड़े रहते हैं, हर पूरे देश से कनेक्ट रहते हैं।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच।
2: कार्यक्रम में बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।
3: अरे मार्केट ट्रेंड देखा?
4: हाँ,
3: हाँ क्या, न्यूज़ देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
4: सॉरी,
3: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
4: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
3: मतलब
4: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
5: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
2: बहनों, आजकल एक चीज हर किसी की लाइफ में कॉमन हो गई है और वो है तनाव या स्ट्रेस। कभी काम का, कभी घर की जिम्मेदारियों का, कभी रिश्तों का, तो कभी भविष्य का तनाव। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, कई बार हम उन बातों का भी स्ट्रेस ले लेते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये मुझसे नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। बस यहीं से दिमाग की दौड़ शुरू हो जाती है। बहनों, कभी गौर किया है कि बचपन में लाइफ कितनी आसान लगती थी, रो लिए, हंस लिए, खेल लिए और बस बात खत्म। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम हर छोटी बात को दिल और दिमाग पे ले लेते हैं। खास तौर पे महिलाएं, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की टेंशन, काम का प्रेशर, रिश्तों को संभालना, ये सब कुछ इतनी शांति से करती हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि इनको तो कभी तनाव ही नहीं होता। लेकिन सच ये है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कभी कभी बहुत सारा स्ट्रेस होता है। बहनों, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना, हर बात पे परेशान होना और हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की जिद, ये चीज़ें धीरे धीरे इंसान को थका देती हैं। लाइफ कोई एग्जाम नहीं है कि हर सवाल का जवाब आपको सही देना ज़रूरी है। कई बार चलो छोड़ो या लेट इट गो करना भी ज़रूरी होता है। अगर खाना आज थोड़ा ख़राब बन गया, कोई बात नहीं। अगर घर का कोई काम छूट गया तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। तनाव कम करने का सबसे आसान तरीका है खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना, दिन में बस 15 मिनट, लेकिन वो 15 मिनट बस हमारे होने चाहिए। उसमें जो कुछ भी अच्छा लगे वो करना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, हर बात को दिल पे लेने की आदत छोड़नी चाहिए। लोगों का काम ही कहना है, सही करेंगे तो भी बोलेंगे और गलती होगी तो भी बोलेंगे, इसलिए दूसरों की बातों से ज़्यादा अपनी इनर पीस को महत्व देना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, हर समय स्ट्रांग बने रहना भी ज़रूरी नहीं है। अगर मन खराब हो तो रो लेना चाहिए, थकान हो तो आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि मशीनें बिना रुके चल सकती हैं, हम इंसान नहीं। और ये याद रखना चाहिए कि खुश रहने के लिए लाइफ का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कई बार अधूरी चीज़ें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। तो बहनों, खुद से एक छोटा सा वादा करते हैं कि हम हर छोटी सी बात का तनाव नहीं लेंगे, खुद को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं थकाएंगे और ज़िंदगी को थोड़ा हल्का, थोड़ा ईजी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए है, हर समय टेंशन लेने के लिए नहीं। तो बहनों, आप सुनते हैं इसी बात पे ये प्यारा सा गीत।

बहनों, गर्मी बढ़ती ही जा रही है और शरीर में वाटर इनटेक ठीक रहे, इसके लिए हम आज लेकर आए हैं एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक जिसका नाम है क्यूकम्बर कोकोनट कूलर। यानी कि इसमें खीरा और नारियल दोनों हैं और ये दोनों ही चीज़ें गर्मी के मौसम में एकदम ठंडक देती हैं। तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप खीरा छोटे टुकड़ों में कटा, 1 कप नारियल पानी, 1 से 2 चम्मच नींबू का रस, 5 से 6 पुदीना के पत्ते, चुटकी भर काला नमक, थोड़ा सा शहद और बर्फ। सबसे पहले ब्लेंडर में आपको खीरा, नारियल पानी और पुदीना डालकर उसे पीसना है। अच्छे से उसको स्मूथ ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद उसमें नींबू का रस, काला नमक और थोड़ा सा शहद डालें। फिर से उसको थोड़ा ब्लेंड करें और उसके बाद ग्लास में ड्रिंक के ऊपर थोड़ा सा बर्फ़ डाल के पुदीने के पत्ते गार्निश करके इसे सर्व करें। तो बहनों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप हम तक व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है MJ, देना है स्पेस, लिखना है अपना नाम, फिर देना है स्पेस, लिखना है शहर का नाम, उसके बाद फिर देना है स्पेस, उसके बाद लिखना है आपका जो सुझाव है, आपकी प्रतिक्रिया है या जो भी आपकी शिकायत है, और इन सब चीज़ों को भेज देना है आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। नंबर एक बार फिर से 7088000731। और आप हम तक पत्रों के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। पत्रों के लिए भी ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पत्रों के लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है अपना पत्र और उसे भेजना है हमारे पते पे। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, निकट रिस्पना पुल, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून। और देहरादून का पिन कोड आपको पता ही है 248001, यानी कि 248001। और कार्यक्रम का समय भी अब समाप्ति की ओर जा रहा है। फिर से आपसे इसी कार्यक्रम में होगी भेंट। तब तक के लिए अपनी सखी अर्चना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधिर द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपए नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रदेश में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम के अनुभवों और पद्धतियों का अध्ययन कर उन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने देहरादून में सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और उधम सिंह नगर जिला पंचायत की सामान्य बैठक में सदस्यों ने बिजली, शिक्षा, जलापूर्ति और सिंचाई सहित विभिन्न समस्याओं से सदन को अवगत कराया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा मार्गों से लेकर धामों तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, जिसमें धामों में श्रद्धालु सुरक्षित और सहज रूप से दर्शन कर रहे हैं। यात्रा मार्गों पर यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा प्रबंधों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। अब तक लाखों श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर अपने घर सकुशल लौट चुके हैं। इस बीच चारधाम यात्रा और प्रदेश में बदलते मौसम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
2: मौसम की कहीं पर ही पूरी इस प्रकार की अगर बात आती है तो यात्रा को अगर कहीं परिवर्तित करना होगा, सरकार से हेली सेवाएं भी चलती हैं, अन्य मार्ग भी हैं, तो जो भी यात्री आ रहे हैं तीर्थ यात्री में श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो उनकी यात्रा सही तरीके से संपन्न।
1: असम दौरे के बाद उत्तराखंड लौटे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम के अनुभवों और पद्धतियों का अध्ययन कर उन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की चाय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने के लिए प्रभावी विपणन रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय किसानों को अधिक लाभ मिल सके।
3: मैं 5 दिन के दौरे पर आसाम और नागालैंड गया था। वहाँ पर हमने जो क्षेत्र में काम करने वाले उनसे बातचीत हुई, कई फैक्ट्रियों का निरीक्षण हमने किया और हमें बताया गया कि हमारी जो उत्तराखंड की चाय है जो आज ऑक्शन में जा रही है, कलकत्ता में जाती है, आज उसको मार्केटिंग की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी चाय दार्जिलिंग से जो यहाँ देश के अंदर सबसे बेहतर चाय दार्जिलिंग की है। और मुझे वहाँ विशेषज्ञों ने बताया कि हमारी चाय उससे बेहतर है। उसके लिए हमने एक मार्केटिंग को डील करने वाली पार्टी से हमने बातचीत की है और शीघ्र ही हमारा जो चाय का ब्रांड है पूरे विश्व में दिखाई देगा।
1: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने हरिद्वार में अगले साल आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दृष्टिगत गंगा की स्वच्छता और अविरलता बनाए रखने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे पत्र में कहा कि कुंभ मेले के दौरान गंगा नदी की निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मल कीचड़ उपचार संयंत्र, नदी की सतह व घाटों की सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोगवाहक नियंत्रण से संबंधित कार्य शामिल हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से भेंट कर कुंभ 2027 की तैयारियों और नमामि गंगे परियोजनाओं पर चर्चा की थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट चुके कैदियों को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी रिहा नहीं करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका सहित कई अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इन कैदियों को रिहा करने के लिए बनाई गई नीति को 1 सप्ताह के भीतर न्यायालय को अवगत कराने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।
4: ये समाचार आकाशवाणी के

0: देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने देहरादून के सर्वे चौक स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सेंटर में महिलाओं के रहने की व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सेंटर में रह रही पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। अध्यक्ष ने कॉल रिकॉर्ड, काउंसलिंग विवरण और विभिन्न रजिस्टरों का अवलोकन करते हुए लंबित मामलों की समीक्षा भी की। उन्होंने सेंटर प्रशासक और काउंसलर्स को निर्देश दिए कि पीड़ित महिलाओं के साथ संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए तथा प्रत्येक महिला को विधिक सहायता की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। अध्यक्ष ने कहा कि सखी वन स्टॉप सेंटर केवल एक आश्रय स्थल नहीं बल्कि संकट की घड़ी में महिलाओं के लिए भरोसे और न्याय का केंद्र है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य की अध्यक्षता में रुद्रपुर में जिला पंचायत की सामान्य बैठक हुई। बैठक में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में बिजली, शिक्षा, जलापूर्ति, सिंचाई, चिकित्सा आदि विषयों पर अपनी समस्याओं से सदन को अवगत कराया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इन समस्याओं के शीघ्र समाधान करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
2: अभी हम इस तीसरी बोर्ड बैठक हमारी हुई है और हम सभी प्राथमिकताएं हमारे जो जिला पंचायत जो सदस्य हैं हमने उनसे कहा है कि जो वहाँ के अपने क्षेत्रों की जो प्राथमिकताएं हों, आपकी चाहे रोड की हो, चाहे नाली की हो, चाहे जल संबंधित जो भी कोई समस्याएं हों, उसको आप प्राथमिकता पे यहाँ रखेंगे, उस बोर्ड बैठक में हम पास कर उसको धरातल पर ले जाने का काम करेंगे।
1: मुख्य विकास अधिकारी देवेश शाशनी ने कहा कि बैठक में जो भी जनप्रतिनिधियों द्वारा समस्याएं रखी हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।
3: यहाँ पे समस्त जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स थे उपस्थित थे और उनके जितने भी हमारे सदस्यों का एक एक करके लाइन डिपार्टमेंट से वार्ता की गई, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, जल संस्था हो, जो भी ऐसे इश्यूज रखे गए थे शिक्षा के हो, तो सभी इश्यूज को हमने टाइम बाउंड मैनर में रिजोल्व करने के लिए कहा गया है। हमने कहा कि कहीं भी कोई स्पेसिफिक अगर कहीं कोई इंस्टेंस आता है, जैसे कि शिक्षा में एक इशू आया था कि वहाँ पे प्राइवेट बुक सब्सक्राइब की जा रही है, हमने कहा कि कोई भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे दे त्वरित उस पर कार्रवाई होगी क्योंकि ये आरटीई के लिए अगेंस्ट है। तो इसी तरह से जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगणों द्वारा जो जो इश्यूज दिए गए थे और जो बजट की स्थिरता के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं, उन समस्त प्रस्तावों को हमारे द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जो जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी और हमारे जो सदस्यगण हैं उनको भी इसमें अवगत करा दिया जाएगा।
1: बागेश्वर में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर औषधि विभाग ने गरुड़ और बैजनाथ क्षेत्र में कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दो मेडिकल स्टोरों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, दवाओं की क्रय विक्रय संबंधी अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए तथा दवाओं का भंडारण निर्धारित तापमान पर नहीं पाया गया। दोनों मेडिकल स्टोरों पर तत्काल प्रभाव से दवाओं के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है। वहीं एक प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति भी भेजी गई है। औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने कहा कि दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
4: जन स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं और गरुड़ में भी निरीक्षण किए गए और उसमें जो दो मेडिकल स्टोर थे जहां पर कुछ अनियमितताएं मिली जिसके क्रम में उनका औषधि क्रय विक्रय जो है तत्काल रूप से बंद कर दिया गया। हमारे द्वारा जो है वो जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी जितने भी औषधि वितरण इकाइयां हैं वहां पर नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी मना प्रभावी औषधियां हैं, जो एमटीपी किट्स हैं या जो कोडीन कंटेनिंग कफ सिरप हैं, उसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी वैद्य डॉक्टर के पर्चे पर ही उनका वितरण किया जाए। इसके लिए जो हमने विभिन्न जो है रिकॉर्ड जो है उनके द्वारा मेडिकल स्वामी द्वारा हमने बनवाए हैं और उनको हम इंश्योर भी कर रहे हैं निरीक्षण के समय, उनका सत्यापन किया जा रहा है नियमित रूप से।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रदेश में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम के अनुभवों और पद्धतियों का अध्ययन कर उन्हें

0: लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने देहरादून में सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उधम सिंह नगर जिला पंचायत की सामान्य बैठक में सदस्यों ने बिजली, शिक्षा, जलापूर्ति और सिंचाई सहित विभिन्न समस्याओं से सदन को अवगत कराया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सौ दशमलव पांच मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 1:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये स्वर थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम था कश्मीर की कली। गीत था SH बिहारी का और संगीत OP नैयर का था। आइए आपको सुनवाते हैं नौशाद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा गीत। आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम है पालकी।

ये थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार, फिल्म का नाम था पराया धन। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे आर डी बर्मन। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिल का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं, सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक

0: या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
1: जी
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
0: जी
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
0: जी
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा। और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो। देखो मुझे छू सकते हो।
3: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
3: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन,

0: कुछ बोल मोहन।
1: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
0: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
1: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
0: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
1: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
0: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
1: हाँ, हाँ, हाँ। आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं।
0: जी
1: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
2: कौन है भाई, अभी आया?
1: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
1: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
3: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
1: हाँ,
3: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
1: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
0: जी
3: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
1: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
1: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
1: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
0: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है।
0: जी।
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
0: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
1: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
1: जी।
0: और अगर लू लग जाए तो?
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
0: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
0: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
0: जी।
1: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
0: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
1: ठंडक
4: में खेले भरपूर।
5: <भर्पूर। laughs>
3: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
7: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।
7: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
7: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
8: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
7: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
8: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
7: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
8: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
7: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
8: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को, यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ, तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गनें बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्य टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को

0: सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमबी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के ए सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवी के सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त

0: करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्तारोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों, देश की सेवा किसी का सपना होता है तो किसी के परिवार की सैन्य परंपरा तो किसी का अपना नसीब। लेकिन जॉर्जन थॉमस ने अपने परिवार में चल रही एक सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया। कर्नल जॉर्जन थॉमस का जन्म 22 जुलाई 1965 को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के गांव कट्टूर में हुआ था। इनके पिता कैप्टन पी ए थॉमस था और माँ का नाम एलेमा थॉमस। इनका परिवार सैन्य परंपरा से था और इसी परंपरा को आगे निभाते हुए इन्होंने भी सेना में जाने का फैसला किया और मार्च 1986 में इन्होंने आधिकारिक प्रशिक्षण अकादमी ओटीएस चलने से पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की 11 बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में इन्होंने कमीशन प्राप्त किया।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, जोजन थॉमस ने 6 वर्षों तक आर्मी एविएशन का कार्य किया और प्रशिक्षित पायलट ये बन गए। वर्ष 2008 में इन्हें प्रतिनियुक्ति पर जम्मू कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियान में 45 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया, जहां इन्होंने जमीनी और हवाई दोनों में अपनी भूमिका निभाई और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वर्ष 2008 में जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में अस्थिर क्षेत्रों में इन्होंने अभियान चलाया, जहां जोजन थॉमस ने अपनी साहस, सामरिक कुशलता और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया।

सैनिक साथ के 22 अगस्त 2008 की सुबह 3:30 बजे जम्मू कश्मीर में तैनात 45 राष्ट्रीय राइफल्स की कमांडिंग ऑफिसर जोजन थॉमस को सूचना मिली कि कुपवाड़ा जिले की माछल में घने दुर्गम जंगलों में छिपे भारी हथियारों से लैस आतंकवादी हैं। पर ये इलाका बेहद ही उबड़ खाबड़, घोर अंधेरी रातें और दुश्मन के लगातार हमले के लिए जाना जाता है। लेकिन थॉमस ने बिना देरी किए, बिना किसी हिचकिचाहट के आतंकवादियों को भगाने के लिए एक दल का नेतृत्व किया। जैसे ही दल आगे बढ़ा, आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। लेकिन नेतृत्व कर रहे थॉमस ने अपनी जान की परवाह नहीं की और तेजी से दुश्मन की ओर कूच किया और इस भीषण मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया।

देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत ये

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

सैनिक साथियों, इस गोलीबारी में कर्नल थॉमस को कई गोलियां लगी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पर इस गंभीर हालत में भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हिम्मत आगे बढ़ाकर स्वयं आगे बढ़ते चले गए और दूसरे सैनिकों को भी आगे बढ़ाया। बल्कि ऐसे में आतंकवादियों से इनकी हाथापाई हुई, उसे काबू किया और उसे मार गिराया। पर अंत में इनका घाव गंभीर होने के कारण कि शहीद हो गए। सैनिक साथियों, कर्नल जोजन थॉमस की असाधारण साहस और अद्वितीय वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा

मरणोपरांत सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। देश के प्रति इनके त्याग, समर्पण और बहादुरी को हम सलाम करते हैं।

सैनिक साथियों, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न हुआ। हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बजे ही आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष अनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। चारधाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए चमोली पुलिस ATS और 7 असम ATS ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान बद्रीनाथ धाम से लेकर सीमांत गांव माणा तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। नगर निगम देहरादून की ओर से दून विश्वविद्यालय में स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत विशेष नागरिक फीडबैक अभियान का आयोजन। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं और शिक्षण संस्थानों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा अधिक से अधिक नागरिकों का फीडबैक लेना था। हरिद्वार जिले में शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक कचरा और ठोस अपशिष्ट के उचित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने विभिन्न शासकीय संस्थानों का औचक निरीक्षण कर शिक्षा और

0: बाल विकास व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहा, शासकीय कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में जनसेवा केंद्रों के सत्यापन के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हरिद्वार के पिरान कलियर में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक जनसेवा केंद्र को सील कर पुलिस ने उसके संचालक को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 6 फर्जी कूट रचित आधार कार्ड, 1 फर्जी कूट रचित जन्म प्रमाण पत्र, 7 फर्जी मोहरें और कंप्यूटर उपकरण बरामद किए। बागेश्वर में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर औषधि विभाग ने गरुड़ और बैजनाथ क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 2 मेडिकल स्टोरों पर तत्काल प्रभाव से दवाओं के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई और मौसम विभाग ने प्रदेश में पर्वतीय जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3:02 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

ये स्वर थे उदित नारायण, सुनिधि चौहान और साथियों के, फिल्म का नाम था अग्निपथ। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत अजय अतुल का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अगला गीत। गीत रचना इरशाद कामिल की, संगीत जीत गांगुली का, आवाजें ही पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की, फिल्म का नाम आशिकी टू।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027, आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी।

ये स्वर्तेल का याग्निक को उदित नारायण की फिल्म का नाम था आशिक। शब्द थे समीर के और संगीत संजीव दर्शन का था। श्रोता सुन रहे गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। गीत को लिखा है इरशाद कामिल, संगीत प्रीतम का है, आवाजें हैं कार्तिक महालक्ष्मी अंतरा मित्र और साथियों की, और फिल्म का नाम है एक्शन।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
1: सूचना, शिक्षा।

0: और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

ये थे मुस्तफ़ा जाहिद, फिल्म का नाम था आवारापन, शब्द थी सईद कादरी की और संगीत प्रीतम का था। श्रोता सुन रहे गाने रहे तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत नदीम शर्वन का है। आवाज़ें आशा भोसले और नितिन मुकेश की। फिल्म का नाम है बलमा।

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

के की आवाज़ में गीत था, फिल्म का नाम था बजरंगी भाईजान। गीत था कौसर मुनीर का और संगीत प्रीतम का था। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज़ें हैं के एस चित्रा, ए आर रहमान और साथियों की। फिल्म का नाम है बॉम्बे। गीत को संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे इरशाद कामिल का लिखा गीत। आवाज़ें थी श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की, फिल्म का नाम था हैप्पी न्यू ईयर। आइए आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अंतिम गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म का नाम है पैडमैन।

0: अभी आप सुन रही थी गाने रे तेराने। इसका प्रसारण आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से किया गया। इस समय शाम के 4 बजे आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। चारधाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए चमोली पुलिस ATS और 7 आसाम ATS ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान बद्रीनाथ धाम से लेकर सीमांत गांव माणा तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य योगेश सिंह रजवार ने उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को निर्धारित स्वास्थ्य पोषण शिक्षा और वन स्टॉप सेंटर के कार्य संचालन को लेकर बैठक की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने नगर क्षेत्र में पेयजल परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया। कार्यों में गुणवत्ता और जनसुविधा बनाए रखने के निर्देश दिए। हरिद्वार जिले में शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक कचरा और ठोस अपशिष्ट के उचित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने विभिन्न शासकीय संस्थानों का औचक निरीक्षण कर शिक्षा और बाल विकास व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहा, शासकीय कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने ई रिक्शा सत्यापन अभियान के तहत शिवमूर्ति चौक से ललतारो पुल के बीच विशेष चेकिंग की। इस दौरान अनियमित पाए गए 25 ई रिक्शाओं को सीज किया गया। नई टिहरी नगर पालिका शीघ्र ही अपने बेड़े में 8 नई बहुउद्देश्य वाहन शामिल करेगी। इन वाहनों के संचालन से न केवल

0: कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि पहली बार नगर क्षेत्र में गौग्रास सेवा और शव यात्रा वाहन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी। हरिद्वार से शुरू हुई विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों और प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में डोली यात्रा के बागेश्वर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया और मौसम विभाग ने प्रदेश में पर्वतीय जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:02 हुए हैं। लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए पंडित वीजी जोग का वॉयलिन पर बजाया राग शुद्ध सारंग।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित वी जी जोग का वॉयलिन पर बजाए राग शुद्ध सारंग।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम एक कलाकार का।

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम एक कलाकार में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कराए और वो एकमात्र ऐसे गायक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ भट्टाचार्य की। आप सभी उनको कुमार सानू के नाम से जानते हैं, हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक जिन्होंने अपने गाने की शुरुआत करी 1989 में, और 2009 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मिला। भारत के प्रसिद्ध गायकों में से कुमार सानू, आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं उनके इस गीत से।

श्रोताओं, कोलकाता में जन्मे कुमार सानू का मूल नाम, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, केदारनाथ भट्टाचार्य है। कुमार सानू को गायकी और तबला वादन सिखाने वाले उनके स्वयं के पिताजी थे, जो कि स्वयं एक अच्छे गायक और संगीतकार थे। गायक किशोर कुमार को अपना आदर्श मानने वाले कुमार सानू ने गायकी में अपना खुद का एक अलग अंदाज बनाए रखा है। उनको कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया पहला ब्रेक देकर जगजीत सिंह जी ने, और उनको मिली फिल्म जादूगर। एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए और ऐसा करने वाले वो एकमात्र गायक बने। उन्होंने 10,000 गाने गाए हैं।

से सम्मानित नागरिक के तौर पर मनोनीत भी किया गया। फिर उनकी वापसी दोबारा हुई फिल्म राउडी राठौर से, गीत छम्मक छल्लू छैल छबीली से, और 2014 में रिलीज हुई यशराज फिल्म्स दम लगा के हईशा, जिसमें उन्होंने दर्द करारा गीत गाया। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि कुमार सानू जो हैं वो आशिकी की फिल्म और कुमार सानू की आवाज़ एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो आइए अब उसी फिल्म से सुनते हैं कुमार सानू के स्वर में इस गीत को।

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, कुमार सानू ने आशिकी से प्रसिद्धि हासिल की और लगभग सभी पुरुष एकल गीत जो थे उन पे अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। और ये पुरस्कार कुछ यूँ जीता कि 1990 आशिकी से शुरुआत की उन्होंने और अगले 5 साल तक वो लगातार ये अवार्ड लेते चले गए। आशिकी, साजन, दीवाना, बाजीगर और 1942 अ लव स्टोरी। उन्होंने बंगाली, मराठी, असमीज, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, उड़िया और उर्दू इन सभी भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है, 28 गानों वाली बात, तो उसके कारण उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। श्रोताओं, उदित नारायण के साथ इनका काफ़ी दोस्ताना रहा और दोनों ही प्रमुख पुरुष पार्श्व गायकों में से थे। 1990 के दशक के दौरान ना कुमार सानू ने प्रमुख महिला पार्श्व गायिकाओं में विशेष रूप से अलका याग्निक के साथ सहयोग किया और कई गीत उनके साथ भी गाए। तो आइए सुनते हैं अलका याग्निक के साथ कुमार सानू के स्वर में इस गीत को।

श्रोताओं, 2000 के दशक के दौरान मुख्य धारा के बॉलीवुड में कुमार सानू की उपस्थिति में गिरावट आई। हालांकि उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाने रिकॉर्ड करना और लाइव शो करना जारी रखा। 2010 के दशक से आगे कुमार सानू ने 1990 के और 2000 के दशक के शुरुआती बॉलीवुड संगीत का जश्न मनाने वाले नॉस्टैल्जिया कॉन्सर्ट और स्टेज इवेंट्स पर ध्यान केंद्रित किया। कुमार सानू ने इसके साथ ही किशोर कुमार के गीतों के कई श्रद्धांजलि एल्बम जारी किए, जिनमें किशोर की यादें और यादें सीरीज शामिल है, जिन्हें उन्होंने गायक अभिजीत और विनोद राठौड़ के साथ प्रस्तुत किया। 2017 में साधना सरगम के साथ उन्होंने टीवी श्रृंखला ये उन दिनों की बात है का टाइटल ट्रैक भी गाया। तो इस तरह से कुमार सानू जो हैं वो आज भी हम सबके बीच में अपनी आवाज़ के कारण जाने जाते हैं। अभी आपने सुना था फिल्म फूल और कांटे का गीत, और अब आइए सुनते हैं अनुराधा पोडवाल के साथ फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये गीत कुमार सानू की आवाज़ में।

श्रोताओं, पिछले दिनों कुमार सानू का देहरादून आना हुआ और संगीत जगत में इनके अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें श्रृंखला श्री उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया। हम सभी शुभकामनाएं देते हैं कुमार सानू को कि वो यूं ही गाते रहें और हम सबको ऐसे ही अपने गीतों से खुशियां देते रहें, बांटते रहें। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर बढ़ते हैं और फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित इस गीत को फिल्म दीवाना से सुनते हैं।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ एक कलाकार कार्यक्रम समा FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र समय समाचारों का।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सकें। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में NTA द्वारा जांच निष्क्रियों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवारों की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान

0: अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
1: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। डॉ. चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा कि एआई का एकीकरण इंडिया पोस्ट को बड़ी मात्रा में परिचालन डेटा संसाधित करने, परिणामों की भविष्यवाणी करने, नियमित कार्यों को स्वचालित करने और डाक नेटवर्क में सेवा वितरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालय में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ. शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नियोग, असम गढ़ परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात 9:15 हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम स्पॉटलाइट और हमारे लखनऊ केंद्र से रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण। क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति शाम 7:50 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार। अब से थोड़ी ही देर में प्रसारित होगा युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी 5:10 पर। शाम 5:45 पर हमारे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत। विश्व पादप दिवस और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना विषयों पर चर्चा आप सुनेंगे किसान साथियों के कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 7:00। रात्रि 8:00 श्रोता सुनेंगे संस्कृत कार्यक्रम में संस्कृत वार्ता। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत विविध कलाकारों के स्वर में गजल रात्रि 8:15। श्रोताओं रात्रि 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम गिरी गुंजन। रात्रि 10:30 का समय रहेगा श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब नजर डालते हैं कल की तीनों सभाओं के कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर।

सुबह 7:30 बजे शैल संगीत के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे ज्योति उप्रेति सती के स्वर में कुमाऊनी गीत। प्रातःकालीन सूचना पर एक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा 8:30 बजे। कल सुबह 9 बजे आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। कल 9:45 पर डॉक्टर राजेश तिवारी से भेंगापन लक्षण कारण और उपचार विषय पर रमेश चंद्रा की बातचीत आप सुनेंगे सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रायोजित कार्यक्रम लंबी सुबह 10:02 पर आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत मंजू सुंदियाल के स्वर में गढ़वाली गीत कल सुबह 10:35 पर। व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा 11:00 बजे और रात्रि 10:00 बजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे अर्चना तलगांवकर की आवाज में गजल। दोपहर 12:30 बजे जनानों का वास्ता कार्यक्रम में डॉक्टर ममता कुंवर द्वारा गढ़वाली वार्ता, विषय है उत्तराखंड की प्रमुख महिला साहित्यकार। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का समय दोपहर 2:30 बजे। फिल्मी गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए तराने में दोपहर 3:02 पर। कल शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत में श्रोता सुनेंगे पंडित मणिलाल नाग द्वारा राग सरस्वती में सितार वादन। शाम 4:30 बजे आप सुनेंगे एक कलाकार कार्यक्रम। हमारे दैनिक कार्यक्रमों का समय वही युववाणी 5:10 ग्राम जगत कार्यक्रम में श्री शंभू प्रसाद रतूड़ी द्वारा गढ़वाली कहानी 5:45 पर और शाम 7:00 बजे कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत चर्चा का विषय है अल्पसंख्यक कल्याण योजना और खरीफ फसलों की तैयारी। क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून का विशेष कार्यक्रम राज्य दर्शन कल 7:50 पर। इसी के साथ हमारे आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अतुल्या रावत। दोस्तों, ये मई का मंथ तो आ गया और इसके आते ही गर्मियां इतनी ज़्यादा शुरू हो गई, हीट वेव, हाई अलर्ट और पता नहीं क्या क्या। लेकिन आजकल देहरादून के मौसम ने कुछ अलग रूप बदल लिया है। सुबह धूप होती है तो दिन में अचानक बारिश आ जाती है, पर अच्छा है, इसमें टेम्परेचर भी कंफर्टेबल रहता है ना, और ज़्यादा हीट से हम बच भी पाते हैं। तो दोस्तों, आज की शाम को और शानदार बनाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बागी 3 से। आवाज़ दी है के तुलसी कुमार एंड विशाल दादलानी ने।
1: Authentic, original, and better than our rivals.

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर विद्यार्थी, कर्मचारी, गृहिणी और युवा के जीवन से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समय प्रबंधन, जो आज की ज़रूरत भी है। और दोस्तों, कहा जाता है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय बहुत कीमती होता है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख ले, वो जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ आसानी से चढ़ता है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हर कोई व्यस्त है। किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को नौकरी की, तो कोई घर और परिवार की जिम्मेदारियों में ही उलझा है। दोस्तों, ऐसे में यदि समय का सही प्रबंधन ना हो तो तनाव, थकान और असफलता हमारे जीवन का हिस्सा ही बन जाती है। और दोस्तों, समय प्रबंधन का अर्थ क्या है? अपने कार्यों को सही समय पर और सही तरीके से पूरा करना। यदि हम दिन की शुरुआत योजना बनाकर करें, ज़रूरी कार्यों को प्राथमिकता दें और समय की बर्बादी से बचें, तो हम अपने लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और मान लीजिए एक विद्यार्थी पूरा दिन मोबाइल और सोशल मीडिया में बिताता है और परीक्षा में समय में तनाव उसे आ जाता है, वही दूसरा विद्यार्थी जो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है और समय का सही उपयोग करता है, स्पष्ट है कि सफलता उसी को मिलेगी जिसने समय को महत्व दिया है। और समय प्रबंधन के कुछ आसान उपाय हैं, जैसे रोज का टाइम टेबल बनाइए, जरूरी काम पहले कीजिए, मोबाइल और टीवी पर समय कम बिताइए, आराम और मनोरंजन के लिए भी समय निकालिए, लेकिन आज का काम कल पर टालने वाली आदत को छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों, समय एक ऐसा धन है जो एक बार चला जाए तो वापस बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए हमें हर पल का सही उपयोग करते ही रहना चाहिए। और इसी के साथ हम इस पल का भी सही उपयोग करते हैं और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं गीत फिल्म गुंडे से, जिसे आवाज़ दी है के बपी लहरी, नीति मोहन ने।

दोस्तों कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम जीवन के हर कार्य को खुशी और ऊर्जा के साथ कर सकते हैं, है ना। और अच्छी सेहत का सबसे बड़ा आधार है संतुलित और पौष्टिक आहार। दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग स्वाद और सुविधा को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, ठंडे पेय पदार्थ हमारे भोजन का हिस्सा बनते ही जा रहे हैं। लेकिन ये भोजन स्वाद तो देता है पर शरीर को सही पोषण तो बिल्कुल भी नहीं दे पाता। दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम और पर्याप्त मात्रा में पानी। ये सभी पोषक तत्व हमें हरी सब्जियों, दालों, दूध, फल और अनाज से प्राप्त होते हैं। और मान लीजिए कि दो बच्चे हैं जिसमें एक बच्चा रोज चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर का खाना खाता है जबकि दूसरा बच्चा घर का पौष्टिक भोजन, फल और दूध लेता है, तो कुछ समय बाद दूसरा बच्चा ज़्यादा स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय दिखाई देगा। यही अच्छे आहार का प्रभाव है। दोस्तों इस विषय पर हम थोड़ी और चर्चा आगे करेंगे, तब तक सुनते हैं ये गीत फिल्म फिलौरी से, जिसे आवाज़ दी है रोमी और पावनी पांडे ने।

दोस्तों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य के बारे में, और अच्छी सेहत के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए, जैसे कि रोज़ ताज़ा और संतुलित भोजन करें, हरी सब्जियां और फल अधिक खाएं, ज़्यादा तेल और मसाले वाले भोजन से दोस्तों थोड़ा सा बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी बिल्कुल पिएं और समय पर भोजन करने की आदत डालें, क्योंकि दोस्तों स्वस्थ शरीर ही खुशहाल जीवन की पहचान है। यदि हमारा भोजन सही होगा तो हमारा शरीर भी तो मजबूत और मन प्रसन्न रहेगा। और दोस्तों, आज से हम ये संकल्प लें कि स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे और पौष्टिक आहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि जब जीवन स्वस्थ होगा तभी हमारा आने वाला कल भी सुंदर और सुरक्षित होगा। और इसी नोट के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं ये गीत फिल्म बैंग बैंग से, जिसे आवाज़ दी है बेनी दयाल एंड नीति मोहन ने।

दोस्तों, जब भी किसी अच्छे कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की बात आती है तो हम अक्सर सुनते हैं इस कॉलेज की NIRF रैंक बहुत अच्छी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये NIRF रैंकिंग होती क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा। इसकी शुरुआत भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा की गई थी ताकि देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सके। दोस्तों, NIRF रैंकिंग के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि कौन सा संस्थान पढ़ाई, रिसर्च, प्लेसमेंट और सुविधाओं के मामले में बेहतर है, और इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, फार्मेसी और विश्वविद्यालय जैसी अलग अलग श्रेणियों में संस्थानों को रैंक भी दी जाती है। और किसी भी कॉलेज की रैंकिंग केवल उसकी बड़ी बिल्डिंग देखकर नहीं की जाती, इसके लिए कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी रखा जाता है दोस्तों, जैसे कि शिक्षण की गुणवत्ता, रिसर्च और नवाचार, विद्यार्थियों का प्रदर्शन, प्लेसमेंट, संस्थान की प्रतिष्ठा और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं। इन्हीं आधारों पर संस्थानों को अंक दिए जाते हैं और फिर उनकी रैंक भी तय की जाती है। और अच्छी रैंकिंग पाने के लिए संस्थानों को बेहतर पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च और नवाचार पर भी ध्यान देना होता है दोस्तों, और इसके लिए कई कॉलेज आधुनिक लैब, डिजिटल शिक्षा और अनुभवी शिक्षकों पर भी अधिक काम कर रहे हैं। दोस्तों, NIRF रैंकिंग विश्वविद्यालय के लिए बहुत उपयोगी होता है, इससे उन्हें सही कॉलेज चुनने में मदद मिलती है और साथ ही कॉलेज और विश्वविद्यालय भी अपनी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास करते रहते हैं। आज देश के कई प्रसिद्ध संस्थान और बड़े विश्वविद्यालय NIRF रैंकिंग में अपनी जगह बनाने के लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। और दोस्तों, NIRF रैंकिंग केवल नंबर नहीं है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। ये विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य चुनने में मदद करती है और देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में। और इसी के साथ कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गीत फिल्म मैं हूं ना से, जिसे आवाज़ दी है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों, अभी आपने सुना ये गीत। उम्मीद करते हैं आपको ये गीत बहुत पसंद आया होगा। और आज के कार्यक्रम में हमने चर्चा की समय प्रबंधन की, और जिसमें हमने जाना कि समय कितना ज़रूरी होता है और इससे कितना कीमती होता है। हर व्यक्ति को इसका उपयोग करना सही से सीखना चाहिए और अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों को पाने के लिए इसका उपयोग करते रहना चाहिए। और दूसरा हमने जाना कि अच्छी सेहत किस लिए ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है, हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, और हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा जीवन काल भी सही रहेगा। और उसके बाद हमने जाना NIRF के बारे में कि ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो रैंकिंग बताता है कॉलेजेस की। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। अब समय आ चला है कार्यक्रम में समाप्ति का। आपको हमारा ये युवानी कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें खत लिखकर ज़रूर बताएं। हमारा खत लिखने का पता है, कार्यक्रम युवानी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून। हमारा पिन कोड है 2480001। आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं अतुल्या रावत, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुनधारा सभी भाई बहनों ते नमस्कार। विनय ध्यान छोड़ बेटे
1: नगर मां ममता पांडे तरबटीले नमस्कार प्रणाम पहला
0: मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा के
1: मंगलम पुंडरीकाक्ष
0: मंगलम। आज मंगलवार से ना जब के अभार हम सुबह ले भगवान जी और हनुमान जी तैयार करना
1: जी,
0: लेकिन ना हम कुछ जान कक कक बटे कर बस गिच चिन रेड जान जाना खुणता नहीं रेड जान
1: जी।
0: लेकिन आज हमारा इसको ले कार्यक्रम हूं केल कारी यहाँ वास्ता हम भी जरे सी छेड़छाड़ करना छो के लकी बचपन सबसे बढ़िया उम्र छ बोल
1: जी जी बहुत बल
0: अन आड़ के लो कोई बात नहीं दुई चमक पुड़ जाए तो पुड़ जाए
1: जी
0: रहनु नीचे। लेकिन आजकल का बच्चा बहुत बहुत बहुत सियाना हो गिन भाई
1: जी
0: कन मतलब नु आपते
1: वजह अच्छे ध्यानी जी मोबाइल
0: हां ने सुनना हो के ना
1: जी
0: ना बाबा का आंख देखे डर ना ना वो एक झपाक से
1: होए
0: तो आखिर किले किले जो देखना छन के नए जमन छ वो बाप भी नहीं बोलता हां बिंडे बच्चों को के छोड़ो रहने दियो क्या बना बच्चा छ
1: जी।
0: लेकिन बच्चों तो यू चेणु कि जब तक आप अपना बड़ों को सम्मान निकला उनको बताया बाट पर नहीं हिटला तो भूल बहुत देर हो जाना और तब आदि भटको चो तब आदि बोए बाब याद
1: जी। ध्यानी जी उम्र तस से हो ना ये वक्त तो जो इज बाबू छे बिल्कुल दुश्मन लगने और अभी एक बात जब समझ में हूँ तब हूँ हो की करो हमल
0: ये देख लिया ना कि बाद में बोल दे क्या कहा तुम ना
1: जी हमारे वास्ता
0: हाँ जबकि छत्तीसदा अगर पूछो के माँ यू क्या छत्तीसदा मान बतायो पर माँ कभी निचेड़ी है
1: जी।
0: और आज एक दा अगर बोन पूछ देना
1: बिल्कुल ध्यानी जी
0: तो कदा था बन बता तुम ते
1: गुस्से तो उग्र बाबा हो बतने के छो
0: तो बच्चो जरा हाथ जोड़ी निवेदन च सहनशील बन जाओ दी किला की अगर सहनशील रह ला तो जैसे जीवन में सफलता का जो प्रतिशत जो बढ़ जाना
1: जी।
0: किला की यह सहनशीलता आप तो परिवार बिटे की और समाज तक ले जान
1: जी।
0: जब आप नौकरी चाकरी कर लगभग भी सहनशीलता बहुत जरूरी है तो आज का जो हमारा जवान छन और खास कर किशोर किशोरिया छन वो मत भाई ना वो अनगार बना
1: जी
0: तो छड़ी तो बस है ना
1: जी।
0: तो इधका बिना आप

0: सहिष्णु बनिए और सहनशील बनिए, दगड़मा बड़ों को आदर करण सीखिए। हम फिर वही बहुत बताने बढ़िया जो कि आपका वही बाबा और आपका गुरु जी बता दे।
1: जी जी तो कै बैठे तो सुन
0: हाँ वही सकत
1: ला
0: अमर बोलियो
1: जी
0: मैं जी।
1: जी
0: तो इन चुके आज किलकारी कार्यक्रम प्रस्तुत कर ला कन्या जूनियर हाई स्कूल नंद प्रयाग चमोली का बच्चा
1: जी
0: के लेकिन नौनी छ नौनी की बात आज जे सब जगह होनी छ। और एक सखत बात हो रही
1: जी
0: ज्यादातर आप देखदा छ कि अस्पतालों में जो हमारे नर्स छन वो
1: जी
0: हमारे माता बहनी छन।
1: जी जी बिल्कुल चेली छन
0: आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस उनको याद में बल
1: बिल्कुल बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जी। और ध्यानी जी सचमा जब हम अस्पताल में भर्ती हूँ ना तो जो डॉक्टर साहब छन ना उन्होंने ज्यादा भली के देखभाल हमारे नर्स करने न। अपने बात बतूनू जब हम गर्भवती छा और चल या चल होनी वाली छी तो कतू सेवा उन्हें करी तो यही याद रह जाऊँ और तो उन्हें सेवा तो बढ़नी छे एक दिन उन्हें ले जिले हो चु
0: हाँ और सेवा भाव का चलदा ही एक
1: जी
0: इनो प्रतिष्ठित सेवा कोई पद च
1: जी
0: जखमा की आज भी हम कई लोगों थे याद करना।
1: जी
0: और मिजा कखी न कखी उन्हीं जो नर्स छन अस्पतालों में
1: जी
0: और दुनिया समाज में जो अपन अपन योगदान दे। और इतना ही ना कि कुजान कख तक उन इन बोले जाए त्याग और बलिदान तक दे दे।
1: जी
0: इना सभी हमारा जो नर्स रहन और जो आज काम करना चाहन सभी उन एक बड़ू सल्यूट छ हमारे तरफ बटे के।
1: जी
0: और अब कार्यक्रम में जरा से गीत गा तक छुई करो दी।
1: जी बिल्कुल ध्यानी जी ले जानू कुमाऊं तरफ और सुनू दया शंकर फुलार को गायो कुमाऊनी गीत।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर में
4: पहले ही बोला ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
5: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
6: देवी जी की सुनो
7: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दगड़ियों आप सुनो दया शंकर फुलारा को गयु कुमाऊनी गीत और सुने इन कुछ रेवार। एक बार फिर स्वागत छे एक बार कार्यक्रम में आप सभी जनों को।
6: और अगर आप हम तो सुनना छे ना तो भाई हम तो आप लिख सकते ना हमारा पता छे चिट्ठी gramjagat@gmail.com।
5: जी
6: ये पर अपने राय दिया और अब हम स्कूल है बच्चों का दगड़ जरे से खेल खेल लेना
5: जी
6: और सुनदा यू खेलकारी कार्यक्रम जो है प्रस्तुत करना चिन कन्या जूनियर हाई स्कूल नंद प्रयाग चमोली का बच्चा
5: जी।
6: स्कूल बुलबुलो आज किलकारी कार्यक्रम का वास्ता हम पहुंचा छुआ जनपद चमोली वखकू दसोली ब्लॉक और स्कूल च राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल नंद प्रयाग। तो आज यखा का स्कूल है आपक दगड़ अपने गीत कविता खारियों कुछ जगदा कतना होशियार छन ये भूली किला आज भूलत छ ना कन्या जूनियर हाई स्कूल च ये सभी बुलबुला बोला चाहिए ना बोली चन ये अपन कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहे अपन स्कूल की प्रार्थना से।

0: यचे स्कूल की प्रार्थना दैणी भेजे माँ सरस्वती। और अब हम ई स्कूल को परिचय यख का जो अध्यापक छन हूँ सलूला। नमस्कार, आप अपनो क्या छ?
1: मैं मोहन प्रसाद पुरोहित मिलनो छ।
0: पुरोहित जी, आप बताएं कि यह कितना पुराना स्कूल छ?
1: मनवर ये स्कूल जो छ सन 1990 में स्थापित हुए छ और ये अलकनंदा नंदा किनी संगम का लगभग नजदीक में ये स्कूल स्थित छ। और यख मा नंदप्रयाग का लोकल गांव बटी जो बच्चा यख आंदन छ।
0: कितना छ यख छात्राओं की संख्या?
1: यखमो वर्तमान में 27 बच्चा बालिकाएं हमारे यखमो पढ़ दी छन। लोग बाग जो काफी दूर बटिन यखमो तेफना का नजदीक वे कने राजबगठी महड़ बगठी मुनियाली भटखोला।
0: अरे वाह, तेफना भी हम पहुंचा छो हां, वो का स्कूल भी हमार कवर करी। लेकिन सुंदर लगणु की यूं भूलूं का बीच में एक सुंदर माहौल में एक पढ़े लिखे चलने छे। अच्छा ठीक छे, ये बच्चा में था चंट चालाक दिखेना छन। आप ही बताओ दे, यूं का बुए बाप भी अपन बच्चों का और खास करके बालिका शिक्षा का प्रति जागरूक छन? ये बोल देने के ना अमन स्कूल भेजा ली, अब बस गुरुजी जाने और स्कूल जाने इन छे छे या उमा अभी रुचि छे?
1: रुचि पैदा करने भी आवश्यकता छे छे ना, अभी एकदम एक जागरूक भी नहीं छे। कुछ लोग तो जागरूक छे छे ना, लेकिन कुछ लोगों में जो जागरूकता करने आवश्यकता छे अभी।
0: अपना गुरुजी पुरो झुकण ताक बजेला। नंद प्रयाग की यह स्कूल जो कि बहुत पुराने स्कूल नीचे, लेकिन यहाँ का बच्चों था देखे लगन कि आज कार्यक्रम किलकारी कुछ जबरदस्त हुए। जब है कि स्कूल में हम पहुंचता तो हम बोलता कि कार्यक्रम की शुरुआत भूली का रहे कि बोला, लेकिन यहाँ तो भूली छन, तो स्वाभाविक से बात है कि कार्यक्रम की शुरुआत भूली का रहे। अब देखना सबसे पहली हमारे ये माइक्रोफोन पर को भूली आंद, सबसे पहली हम ही भूली खुण तार बजौला जैन सांस का है ना कि भाई हर आदम चट नहीं आंद ना, लेकिन कुछ भूली छन। आज की भूली तो भाई अपार देखो हवेजाज उड़ाना छन, तो इन्हीं एक भूली हमारे समण में छ। भूली, आप अपनो क्या छे?
2: मियो ना सपना जी, अमी राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल नंद प्रयाग में पंजी और मियो गौन तरण धार छे।
0: अरे वाह, मिल पूछ भी नहीं सब बता दे है ना, तो ये खुण बोल दे स्मार्ट बालिका बल है। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे यख माई स्कूल में स्मार्ट क्लास भी चल दे की ना?
2: चलन,
0: देखा स्मार्ट क्लास की स्मार्ट बालिका है ना। आदिति कहीं कक्षा में पढ़ देना।
3: मी
0: सपना कहीं कक्षा में पढ़ देना।
3: मी सात में पन
0: सात मा आठ मा भी स्कूल में रह ली, फिर कख जान तब
3: इंटर कॉलेज
0: कख हम चो नंद प्रयाग में ही ना। तो आप तो अपन यह स्कूल भल लगत कि वो बड़ा बड़ा भेजी बोला जब देखे नहीं तो वो भल लगत
3: दुखे जी स्कूल बढ़िया लगे।
0: हाँ भाई अच्छे जी स्मार्ट है ना। सपना अब हम तो एक गड़ल गीत सुनाने चुबल टक लगा के सुने। हाँ सपना सुनो।
3: डमा डमा डमरू बजन लगे, डमा डमा

0: सपना ने हम ते एक सुंदर भजन सुना दिया और हमन बोल छो गीत पर कोई बात नहीं छे गड़बड़ में छा ना सुंदर लगनो और अभाड़ देखो सुसेट गदना को केले की गुरुजी ने बताया छा कि बिल्कुल यखमा अलकनंदा बोगणी छे है ना नंदाकिनी बोगणी छे और वो का संगम में हम छो सुंदर माहौल छे। लेकिन कुछ दिन पहले हमने सुन की यख रिखक बड़ी डेर छा बल है बाबा अत डेर लाइट छे कि ना यूं भूलो से पूछला आप अपनो क्या छे
1: मेरा नाम हिमानी छे।
0: हिमानी आप बता आप तो डेर लायक छे कि जब यक रिक को आतंक छे।
1: हाँ।
0: कन के आना छे आप घोर कन के जाना छे घोर
1: वन विभाग वा आना छे हमारे साथ।
0: अरे वाह आप अपनों क्या छे।
2: मेरा नाम सृष्टि छे।
0: सृष्टि आप तो डेर लायक छे कि ना
2: लगती
0: हैं कोई छे छे था डेर नहीं लायक है सब तो डेर लाग कन नहीं लगन तो है ना सपना एक बार फिर छे हमारे दगड़ अभी भजन गाया गया

0: ईद बिगाड़ में और हूं चु ना हर स्कूल में एक बच्चा इन हूं कि जो सब चीजों में पारंगत पढ़े में भी देख लगे कितना उस्ताद छ के लगे हमको सवाल भी पूछ ला। लेकिन ये बात तीन भूली सपना सृष्टि और
1: हिमानी
0: हिमानी हम तो सुनानी छ एक गड़बड़ी मांगल।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, ताल बजाओ बोलियो। मांगल का बाद अब जरसी सामान्य ज्ञान की बात भी हुए जा। आप सभी से अनुरोध कि जैसा सवाल को सही उत्तर आलू व हाथ खड़कारल देश का प्रथम प्रधानमंत्री को नौ को बताल सब होशियार बच्चा छन जो समझ में जो वैसे ही पूछ लेना। आप अपन क्या पहला आप नौ बताओ।
1: मैं नौ रितिका जी।
0: रितिका आप बताए देश को पहलो प्रधानमंत्री
1: श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू।
0: ताल बजाओ सही जवाब। और अब हम कुछ और सवाल घड़ेक मा क्या अभी पूछ देना। चमोली मा एक ऐतिहासिक यात्रा चलत वही यात्रा को नौ क्या को बताल हाथ खड़ करो जो कि हर 12 साल बाद हर साल चलत वही यात्रा को नौ एक बोले ना हाथ खड़कार छ आदर्श और बोल आंध भी चेर भी आंध आप अपनो क्या
1: अदिति भंडार।
0: अदिति अदिति बताए आप वही यात्रा को नौ क्या विसर्गिन कहता आंच हाँ सपना होशियार से बोल ओह कहता नहीं पता यू हाँ एक बोलन हाथ खड़ कर यू नंदा उन बता दिया कि नंदा राजा यात्रा कहीं नंदा छो तुम तो पता ही नहीं है हर बेटी हर ध्यान एक नंदा च और आप बोना पता है नीच ता बजाओ आप फोन सब ऐथर बढ़ना और फिर कार्यक्रम में घड़ेक में हम एक अंताक्षरी खेलला शौक छे अंताक्षरी ए बाबा सब खुश हुए गिन है ना चला कोई बात नहीं वैसे पहले हम कुछ होनहार बच्चों से बातचीत कर ला कि वो अपने स्कूल के बारे में क्या सोच दिन उनका सुपीना क्या छे ठीक छे केलकारी कार्यक्रम में हमर दगड़ चार भूली छे कहता गड़ वैन छे बलर कहता नहीं पर देखे जाल तब है ना आप अपनो क्या छे
1: मेरा नाम आरोही छे
0: आरोही कहीं कक्षा पढ़ देना
1: छह में
0: अच्छा चारियों से एक ही सवाल छ कि जब हम बालिका शिक्षा की बात करना तो एक नारा बहुत प्रसिद्ध छ वो नारा क्या छ और बाकी भी बोल सकते ना तो नारा क्या छ
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
0: टायर बजाओ ये बोले आप अपनों क्या छ
1: अदिति
0: बिल्कुल ठीक बताए कि जब हम बालिका विकास की बात करना छ तो उखमा पढ़े भी छे हमारी और ऐथर बढ़ने की बात छ अच्छा ठीक एक सवाल फिर ये से जुड़ी और छ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये बोला अपन बेटी बचाओ को मतलब क्या है
1: मतलब जैसे कुछ लोगों के घर में बेटियां होती है तो उन्हें मार देते हैं या छोड़
0: देते हैं। ओ छे होशियार यानी कन्या भ्रूण हत्या है ना जैसे हम बोलता समझ गए ना आप समझदार छन आप अपनो क्या छे
1: तानिया
0: आप बताए हम तक कि आप तय अपने स्कूल में सबसे भल क्या लगे
1: मेरे को पढ़ाई अच्छी लगती
0: है यही तो हूं स्कूल के कहना हम है ना पर गड़बल नहीं बनाई गड़बल जी बोल उनसे बात कर ला आप अपनो क्या
1: सृष्टि
0: हम जब सर्वांगीण विकास की बात करते हैं ना कि पढ़े पढ़े पढ़े पढ़े 24 घंटा पढ़े गौर में जाओ तब भी पढ़े वो ठीक नहीं खेल कूदन भी तो जरूरी है ना ये स्कूल में खेल की सुविधाएं क्या छा आपको
1: बैडमिंटन और कबड्डी खो खो रस्सी कूद
0: कुछ सिखा आप सीख जान दो बड़ी मैडम बल है ना तो मैडम को ताल बजाओ भाई इतना खेल एक साथ है कि मैडम सिखा दें है ना सुंदर अब सिर्फ सुपनों की बात कर ला नंद प्रयाग की ये भूली क्या वर्णन चंदन क्या सुपना चनियों का उनके भी बात कर ला आप सुपन क्या छ क्या वर्णन बड़ो है कि
1: मैडम
0: इन भी मैडम ही वर्णन आप
1: फौजी
0: ताल बजाओ अदिति
1: डॉक्टर
0: वर्णन

0: डॉक्टर बनना कौन क्या कारण पड़े
1: पढ़ाई
0: ना तू पढ़े हर चीज कौन कारण पड़े लेकिन कोई खास इम्तिहान हो लू बताए नहीं अभी है ना आप बताओ आप क्या बनना चाहते
1: लॉयर
0: लॉयर ये बाबा वकील है क्या हालता बाबू वो कौन क्या कारण पड़े हम ते
1: पढ़ाई
0: पढ़ाई तो सब भी कौन कारण मन डिग्री क्या लेना पड़े तो एक नहीं जन डॉक्टर कौन क्या लेना पड़े तो MBBS है ना तो वकील कौन क्या होना चाहते ये तो पता होना चाहिए वकील साहब LLB होना चाहिए है ना तो चला यूं चरा भूलियों कौन ताक बजाला हम छोटू शहर छोटू कस्बा लेकिन सुपिना बड़ा और ये बत 100.5 FM पर आप सुनना चाहिए आकाशवाणी देहरादून कार्यक्रम चलने चाहिए किल कार्यक्रम जगत और ओखमा स्कूल च नंद प्रयाग की जूनियर कन्या स्कूल तो अब ऐथर पढ़ना किलकारी को सबसे आकर्षण को केंद्र हूँ हमारे अंताक्षरी और भूली इधर खुश हुए आजन बोलो हाँ अंताक्षरी खेलन हमन लेकिन वही से पहले एक सवाल पूछ दिन मिल तब जरा पैतरिस हो जाला सभी उसे सवाल चाहान जे तभी आलू वो हाथ खड़कारल ठीक छे हमारे उत्तराखंड राज्य का जो राज्यपाल छे नो क्या छे हाथ खड़ कह रहे दी हाथ खड़ कह रहे बोलो नहीं यह भूली हाँ गलत हो गया सुनो नहीं झां कभी बिना को बताओ जल्दी
1: श्री गुरमीत सिंह
0: बिल्कुल अपन नो बताओ
1: प्राची राय
0: प्राचीन बिल्कुल ठीक बताया है ना तो हमेशा ये बात का भी ध्यान रखें कि इम्तिहानों का भगत पर आपन क्या कारण है सवाल पहले सुनो नहीं चाह मैं राज्यपाल पूछू इन भट्टम बता मुख्यमंत्री है ना इन निकन ठीक छे तो चला ये सवाल के बाद अंताक्षरी शुरू कर दा कक्षा 8 और कक्षा 6 का बीच में यह कक्षा 6 का जो भूली छन वो अपन नो बता ले
2: मेरा नाम मानवी जी
3: मेरा नाम जिया जी
4: मेरा नाम अपित जी
5: मेरा नाम आरोही जी
6: मेरा नाम शिवान जी
0: कक्षा 8 बेटे की जो भूली छन
7: अदिति
8: हिमानी
9: प्राची तानिया
10: रितिका
0: तो शुरू करे जा छोट भूलियों से नंबर दे दियो पहले नो था तो आप अपन पहलो शब्द में देणो छो रा एक दो तीन चार पांच आठ मचल गया रा
11: रस्मिरू मेला ओटो अबे लेना मेरी रस्मिरू मेला ओटो अबे लेना
0: रा यानी ना एक नंबर पैतृ चंचे कवा ना एक दुई तीन चार फिर दोबारा आठ वाला जीतना आज ना ना दरे फिर वापस आनो चु छे माँ बराबर करना मौका चु ना ना एक दुई तीन कोई कविता कोई गीत फिर दोबारा से आठ माँ आनो चु
12: ना हे धोए क्या हुआ जो मन मेले न जाए धनी पुरुष निर्धन भए करे पांचली बात
0: क्या शब्द रहे
12: बात तो
0: तो तो तो से छह माँ और दो अंक ले आठ है
13: तरवल फल नहीं खात है सरवर पिया ही न पात कहीं रहीं पर पाज हीत संपति सचे ही सुधार हिमा संपति सचे ही सुधार
0: शब्द नौ नौ फिर एक दा आ गया आठ माँ दो अंक ले का भी है चन आठ वाला नौ एक दो तीन चार पांच खत्म फिर एक दा आपक पार बारी नौ
14: नकबड़िया चढ़े दे लाल डोरी चढ़े दे भर सुन माँ भैंस देना नकड़ी मेरी गड़े दे
0: दो दुई और एक अंक लेके द आठ एक दुई तीन चार पांच दोबारा से जितना अंक मौका चुद
15: दैनी बजाए माँ सरस्वती दैनी बजाए
0: बिल्कुल ठीक जीत गिन बराबर आएगी ना बराबर जीत नहीं गया अभी हाँ ताल नहीं बजाओ द द से बोला आठ का द ए से ए कि दो ए एक दुई तीन चार

0: कुर्बानी
1: ना एक दा फिर ना छह का पास ए तुरचना भी कक्षा आठ ना एक दुई तीन चार पांच और आठ।

0: मेरा रंगीला।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और लॉ पर ना तुम तो बहुत एथर निकल गए हो, तो अब जीत हुई जाए तमें कक्षा 8 का भूली जीत गिन बहुत एथर चल गिन वो 3 अंक लेके है ना। ताली बजाओ ना, अब बजाओ ताली। बहुत बहुत धन्यवाद दुया कक्षा 6 और कक्षा 8 का भूलियों को सुंदर अपन कोशिश करी है ना, लेकिन बस फुटक में रेन बैर न्यान न के बके बत चला तो कार्यक्रम तो है एथर बनोगा। कार्यक्रम में अंताक्षरी का बाद अब एक प्रतिभावान हमर भूली हमर समण में चुरुई था मिलद मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना है ना। ताल बजौला पहले और ई भूली से पहले नौ पूछला कक्षा पूछला और छुई लगो ला कि आखिर किले आप अग्नों क्या छे
2: आकृति
1: आकृति आकृति के कक्षा में छे ना
2: छे में
1: बिसर गया वो कि मैं छे में चूं कि पांच में चूं। हाँ तो सुरुक बच्चा आंदो ना पढ़े बहुत ज्यादा कर तो सबसे अच्छा विषय क्या छे आपको जे बहुत आसानी से कह दे गणित
2: हिंदी
1: हिंदी हाँ वो मियार भी छे बहुत बढ़िया मित गणित से डर लगी है आदिति हिंदी में। अच्छा आपन जो परीक्षाएं दिन वे माँ सुंदर आपक परीक्षा परिणाम रे बिसर गया कदा नंबर आया था पांच माँ बिसर गया मैंने बोल ची ना बिसर गया। अच्छा तो किला आपक चयन मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का खातिर हुए कि हाँ भाई ये नो नहीं बहुत सुंदर छे क्या आज खास गिचक पुटक बनी छे। अच्छा यहाँ खातिर मिल जान मुख्यमंत्री है छात्रवृत्ति है। अच्छा छे मैं क्या क्या करी थी। अच्छा कितना समय अपन पढ़े थे दिन
2: सुबह सुबह पढ़ाई करती थी फिर स्कूल आती थी फिर स्कूल से घर घर गए थोड़ा बहुत आराम किया फिर पढ़ाई
1: फिर घर का काम कते नहीं करो ना। हाँ तब तो ठीक है भाई तब ठीक है आकृति ठीक बोलनी चाहिए साफ साफ नहीं करो घर का काम कुछ ना पढ़े करना मन है ना। लेकिन घर नहीं बोली घर में ना किले
2: गाड़ी नहीं आती मुझे
1: तो क्या करें दी बुढ़सारी
2: बुढ़सारी।
1: अच्छा तू वक नहीं बोलता लोग
2: बोलते
1: तो तुम किले नहीं बोलता
2: मुझे नहीं आती
1: यही एक पहाड़ मरे कि गड़बल किले नहीं आती ये समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं बहुत बहुत शुभकामना ताल बजाओ बोली कुणी। हर स्कूल में एक उदंकार बच्चा या बच्ची होंच जो बार बार चाहे सवाल हुई खेल हुई पढ़े हो गीत हो संगीत हो है ना एथरी एथर एथरी एथर तो इन स्कूल में को होलो सपना और सपना ने कार्यक्रम की शुरुआत भी करी अब फिर आ गया बीच में गीतों में भी छे और सुंदर होनहार बालिका चुबल सपना अब के सुनाना आपन हमते
3: मी गीत छोड़ो
1: सुनाओ
3: चाऊं भर जोलो जोण दिनी दे जा चाऊं भर जोलो जोण दिनी दे जा कब तक गुशाली रहंदी हो कब तक गुशाली रहंदी हो राजनामा के जा राजनामा के जा राजनामा के जा राजनामा के मन सक्या छ तेरी मन सा बते जा राजनामा के जा राजनामा के झूठ छे तो मेरे लगे मैंने आने तेरे सच्चे तेरे दगड़ा कन के ओण माया लाण को सच तेरे दगड़ा कन के ओण माया लाण को सच जा पड़ी झूठी माया कखी और ले जा कखी और ले जा मन से क्या छी तेरी मन सांबते जा राजनामा के जा राजनामा के जा।
1: ताली बहुत सुंदर गीत सपना सुने हम तो अब भूलियो इंच के आप स्कूल बेटे मट मट की जो ला हम लेकिन एक दा फिर एक सवाल सामान्य ज्ञान को टक लगा के सुने हाँ जनपद चमोली जो आपक अपन जनपद उकमा एक पवित्र धाम छे एक ना बल्कि द्वि धाम छन है ना तो द्वि धाम

0: कुछ ना उनका नौ क्या छन को बता ला। शाबाश होनहार बच्चा हाथ खड़ कर दिन अपन नौ बताओ।
1: अदिति
0: बताओ द्विधाम
1: बद्रीनाथ और केदारनाथ।
0: केदारनाथ अच्छा ही ना हो गया ना गलत है कुछ जो धाम च या है जो पवित्र स्थान च वो कोच है वो तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ को बता लो। बद्रीनाथ ठीक हो गया है को कोच नहीं पता। हाँ सपना बतानी च
2: बद्रीनाथ और यम गंगोत्री।
0: हाँ होरपल छोड़ लीजिए उत्तरकाशी छोड़ो। शाबाश बहुत बढ़िया। अरे हेमकुंड कक्ष वो भी तो पवित्र स्थान ही चमोली में च न फिर तो आदित्य कुंडता बजौला एक सही जवाब का खाते। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कक्ष के जनपद मच। अरे एक तो जवाब दे दिया अपन तो आप खुण बजाओ ताली। और अब हम आपके स्कूल बटक जौला लेकिन तन नहीं जाना मन आप सब सुनेला हम ते एक देशभक्ति समूह गीत।

0: ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये देशगान का डगड़ी बोलो आपक स्कूल बिटे की अब हम जाना छवा। बहुत सुंदर आप लोगों ने कार्यक्रम प्रस्तुत करी और सबसे बड़ी बात यह आची कि आप एक जागरूक विद्यार्थी छन, अपन पर्यावरण का प्रति, अपने शिक्षा का प्रति और अपना तमाम सुपिनों का प्रति की कुछ बनना चाहना छन आप, तो बहुत बहुत शुभकामना आप ते। सुंदर से अपन पढ़े लिखे कह रहा और ये क्षेत्र को, अपना वैभवों को, अपना शिक्षकों को मान बढ़ाओ, यूं शुभकामनाओं का दगड़ी मी आपक भेजी विनय ध्यानी, आपक स्कूल राजकीय जूनियर हाई स्कूल नंद प्रयाग बिटकी लौटनो छो अपना आकाशवाणी स्टूडियो और आपक बोलूलू बच्चों जय हिंद। श्रोता भाई बंधु अभी आपन के पूर्व प्रसारित किलकारी सुन जैसे प्रस्तुत कार कन्या जूनियर हाई स्कूल नंद प्रयाग चमोली का भूलो तो खिला के कन्या जूनियर हाई स्कूल छे तो भूली छा वक, लेकिन हाँ होशियार भूली छे और सभी का उज्ज्वल भविष्य का खातिर हम एक बटे शुभकामना दियोला। आप क्या कहना है
1: ध्यानी जी? कीच गीतक बखत कार्यक्रम में अनीता कंडारी को गायू गढ़वाली गीत आप सब सुनो।

0: डॉट कॉम पर।
1: एक चिट्ठी हम तक पहुंची छ मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून बटे
0: जी
1: बना छे कि आज और भोल ऊंचाई वाला इलाकों में कखी बर्फबारी कखी ओलावृष्टि कखी तेज बथो तो कखी बरखा हो सकत
0: ध्यान जी किश्त में होना जो चढ़
1: हाँ
0: जी
1: कुजान कुजान में ही निकल जा रहा पता नहीं चला गर्म कौन ऊंचा तो ये सब जलवायु परिवर्तन छ कुजानी हम तक कख यू मौसम ले जानो छ किला कि हम भी ले यूं ये मौसम था कुजानी कखी कखी ना किला कि हमन पर्यावरण को संतुलन की ध्यान रखी नहीं तो वो इन विवाल मिल मिनी का ना संतुलन
0: जी।
1: तो अब कार्यक्रम में ये बताऊंगा कि 7 बजे तक आप हमारे दगड़ छ और कखने जान अपन सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
2: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। परीक्षा पत्र लीक के आरोपों के कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की, समय पर कार्यों को पूरा करने और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को सम्मानित किया और बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और एटीएस का फ्लैग मार्च, धाम से लेकर सीमांत गांव माणा तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शिक्षा में मेडिकल दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।
3: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज पौड़ी में चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और जनहित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, पेयजल और विद्युत सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। श्री महाराज ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील, जवाबदेह और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका त्वरित समाधान करने पर भी जोर दिया।
5: आज एक महत्वपूर्ण बैठक हमने ली है, चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र की बैठक ली है, जिसमें कि लोक निर्माण के सारे जो काम हुए हैं सड़कों का हम लोगों ने अनुश्रवण किया। इसके साथ साथ बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है। पेयजल की जो हमारी योजनाएं हैं, जेजेएम की योजनाएं हैं, उनके बारे में, पीएमजीएसवाई के बारे में, बाल विकास के बारे में, ग्रामीण निर्माण विभाग के बारे में, तो इन सबके बारे में चर्चा हुई और सबको आदेश दिए गए हैं अधिकारियों को कि वो तेजी से काम करें, अच्छी गुणवत्ता से काम करें ताकि हमारे पहाड़ की समस्या का समाधान हो।

0: हरिद्वार से शुरू हुई विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा का प्रदेश के विभिन्न जिलों और प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में डोली यात्रा के बागेश्वर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि उत्तराखंड केवल चार धाम यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ अनेक सिद्धपीठ, प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिनका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत समृद्ध है। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से न केवल धार्मिक चेतना को जागृत किया जा रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन और स्वरोजगार की संभावनाओं को भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: इस यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से हुआ और हरिद्वार जिला देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली होते हुए आज बागेश्वर जनपद में कोट भ्रामरी में आके और बागनाथ जी के दर्शन करने पहुंची। इस यात्रा की जो पूरी परिक्रमा है वो 10,500 किलोमीटर की है प्रतिवर्ष की। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारे उत्तराखंड की देव संस्कृति और लोक संस्कृति है वो जिंदा रहे, उसकी रक्षा हो। तीसरा उद्देश्य है कि जो हमारे चार विश्व प्रसिद्ध धाम हैं, उत्तराखंड में ऐसी हजार शक्तिपीठ हैं जिनको कि धाम का स्वरूप दिया जाना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की इस यात्रा में डोली ने पूरे प्रदेश में 432 देवालयों को धाम के स्वरूप में चिन्हित करने का संकल्प पूरा किया है।
0: नगर निगम देहरादून की ओर से आज दून विश्वविद्यालय में स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अंतर्गत एक विशेष नागरिक फीडबैक अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों, फैकल्टी सदस्यों और स्टाफ को नगर निगम द्वारा शहर में संचालित विभिन्न स्वच्छता और जनहित कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने छात्रों को स्वच्छ सर्वेक्षण में नागरिक फीडबैक के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर के निर्माण में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और प्रत्येक नागरिक का सकारात्मक सहयोग देहरादून को देश के अग्रणी स्वच्छ शहरों में स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध होगा।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: एम्स ऋषिकेश में आज उन्नत ट्रॉमा देखभाल, अंगदान और नर्सिंग उत्कृष्टता पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली नर्सिंग अधिकारियों को सम्मानित किया। साथ ही अंगदान करने वाले दानदाताओं और उनके परिजनों को भी सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नर्सिंग सेवा करुणा, समर्पण और मातृत्व की भावना का जीवंत स्वरूप है। गंभीर अवस्था में मरीज के लिए नर्स केवल स्वास्थ्यकर्मी नहीं बल्कि विश्वास, सहारा और आत्मीयता का प्रतीक बन जाती है। अंगदान के महत्व पर बल देते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह मानवता का सर्वोच्च दान है जो किसी व्यक्ति को नया जीवन प्रदान करता है। उन्होंने समाज से अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे अनेक लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस, टेलीमेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग कर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बना रहा है। चारधाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए आज चमोली पुलिस, एटीएस और सात असम एटीएस ने संयुक्त फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बद्रीनाथ धाम से लेकर सीमांत गांव माणा तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही होटल, अस्पताल, पार्किंग और भीड़भाड़ वाले इलाकों में वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जाँच की गई। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने यात्रियों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों से संवाद कर सतर्क रहने की अपील की और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए कहा गया। चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता और समन्वय के साथ निरंतर कार्य कर रही हैं।
3: हम लोगों का पूरा प्रयास है कि किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन बद्रीनाथ धाम में या जनपद में प्रवेश न कर सके, इसके लिए हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से इस प्रकार की ड्राइव विभिन्न एजेंसीज के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चलाई जाती रही। आईटीबीपी की टीमें भी हमारी मंदिर सुरक्षा और मंदिर के आसपास की परिसर में तैनात की गई है, उनको भी हम लोग नियमित रूप से चेकिंग में शामिल कर रहे हैं। बीडीएस की टीम भी बद्रीनाथ धाम में मौजूद है, वह भी लगातार किसी प्रकार के संदिग्ध वस्तु व्यक्ति पर नजर बनाए हुए।
0: उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

0: नीचे तक फील्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तक, आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचकर इसकी समीक्षा कीजिए कि वास्तव में लाभार्थियों को पूर्ण रूप से जो उचित लाभ है, जो उचित पोषण है, वो सही तरीके से वहां पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और मेरा प्रयास हमेशा से यही रहेगा कि हम पूरे प्रदेश में अपने जो अंतिम छोर के वंचित असहाय बच्चे हैं, जो मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं, जो बाल श्रम कर रहे हैं, जो भिक्षा मांग रहे हैं, बाल भिक्षा कर रहे हैं या कूड़ा बीन रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी चिन्हित कर मुख्य शिक्षा की धारा से जोड़ा जा सके और अन्य सुविधाएं इनको मिल सके।
1: पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने आज विभिन्न शासकीय संस्थानों का औचक निरीक्षण कर शिक्षा और बाल विकास व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बिण में आंगनबाड़ी केंद्र, पीएम श्री प्राइमरी और हाई स्कूल, उपखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। परीक्षा पत्र लीक के आरोपों के कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चबट्टखाल विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की, समय पर कार्यों को पूरा करने और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को सम्मानित किया और बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और एटीएस का फ्लैग मार्च, धाम से लेकर सीमांत गांव माणा तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओ, उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार के बाद एक बार आज स्वागत आप सभी जानेनु को कार्यक्रम ग्राम जगत की दूसर पाली में 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे आप सब सुनना चाह ग्राम जगत और मैं छू आप अगदगड़िया ममता पांडे। साल लगे जो कि आप लोग हमन के चिट्ठी लिखला, चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर चिट्ठी भेजबेर, झटझटा कॉल आसान सु हमार पत्त छू। श्रोताओ, बात करनु ऊर्जा संरक्षण पर। जस के द्वि तीन दिन बठे हमार देशक मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोणा छन की ऊर्जा संरक्षण हम सब नक लेजे कतु जरूरी छे। हम सब देखना छे कि पछिल कतु महन बठे लड़ाई चलने छे ईरान और इजरायलक बीच और योले कोणी छे सरकार की कच्च तेलक जो दाम छनु बढ़ गईन और आज ही बढ़न वाल छन। तो अगर हम सब लोग ये मैं भागीदारी देखूँ कि घर में जो हम तेल खानू अगर विके हम थोड़ा कम कर देनू तो हमार सेहत में ले सुधार है जल। और दूसरा, अगर हम जो हमार दफ्तर छे अगर 4-5 जानेनों को दफ्तर एक छे तो हम लोगों के कोशिश करन छे कि 4-5 लोग एक गाड़ी में जा सकनू, या फिर अगर कोई सार्वजनिक जोले गाड़ी चले वी में जयबेर हम अपन दफ्तर जा सकनू, या जोले हमार ज़रूरी काम छे बाजार जान छे या कह का घर जान छे तो यो गाड़ी का प्रयोग हम कर सकनू। और दूसरा, अगर हमार साग पात कोयले चीज़ लाणी इतखे उतखे जान छे तो हम पैदल हिट बेर अपन काम कर सकनू। तो ये हमारे देशक लीजिए एक भागीदारी है सकल और ऊर्जा संरक्षण में नानू से योगदान हम दी सकूँ। श्रोताओं, यो बातचीत हम अघिन के लिए जारी रखूँ और अब आपके लिए जानूँ जौन सारक तरफ और सुनूँ एक भलू भल जौन सारी गीत स्वर भजन दासक।

0: श्रोताओं, अल्लाह जो गीत आप सुनो, मैं स्वर तीरक छी, भजन दासल और गैर छी, भजन दासल जगह जौन सारी गीत आप सब सुनो। श्रोताओं, बात हम करना चाहें ऊर्जा संरक्षण की। अगर हम घर में खाड़ बढ़ूँ तो हम कई बार सामान खराब है जल कबीर हम के फ्रिज में धर दिनूँ, लेकिन अगर आपल विके पकौन छी और तो हमन के विके थोड़ी देर सामान्य ताप में रख दें छी, ताकि हमार जो घर में LPG गैस छी वो कम लगली, और दूसर जो दाव छ भात छ थोड़ी देर भिजा दें छे, जेल हमार ईंधन की खपत कम होली, तो यूले एक हम सहयोग दी सकनू। श्रोताओं, आगे इनके बढ़नू कार्यक्रम में और सुनू आपके एक कुमाऊनी गीत।
1: परफॉर्मेंस का बोलो, वी द फ्यूचर
2: मार्केट ट्रेंड है,
1: सुनने में आया कि
3: आज की खबर देख, पहले ही बोला था ब्रो।
2: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन,
2: मेरे दोस्त ने बोला।
4: देवी जी की सुनो,
5: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: श्रोताओ, आप सुनी रेबार और भी एक बार शंकर उप्रेति को गायो कुमाऊनी गीत और योगीत का दगड़ ही वगत होनो चु समाचारों को। आओ अब आप सुनो गढ़वाली में उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटाया गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में रुचि रावत। पहली मुख्य समाचार, परीक्षा पत्र लीक का आरोपों का कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश खुणे आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच का आदेश। हल्द्वानी में नाबार्ड समर्थित 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं थे कुमाऊनी पिछोड़ा निर्माण और स्वरोजगार से जुड़ी आधुनिक तकनीकों को मिलरु प्रशिक्षण। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था थैले की चमोली पुलिस एटीएस और सात असम एटीएस को संयुक्त फ्लैग मार्च माणा गांव तक सघन चेकिंग अभियान चले गया। और मध महेश्वर धाम का कपाट आनवली 21 मई को श्रद्धालुओं का दर्शन खुणे खुले जाला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीएन शिक्षा में मेडिकल दाखिला खुणे 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने को फैसला ले। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बोली कि यू फैसला विद्यार्थियों का हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास तय ध्यान में रखी की ले गया।
2: एनटीएन बताया कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच खुणी मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपण को निर्णय लेनी। एजेंसी ने बोली कि यह निर्णय केंद्रीय एजेंसियों का दगड़ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों को मूल्यांकन करण का बाद लिए गए। परीक्षा खुणी नई तिथि अलग से अधिसूचित करे जाली, पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 खुणी चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहला। दोबारा परीक्षा का खातिर फिर पंजीकरण करण की आवश्यकता नहीं होली और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिए जालो। आकाशवाणी देहरादून खुणी समाचार कक्ष बटीन मैं रविंद्र सिंह।
1: नैनीताल जिला का हल्द्वानी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा समर्थित सूक्ष्म उद्यम विकास योजना का अंतर्गत कुमाऊनी पिछोड़ा पारंपरिक और आधुनिक उन्नत कौशल विषय पर 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। कार्यक्रम का तहत 30 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं तय प्रशिक्षण दे जानोच। ये मौका पर नाबार्ड का विकास प्रबंधक मुकेश बेलवालन बोली कि प्रशिक्षण का माध्यम से महिलाओं तय आत्मनिर्भर बनान और स्वरोजगार से जुड़ने को प्रयास करे जानोच।
3: स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम लोग जो हमारा पहाड़ी परिधान है कुमाऊनी पिछोड़ा, इसमें जो नई टेक्निक है, जो नई डिजाइन है, उसके ऊपर ट्रेनिंग यहाँ पर हम करवा रहे हैं और 20 दिन का कार्यक्रम ये रहेगा। जो हमारा पिछोड़ा एक जीआई प्रोडक्ट है तो उस पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर पिछोड़ा में अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, बाहर से सही यहाँ पर चीजें आ रही है। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारा जीआई प्रोडक्ट है तो हम लोग यहीं पर इसको बनाए और नए नए डिजाइन बनाए और इसको आगे बेचे। और हम चाहते हैं जो एसएचजी की महिला है इसको अपनाए और इसमें आगे जाके अपना बिजनेस करें, एंटरप्राइज स्थापित करें।
1: प्रशिक्षण का दौरान महिलाओं तय कुमाऊनी पिछोड़ा निर्माण की आधुनिक तकनीकों, नए डिजाइनों, पैकेजिंग और बाजार की मांग का अनुरूप उत्पाद तैयार करने की जानकारी दे जाने च। दगड़ी ही बैंकिंग, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़िया सत्र भी आयोजित करे जाला। प्रशिक्षण में शामिल महिलाओं को बुलुंच की आधुनिक तकनीक का माध्यम से पारंपरिक परिधान निर्माण सीखने से उन्हें भविष्य में रोजगार और आय बढ़ाने मदद।

0: मिला ली।
1: अधिकारी, ये जो ट्रेनिंग है ये नाबार्ड के सपोर्ट से हो रही है और इसमें महिलाएं इस काम को सीख करके हमारा उद्देश्य है कि आगे अपना रोजगार शुरू करें और जो है इसको हैंडमेड बनाए और इससे महिलाएं अपना आर्थिक विकास करेंगी।
2: मेरा नाम है निर्मला जोशी। जैसे हम लोग, हमारा ये अपना परिधान है हमारी महिलाओं का, तो हमारा इसमें जैसे हम लोग सीखेंगे, जैसे स्टार्टिंग पहले रहेगा कि कपड़े को कलर करके फिर उसको हम लोग सुखाना, फिर उसमें अलग अलग तरीके से हम लोग डॉट्स मतलब पॉइंट बनाएंगे।
0: देहरादून में विकास नगर विधानसभा क्षेत्र का हरबरपुर खुणा स्वीकृत करीब 48 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का विधायक मुन्ना सिंह चौहान निरीक्षण कार्य। योजना का तहत स्कूलों का समणी ट्यूबवेल स्थापित करे जाना, जहाँ से क्षेत्रवासियों और स्कूलों तहत स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सकली। विधायकन बोली कि हर घर नल हर घर जल योजना का अंतर्गत लंबा समय से पानी की समस्या से परेशान लुकू थे, इन पेयजल योजना से बड़ी राहत मिलली। ये दौरान विधायकन पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज हरबरपुर में बन बनी का विकास कार्यों को शुभारंभ करी। यहाँ का अलावा करीब 57 लाख रुपए की लागत से बनने वाला बास्केटबॉल कोर्ट और खेल मैदान निर्माण कार्य को भी शुभारंभ करेगा। विधायकन बोली कि शिक्षा का दगड़ी खेल गतिविधियों थे बढ़ावा देन भी जरूरी छ, ताकि छात्र छात्राओं थे बढ़िया मौका मिल सके।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था थे मजबूत करना खुणे चमोली पुलिस एटीएस और 7 असम एटीएसन आज संयुक्त फ्लैग मार्च निकाली। ये दौरान बद्रीनाथ धाम से लेकर सीमांत गांव माणा तक सघन चेकिंग अभियान चले गया। सुरक्षा एजेंसियों बद्रीनाथ मंदिर परिसर को निरीक्षण कारी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को हालचाल ले। होटल अस्पताल पार्किंग और भीड़भाड़ वाला इलाकों में वाहनों और संदिग्ध मनखियों की जाँच करे गया। देवदर्शनी बैरियर पर सुरक्षा बलों वाहनों और यात्रियों को सामान की चेकिंग कारी, वकी माड़ गांव तक गश्त लगे की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे गया। अभियान का दौरान पुलिसन यात्रियों व्यापारियों और स्थानीय लुखों से सतर्क हूं और कै भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस तह देने की अपील कारी। रुद्रप्रयाग जिला में स्थित पंच केदार में से एक मध महेश्वर मंदिर का कपाट आनवली 21 मई खुणे श्रद्धालुओं का दर्शन खुणे खोल दे जाला। 17 मई खुणे भगवान मध महेश्वर की उत्सव मूर्ति ओम कालेश्वर मंदिर का गर्भगृह से भैर ए की सभा मंडप मां विराजमान वाली। यहां का बाद 19 मई खुणे भगवान मध महेश्वर की उत्सव डोली ओम कालेश्वर मंदिर भटे प्रस्थान कैरी की रात्रि विश्राम खुणे राकेश्वरी मंदिर पहुंची ली। वकी 20 मई खुणे डोली रांची से रवाना वे की गोंडार पहुंचली। 21 मई खुणे उत्सव डोली गोंडार से प्रस्थान कर ली और कर्क लग्न मां विधि विधान का दगड़ी मध महेश्वर मंदिर का कपाट श्रद्धालुओं खुणे खुले जाला। नई टिहरी नगर पालिका परिषद शहर की सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं थे बेहतर बनाना खुणे जल्द ही अपना समूह मां 8 नया वाहन शामिल कर ली। यूं वाहनों को माध्यम से कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था थे मजबूत करे जालू। दगड़ी ही नगर क्षेत्र में पहली बार गौ ग्रास सेवा और सब यात्रा वाहन सेवा भी शुरू करे जाली। प्रसूच एक रिपोर्ट।
4: नगर पालिका अध्यक्ष टेरिन बताया कि नई गाड़ियों का ऑन सी सभी वार्डों में नियमित कूड़ा उठाउन और सफाई व्यवस्था थे और बेहतर करे जा सकलू। गौग्रास सेवा का तहत एक विशेष गाड़ी घर घर जाकी गायों खुणी रोटी सब्जी का छिलका और अन्य खाद्य सामग्री एकत्र कर ली, जैथे गौशाला में पशुओं का चारा का रूप में उपयोग करे जालू।
5: अभी 8 महीना हम हो ले रहे हैं, उससे हमारा स्वच्छता के लिए उसमें हमारा है, उसमें हमारा पानी का टैंकर है, उसमें हमारा जो है एक संवाहन का भी हमारा प्रावधान है और हम शहर को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए हमको संसाधन की अत्यंत जरूरत थी और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं।
4: ये के अलावा नगर क्षेत्र में पहली बार शव यात्रा वाहन सेवा शुरू करे जाली, ताकि लोगों खुणी कम खर्च में सुविधा मिल सकू। वही सड़कों पर लाइटों की मरम्मत, पेड़ का पानी की आपूर्ति और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई खुणी भी विशेष वाहन लगाए जाला। आकाशवाणी देहरादून खुणी टीरीसी जयप्रकाश कोकृति की रिपोर्ट का दगड़ समाचार कक्ष बटिन मैं रविन्द्र सिंह।
0: देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 27 सालों बटे निकलने वाली विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा ये साल भी श्रद्धा और उत्साह का दगड़ी प्रदेश भ्रमण पर निकली। यात्रा विभिन्न धार्मिक स्थलों को भ्रमण कैरी की धार्मिक एक

0: एकता, विश्व शांति और उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत को संदेश देने च। हरिद्वार से शुरू हुई ई यात्रा में प्रदेश का कई जिला और प्रमुख देवालयों तक पहुंचने च। आज बागेश्वर पहुंचने पर श्रद्धालुओं डोली को भव्य स्वागत कारी। यात्रा संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानिन बोली कि उत्तराखंड में चार धाम का अलावा भी बिजाम महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल छिन, जहाँ तह पर्यटन से जोड़ी की स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार का अवसर बढ़े जा सकते।
1: का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे उत्तराखंड की देव संस्कृति और लोक संस्कृति है वो जिंदा रहे, उसकी रक्षा हो, कि जो हमारे चार विश्व प्रसिद्ध धाम हैं, उत्तराखंड में ऐसी हजार शक्तिपीठ हैं जिनको कि धाम का स्वरूप दिया जाना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की इस यात्रा में डोली ने पूरे प्रदेश में 432 देवालयों को धाम के स्वरूप में चिन्हित करने का संकल्प पूरा किया है। दूसरा उद्देश्य जो हमारी देवबाणी संस्कृत भाषा का उन्नयन हो, संस्कृत के विद्यालय खुले, यहाँ पर ध्यान केंद्र बने।
0: प्रदेश का कुछ हिस्सों में लगातार रुक रुकी की बरखा होनी च। मौसम विभागन देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिला सहित कई जिलों में बरखा की संभावना व्यक्त करी। बरखा का दगड़ी ही चाली, चमकुन, ढांडू और बथौन थैले की ऑरेंज अलर्ट भी जारी करेगा। मौसम विभाग के अनुसार 4200 मीटर से भी जहाँ ऊंचे वाला इलाकों में यूं पुणे की संभावना च, जहाँ से पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ सकत, वकी भोल भी बरखा और खराब मौसम को इन निर्णयों को अनुमान च। मौसम विभाग केंद्रन पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बरखा और तेज हवा चलने की संभावना जताए। 14 मई खुणे भी पर्वतीय क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार बथौ चल सकत। आखिर में मुख्य समाचार एकदम फिर। परीक्षा पत्र लीक आरोपों का कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश खुणे आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच का आदेश। हल्द्वानी में नाबार्ड समर्थित 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं तय कुमाऊनी पिछोड़ा निर्माण और स्वरोजगार से जुड़ी आधुनिक तकनीकों को मिललू प्रशिक्षण। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था थे लेकी चमोली पुलिस एटीएस और 7 असम एटीएस को संयुक्त फ्लैग मार्च। माणा गांव तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और मध महेश्वर धाम का कपाट आणवली 21 मई को श्रद्धालुओं का दर्शन खुणे खुले जाला। यहाँ का दगड़ी ही गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचार को यू अंग समाप्त हूं। नमस्कार।
2: श्रोताओ, समाचारों दगड़ी आज कार्यक्रम ग्राम जगत ले यहीं पे संपन्न करने की ममता पांडे के दिया अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: नमस्कार साथियों, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय से देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें आज मैं धनंजय भारती आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे हो आप। अपने व्यस्त दिन में भी आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम अपने कार्यक्रम में आपके लिए अधिक से अधिक जानकारी आपको ला कर दें, जिससे आपको हमारा कार्यक्रम सुनने का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। साथ ही मनोरंजन के लिए हम आपको सुंदर से गीत भी सुनाते हैं। तो चलिए साथियों, अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सुनते हैं सबसे पहले ये जरूरी संदेश।
1: बारे में क्या परफॉर्मेंस का बोलो,
2: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड है,
2: सुनने में आया कि
3: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो।
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन,
1: मेरे दोस्त ने बोला।
5: देवी जी की सुनो,
6: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी,
1: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
1: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
4: साथियों, अब कार्यक्रम में वक्त है पूर्व प्रसाद भेंट वार्ता का। राकेश कुमार यादव वैज्ञानिक सगंध पौधा केंद्र से लकुई से सगंध पौधों की खेती विषय पर सुनते हैं ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता।
5: किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं राकेश कुमार यादव जी, जो कि वैज्ञानिक हैं सगंध पौधा केंद्र औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई देहरादून में, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे सगंध पौधों की खेती के संबंध में। तो यादव साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम।
6: धन्यवाद।
5: देखिए, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं सगंध पौधों की खेती की, तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सगंध पौधे होते क्या हैं, कौन कौन से हैं।
6: किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सगंध पौधे हैं, ऐसे पौधे जिन पौधों से हमको सुगंध प्राप्त होती है, गंध प्राप्त होती है, उन पौधों को हम कहते हैं सगंध पौधे। जैसे कि गुलाब
5: जी,
6: आप लेमन ग्रास को उस पात में रख सकते हैं, जिरेनियम है, ये इस तरह के पौधे हैं, इनसे हमको गंध मिलती है, तो इनका नाम हमने रखा है सगंध पौध
5: जी।
6: तो ये सारे पौधे जो हैं वो सगंध पौधों की श्रेणी में आते हैं।
5: तो हमारे किसान भाई सगंध पौधों की खेती करके क्या अच्छा लाभ कमा सकते हैं?
6: बिल्कुल, ये बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारे किसान भाई पर्वतीय क्षेत्रों, खासतौर से मैं पर्वतीय क्षेत्रों के किसान भाइयों की बात करूं, जो पर्वतीय क्षेत्र के किसान भाई हैं, जो अपनी बंजर जमीन, जिस जमीन पर आज की तारीख में कुछ भी नहीं हो रहा है, उन जमीनों में सगंध फसलों की खेती करने के बाद एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा आर्थिकी अपन को मिल सकती है।
5: बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि हमारे किसान भाई उन जमीनों पर अच्छी खेती कर सकते हैं जहां से वो कुछ भी नहीं उगा पा रहे
6: जी।
5: तो इन जमीनों पर वो कौन सी ऐसी पौध है सगंध पौधों की जिसको लगा सकते हैं, कौन सी प्रजाति उगा सकते हैं वो?
6: किसान भाइयों, जो आपकी जो भौगोलिक स्थिति है उत्तराखंड की खास तौर से, उसको मैं तीन श्रेणियों में बांटना चाहूंगा। पहला, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च मीन्स मैं आप बात करूं जैसे जोशीमठ का इलाका है जहां बर्फ पड़ती है, एक वो इलाका। दूसरा, जो मिडिल का क्षेत्र है जो कि 6000 से लेकर 4000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। और तीसरी बात करता हूं जो मैदानी क्षेत्र हैं, हमारा जो उधम सिंह नगर का इलाका है, हरिद्वार का इलाका है या देहरादून का खासतौर से इलाका है, मैं इन क्षेत्रों की बात करूं तो जो ऊपर के क्षेत्र हैं जहां बर्फ आती है, उन इलाकों में किसान भाई अपने खेतों में डैमेज गुलाब की खेती बहुत ही आसानी पूर्वक और अच्छी तरह से कर सकते हैं।
5: अच्छा।
6: बात आती है जो मिडिल का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में लेमन ग्रास, पामरोजा, इस तरह की जो फसलें हैं उनकी खेती आराम से कर सकते हैं। और बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों की, मैदानी क्षेत्रों में जब जो किसान भाई हमारे हैं, जो आप पेपरमिंट जिसे कहते हैं, पेपरमिंट या जैपनीज मिंट आप जिसे बोलते हैं, उस फसल की खेती बड़ी अच्छी तरह से और सावधानी पूर्वक आप अपने खेतों में कर सकते हैं।
5: तीन तरीके से आपने हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमारे जो क्षेत्र हैं उसको आपने इस तरीके से उसको परिभाषित किया कि कहां पर हम किस सगंध पौध की खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जैसे भी आपने बताया कि मैदानी क्षेत्रों में भी हमारे किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में अभी आपने कुछ नाम बताए हैं कि उसको लगा सकते हैं, किस तरह से इसकी खेती की जा सकती है?
6: देखिए किसान भाइयों, मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी ये दूं कि मैं मिंट की अगर खास तौर से बात करूं, देख मेंथा एक ऐसी फसल है जो हमारे उत्तराखंड में बहुतायत से हो रही है और बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है
5: जी।
6: इस प्लांट की खेती में एक और खास बड़ी अच्छी बात यह है कि ये पौधा तीन तरह से इसकी खेती की जा सकती है। तीन तरह से मीन्स, एक एकल फसल के रूप में, दूसरा जो डबलिंग इनकम की बात आजकल चल रही है कि डबलिंग इनकम कैसे काश्तकार की होगी, उस डबलिंग इनकम के तहत गेहूं के साथ इसकी मिक्स इंटरक्रॉपिंग करने के बाद इसकी खेती कर सकते हैं।
5: अच्छा।
6: और तीसरी बात आती है इसकी पौध द्वारा कि हम पौध से इसका प्लांटेशन, जैसे धान की पौध तैयार होती है ठीक वैसे ही इसकी हम पौध तैयार कर लेते हैं और गेहूं

0: की कटाई के बाद खेत की तैयारी करने के पश्चात उस खेत में पानी भरकर धान की तरह ही उस पौध का रोपण कर देंगे, तो उससे भी हमको क्या होगा कि अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।
1: मतलब कि हमारे किसान भाई ये सारे काम समय रहते कर सकते हैं और ये काम करने के लिए बड़ा अच्छा समय इस समय चल भी रहा
0: बिल्कुल।
1: है। जी, आपने अभी जिक्र किया था कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों वाले हमारे किसान भाई हैं, वो वहाँ पर डैमेज गुलाब की बात आपने की थी, ये डैमेज गुलाब होता क्या है डॉक्टर साहब?
0: देखिए, जो जहाँ तक डैमेज गुलाब की आप बात कर रहे हैं, डैमेज गुलाब एक विशेष प्रकार का गुलाब है जो कि बुल्गारिया से लाया गया है।
1: अच्छा,
0: तो ये खास तौर से इसके जो तेल है, ये तेल की प्रजाति है, इसकी बहुत सी वैरायटियां हैं। मैं आपकी इसकी वैरायटी की अगर बात करूं तो इसमें नूरजहां एक वैरायटी है, इसमें ज्वाला है, हिमरोज है, सुपर ज्वाला है, सुपर हिमरोज है, कई वैरायटियां हैं जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होती हैं। तो जो काश्तकार भाई हैं वो अपने खेतों की, मैं एक और चीज़ बता दूं आपको,
1: जी
0: इन फसलों से अगर आप चाहें तो आपकी जो परंपरागत खेती है, जैसे मैं आप बात करूं पर्वतीय क्षेत्रों के जो हायर वाले एटीट्यूड वाले इलाके हैं जहां आलू होता है, जहां राजमा होता है, मैं उन राजमा को तो वैसे ही रहने दूं और इन क्रॉपों को एज ए बाउंड्री क्रॉप के अगर मैं रूप में इसको इस्तेमाल करूं तो मेरे जो मेरी परंपरागत फसल है उससे प्रोडक्शन भी होगा, बट उसके साथ साथ मुझको आर्थिकी भी प्राप्त होगी, एरोमेटिक प्लांट से उत्पादन भी हमको मिलेगा, तो मैं इसको बाउंड्री क्रॉप के रूप में भी लगा सकता हूं।
1: मतलब कि हम उसको अपनी खेतों की मेड़ पर भी लगा
0: यस,
1: सकते हैं,
0: बिल्कुल।
1: और अगर हमारे किसान भाई खेतों की मेड़ पर लगाएंगे तो जैसे भी आपने एक बात बताई थी कि किसानों की आय को दोगुना करने का जो हमारी सरकार ने ये एक संकल्प लिया है, तो इससे किसान भाइयों की आय में वृद्धि हो सकती है।
0: जी,
1: हमने बात की डैमेज गुलाब की, आपने उसकी प्रजातियों के बारे में बताया, इसकी खेती किस प्रकार से कर सकते हैं वहाँ पर किसान भाई, इसकी क्या देखभाल करनी होगी? जलवायु की बात तो आपने बताई है कि अधिक ठंडा इसके लिए होना चाहिए।
0: देखिए, जो डैमेज गुलाब की खेती है, डैमेज गुलाब की खेती में सबसे पहले हमको इसकी कटिंग की जो आवश्यकता होती है,
1: जी,
0: कटिंग किसी ऐसे सोर्स से लें जो ऑथेंटिक हो, जो प्रमाणित हो, और उसके बाद में आप क्या करें, अपने खेतों के चारों तरफ गड्ढे बना लें, 2x2 आकार का गड्ढा बना लें।
1: ठीक,
0: उस गड्ढे को अच्छी तरह बनाने के बाद में उसमें खाद और मिट्टी भर दें, और एक साल पुरानी कटिंग जिसमें कि रूट आने लगी हों, वो जो पौधे बन जाते हैं कटिंग से, जो पौधे बने हैं एक साल पुराने पौधों को लेके उन गड्ढों में आप प्लांट कर दें।
1: अच्छा,
0: ये जो काम आप करेंगे ये करीब दिसंबर के महीने में करें तो ज़्यादा बेहतर है, जब गुलाब में डोरमेंसी होती है। और आप जब दिसंबर के महीने में इसको लगा देंगे, लगाने के बाद 5 और अप्रैल में इसमें क्या कल्ले फूटने लगते हैं और पौधा धीरे धीरे सर्वाइव करने लगता है। तो इस तरह से जो है आप अपने खेतों में कर सकते। एक और बात अच्छी ये है
1: जी,
0: कि जो ऊपर का जो ठंडा इलाका है वहाँ पर बहुत इंसेक्ट नहीं आता,
1: अच्छा,
0: बहुत से इंसेक्ट नहीं आते, तो कोशिश आप ये करें कि उन क्षेत्रों में इसको यूज करेंगे तो एक तो उसमें जो उच्च हिमालयी क्षेत्र वाले पोर्शन हैं वहाँ पर जो डैमेज गुलाब हो रहा है उसकी क्वालिटी और हमारे मैदानी क्षेत्र के गुलाब की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। जो ठंडा इलाका है वहाँ के फूल के जो ऑयल होता है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, बशर्ते मैदानी क्षेत्रों से।
1: हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पर इसमें कीट वगैरह भी नहीं लगते हैं।
0: जी,
1: तो बड़ी अच्छी जानकारी राकेश कुमार यादव जी हमारे किसान भाइयों को दे रहे हैं। बात करते हैं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की, जैसे भी आपने लेमन ग्रास की बात की थी, तो लेमन ग्रास की खेती किस प्रकार से किसान भाई कर सकते हैं?
0: किसान भाइयों, जैसा अभी आपने कहा कि लेमन ग्रास एक ऐसी फसल है जो एक फसल ही नहीं है बट वो एरोमेटिक प्लांट्स का एक ट्रेनर है। मैं इस बात को अभी मान रहा हूं कि जो वो एक ट्रेनर है कि लेमन ग्रास के माध्यम से काश्तकार अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: लेमन ग्रास खुद ही काश्तकार को ट्रेंड करता है। जैसे अगर आप लेमन ग्रास की फसल लगाते हैं, आप किसी बंजर खेत में आप लेमन ग्रास लगाइएगा, आप अपने खेत को साफ करें, साफ करने के बाद हल से 2x2 फीट की दूरी पे हल से एक निशान लगा दें, लाइन खींच लें, जैसा कि काश्तकार अमूमन देखते हैं खेतों को चीरा लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं उसमें चीरा लगा दें 2 फीट की दूरी पर, और वो जो चीरा है उस चीरे में हम स्लिप, जो लेमन ग्रास की पौध है उसको हम स्लिप बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: तो उस पौध की जो स्लिप है उस स्लिप को आप लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी पर लगाते चले जाइए।
1: ठीक ठीक,
0: ये काम आपको करना है जुलाई के महीने में जब बारिश आपके यहाँ हो रही है। उसके बाद उसको आप छोड़ दीजिए, प्लांट लग गया, और अगस्त के महीने में उसके जो दोनों बीज की दूरी है, एक चीरे से दूसरे चीरे के जो बीज की दूरी है उसको आप किसी ब्रश कटर या किसी ऐसी चीज से साफ कर दें बीज की घास को, तो क्या होगा वो घास खत्म हो जाएगी। लेमन ग्रास क्या करती है, जो अपने फील्ड के अंदर लेमन ग्रास किसी भी घास को उगने नहीं देती, ये लेमन ग्रास की बड़ी खासियत है। तो जैसे जैसे आप करेंगे, लेमन ग्रास में एक अच्छी बात यह है, देखिए कोई भी फसल हो, चाहे वो कोई खाद्यान्न फसल हो, चाहे कोई फ्रूट की फसल हो, कोई फसल ऐसी नहीं है जो पकने के बाद तोड़ने, अगर आप ना तोड़ें तो उसमें नुकसान नहीं होता। जैसे कोई टमाटर है, अगर टमाटर आपका पक गया तो आपको तोड़ना ही तोड़ना है, गेहूं आपका कट गया वो आपका पका हुआ खड़ा है तो आपको काटना ही काटना है, बट लेमन ग्रास एक ऐसी फसल है, अगर आपको लगता है कि फसल मेरी मैच्योर हो गई है और अर्जेंट मुझको कोई काम पड़ गया और 4 से 10 दिन

0: मैं किसी फसल को नहीं काट सकता हूं, तो लेमन ग्रास की फसल में कोई नुकसान नहीं है।
1: लेमन ग्रास के क्या क्या फायदे हो सकते हैं यादव जी? किस तरीके से उसको उगाकर हमारे जो किसान भाई हैं उसका लाभ कमा सकते हैं?
0: देखिए, लेमन ग्रास की जो फसल है, हमारे काश्तकार अपनी बंजर भूमि में, खेतों की मेड़ों पर, खेतों दो पहाड़ी क्षेत्रों में दो खेत के बीच में जो भीड़ है, जिसे हम बोलते हैं जो ढलान वाला पोर्शन है,
1: जी जी
0: वहां लेमन ग्रास को लगा के एक अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है।
1: अच्छा, तो उत्पादन तो अच्छा हमने ले लिया, इसको हमने उगा भी लिया, इसका उपयोग क्या होगा?
0: देखिए, लेमन ग्रास के बहुत सारे उपयोग हैं।
1: जी जी
0: लेमन ग्रास जो आप मार्केट में धूप बत्ती अगरबत्ती की आप बात करते हैं, जो खुशबू आती है वो किसी ना किसी ऑयल से आती है, और लेमन ग्रास भी उस ऑयल में शामिल है।
1: जी
0: जो बाम बनता है, बाम में आप जो चरपराहट जैसा महसूस करते हैं, वो लेमन ग्रास के ऑयल से ही आती है। दूसरी चीज ये कि जो धूप बत्ती होगी, सोप से जो साबुन है, वहां लेमन ग्रास हम यूज करते हैं। मतलब लेमन ग्रास के एक और लेमन ग्रास की दूसरी एक वैरायटी है, वैरायटी मैं क्या कहूँ, एक दूसरी फसल है जिसे कहते हैं सिट्रोनेला। जो
1: अच्छा,
0: सिट्रोनेला का जो ऑयल है, वो जो आपका रात में जो मच्छर को भगाने के लिए यूज करते हैं,
1: हाँ
0: वहां
1: हाँ
0: हम क्या करते हैं, वो गुड नाइट को हम इस्तेमाल हम वहां गुड नाइट करते हैं।
1: जी जी जी
0: तो ये बहुत से यूजेज हैं लेमन ग्रास के
1: हाँ,
0: ऑयल के।
1: तो इस तरीके से हम लेमन ग्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन ग्रास का हम तेल भी निकाल सकते हैं। जैसे तेल निकालने की इसकी बात आती है, तो किसान भाई इसका तेल कैसे निकालेंगे, कहाँ पर निकलवाएंगे?
0: देखिए साहब, जहां तक किसान भाइयों को तेल निकालने की वाली बात है, सघन पौधा के सेलाकोई के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में लगभग हमने करीब 100-150 आसमान यूनिट्स, आसमान संयंत्र जो हैं वो काश्तकारों को दिए हैं। और ये हमारा एक तरह का एक प्रोसीजर है कि हम जो लेमन ग्रास की खेती है, खासतौर से सघन फसलों की खेती की बात करूं मैं, तो एक क्लस्टर के रूप में करते हैं।
1: जी
0: और गवर्नमेंट ने अब तक 100% की सब्सिडी में काश्तकारों को आसमान संयंत्र उपलब्ध कराए हैं।
1: जी
0: तो जो लेमन ग्रास की फसल है या कोई भी सघन फसल है, उसका डिस्टिलेशन, उसका आसवन उसकी ही फील्ड में उसी के आसवन संयंत्र के माध्यम से किया जाता है।
1: अच्छा,
0: ऐसी व्यवस्था सरकार ने अब तक बनाई है।
1: तो सरकार भी इस ओर काफी ध्यान दे रही है और सघन पौधों की खेती करने के लिए हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित कर रही है। हमारे किसान भाइयों को कोई विशेष बात आप बताना चाहेंगे जो कि सघन पौधों की खेती करना चाहते हैं?
0: मैं किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि में आप लेमन ग्रास लगाइए। एक और क्रॉप बहुत अच्छी क्रॉप है जिसका नाम लूं मैं, वो है तेजपात।
1: अच्छा,
0: जो तेजपात जिसे आजकल हम लोग खाने में यूज करते हैं,
1: मसाले
0: पत्तियां
1: में यूज
0: मसाले में
1: करते
0: यूज
1: हैं।
0: करते हैं, वो
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: अच्छी फसल है। आप डबलिंग इनकम में तेजपात को खेत की, अपने जो पारंपरिक फसलों वाले खेत हैं उनकी बाउंड्री पर लगा सकते हैं। बाउंड्री पर लगा के एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जिन खेतों में कुछ नहीं हो रहा है, बंजर पड़े हैं, जंगली जानवरों से असुरक्षित हैं, जहां बहुत जंगली जानवरों की परेशानियां हैं, उन क्षेत्रों में लेमन ग्रास की फसल लगाएं। इसको किसी भी जंगली जानवर से, किसी कीड़े से, किसी भी चीज से कोई नुकसान नहीं है। और सरकार द्वारा बहुत सहायता इसमें दी जा रही है। सघन पौधा केंद्र सेला के माध्यम से 5 नाली प्रत्येक काश्तकार को फ्री प्लांटिंग मटेरियल दिए जाने की व्यवस्था है। तो
1: अच्छा,
0: जो हमारे किसान भाई अगर तेजपात है, लेमन ग्रास है, डेमस रोज है, इस तरह की जो फसल अगर लगाना चाहते हैं, वो सघन पौधा केंद्र सेलाकुई से संपर्क करें और इन पौधों का लाभ उठाएं।
1: तो राकेश कुमार यादव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी सघन पौधों की खेती के संबंध में हमारे किसान भाइयों को दी। हमें उम्मीद है कि किसान भाई इस बातचीत से अवश्य ही लाभ उठाएंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने सुनी भेंटवार्ता सगंध पौधों की खेती विषय पर राकेश कुमार यादव, वैज्ञानिक सगंध पौधा केंद्र से लखवी से। चलिए साथियों, अब कार्यक्रम में इस वक्त है एक गीत का, आइए सुनते हैं ये गीत।

साथियों, अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये दिवस 12 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पौधे हमारे भोजन की आवश्यकता का लगभग 80% भाग और सांस देने वाली ऑक्सीजन का 98% हिस्सा प्रदान करते हैं। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन पादप के स्वास्थ्य की रक्षा करें, साथ ही इन पौधों की रक्षा करने के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। इसी उद्देश्य के साथ ही इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पौधों की कीटों और बीमारियों के कारण हर वर्ष दुनिया भर में 40% तक खाद्य फसलें नष्ट हो जाती हैं। साथियों, पौधे पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। वे हमें भोजन, ऑक्सीजन और आश्रय भी प्रदान करते हैं। ये हमारे पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। इसलिए हमें भी पादपों की महत्वपूर्णता को समझते हुए इस दिवस पर इनकी रक्षा की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। तभी हम पादप की ओर पादप हमारे पर्यावरण, भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति कर पाएंगे। चलिए साथियों, कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत।

साथियों, गीत के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे खेत में फसल के लिए सबसे जरूरी है फसल की समय पर सिंचाई। तभी तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार ने 2015 में शुरू की गई थी, जिसका एक ही लक्ष्य है, हर खेत को पानी और प्रतिबूंद अधिक फसल के मंत्र के साथ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। ये योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से पानी की बर्बादी कम करने और जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन करने के लिए किसान को 45% से 80% तक सब्सिडी प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना है, जिससे कृषि योग्य भूमि में के अंतर्गत सिंचाई के क्षेत्र में आने वाली हर भूमि का विस्तार हो। खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाकर पानी के उपयोग में 60% तक बचत करना, कम पानी में अधिक उपज से किसानों की आय बढ़ाना और सिंचाई लागत को कम करना है। जल संचयन संरचनाओं, कृषि तालाबों और छोटे बांधों के माध्यम से जल संसाधन का विकास करना भी है। साथियों, अब वक्त हो गया है हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। अब मुझे धनंजय भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। समय हो गया है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार उपदगढ़ में योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। परीक्षा पत्र लीक होना का आरोपों कारण मेडिकल शिक्षा प्रवेशक लीजी है नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांचक आदेश। हल्द्वानी नाबार्ड समर्थित 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। स्वयं सहायता समूह भी जुड़ी श्रेणियों के कुमाऊनी पिछौर बनून और स्वरोजगार बटी जुड़ी नई जमानक तकनीकों मिलौल प्रशिक्षण। बद्रीनाथ धमक सुरक्षा व्यवस्था के निबेड़ चमोली पुलिस ATS और 7 असम ATS संयुक्त फ्लैग मार्च माणा गौ तक चेकिंग अभियान चलाई गौ। और मधमहेश्वर धामक कपाट अणवल 21 मई हते श्रद्धालुओं के दर्शनक लीजी खोल दी जाल। अब समाचार विस्तारल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTL शिक्षा मेडिकल दाखिलक लीजी 3 मई हते कराई गई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कराणक फैसला ली है। सोशल मीडिया पोस्टम एजेंसी को कि यो फैसल विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय प्रशिक्षा प्रणाली विश्वास के ध्यान में धरते हुए ली जा रो।
2: बताए कि सरकारल पेपर लीकों की आरोपी की पुरजांचक लीजी मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के सौंपणक निर्णय ले। एजेंसी को कि यो निर्णय केंद्रीय एजेंसियों दगाड़ समन्वय में NTA द्वारा जांच निष्कर्षों मूल्यांकन करणक बाद ली गई। परीक्षा के लीजिए नई तिथि अलग अधिसूचित करी जाली। पंजीकरण विवरण उम्मीदवारक जानकारी और मई 2026 तक लीजिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रोल। दोबारा परीक्षा के लीजिए फिर पंजीकरण करोणक जरूरत नहीं पड़ी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क ले नी ली जल। आकाशवाणी देहरादून के लीजिए समाचार कक्ष बैठे ममता पांडे।
1: नैनीताल जिला हल्द्वानी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड बटी समर्थित सूक्ष्म उद्यम विकास योजना के तहत कुमाऊनी पिछौड़ पारंपरिक और आधुनिक उन्नत कौशल विषय पर 20 दिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करी गो। कार्यक्रम के तहत 30 स्वयं सहायता समूह में जुड़ी श्रेणियों के प्रशिक्षण दी जा रो। यह मौके पर नाबार्डक जिल विकास प्रबंधक मुकेश बेलवालल को की प्रशिक्षणल श्रेणियों के आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार हेबे जोड़ने कोशिश करी जा रहे।
3: स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम लोग जो हमारा पहाड़ी परिधान है कुमाऊनी पिछौड़ा, इसमें जो नई टेक्निक है जो नई डिजाइन है उसके ऊपर ट्रेनिंग यहाँ पर हम करवा रहे हैं और 20 दिन का कार्यक्रम ये रहेगा। जो हमारा पिछौड़ा एक GI प्रोडक्ट है तो उस पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर पिछौड़ा में अच्छा कार्य नहीं हो रहा, बाहर से सही यहाँ पर चीजें आ रही है। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारा GI प्रोडक्ट है तो हम लोग यहीं पर इसको बनाए और नए नए डिजाइन बनाए और उसको आगे बेचे। और हम चाहते हैं जो SHG की महिला है उसको अपनाए और इसमें आगे जाके अपना बिजनेस करें, एंटरप्राइज स्थापित करें।
1: प्रशिक्षण के दौरान श्रेणियों के कुमाऊनी पिछौड़ बनाणक नई जमानक तकनीकों नई डिजाइनों पैकेजिंग और बाजारक मांग हिसाबल उत्पाद तैयार करनक जानकारी दी जा रहे। यह एक दगड़ बैंकिंग वित्तीय साक्षरता और डिजिटल मार्केटिंग हेबे जुड़ी क्षेत्र लय कराई जल। प्रशिक्षण में शामिल श्रेणियों कुण छू के आधुनिक तकनीकुल पारंपरिक परिधान बनाण सीखणल उनके अणवल बखतम रोजगार और आय बनाणम मदद मिले।

0: मेरा नाम सुमन अधिकारी है। ये जो ट्रेनिंग है ये नाबार्ड के सपोर्ट से हो रही है और इसमें महिलाएं इस काम को सीख करके हमारा उद्देश्य है कि आगे अपना रोजगार शुरू करें और जो है इसको हैंडमेड बनाए और इससे महिलाएं अपना आर्थिक विकास करेंगी।
1: मेरा नाम है निर्मला जोशी। जैसे हम लोग हमारा ये अपना परिधान है हमारी महिलाओं का, तो हमारा इसमें जैसे हम लोग सीखेंगे, जैसे स्टार्टिंग पहले रहेगा कि कपड़े को कलर करके फिर उसको हम लोग सुखाना, फिर उसमें अलग अलग तरीके से हम लोग डॉट्स मतलब पॉइंट बनाएंगे।
2: देहरादूनम विकास नगर विधानसभा क्षेत्रक हरबटपुरक लिजी स्वीकृत करीब 48 करोड़ रुपयक पेयजल योजनाक विधायक मुन्ना सिंह चौहानल निरीक्षण करो। योजनाक तहत स्कूलक नजदीकम ट्यूबवेल लगाई जा रो जैल उफन रूणीवाल मैसू और स्कूली नंतिनु कै साफ पीणक पानीक सुविधा मिल सकेल। विधायकल कौ की हर घर नल हर घर जल योजनाक तहत बहुत बखत बटी पानीक समस्याल परेशान मैसू कैं यो पेयजल योजना ठुल राहत मिली। यह एक दौरान विधायकल पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज हरबटपुरम विभिन्न विकास कार्यों के लिए शुभारंभ करो। यह के अलावा करीब 57 लाख रुपए लागतल बढ़नी वाल बास्केटबॉल कोर्ट और खेल मैदान निर्माण कार्यक लिए शुभारंभ करेगो। विधायकल कौ की शिक्षाक दगड़ खेल गतिविधियों के बढ़ावा देने लिए जरूरी छू ताकि स्कूली नातिनु कैं बहुल मौक मिल सकूं। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह का दगर यू समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। बद्रीनाथ धामक सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत करनक लीजिए चमोली पुलिस एटीएस और सात असम एटीएसएल आज संयुक्त फ्लैग मार्च निकालो। यह एक दौरान बद्रीनाथ धाम बटी लिबेर सीमांत गांव माणा तक चेकिंग अभियान चलाई गो। सुरक्षा एजेंसियों बद्रीनाथ मंदिर परिसरक निरीक्षण कर बेर सुरक्षा व्यवस्थाओं जायजा लियो। होटल अस्पताल पार्किंग और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ियों और संदिग्ध मैशों के लिए जाँच करी गई। देवदर्शनी बैरियर पर सुरक्षा बलूल गाड़ियों और यात्रियों के सामानक चेकिंग करी। वहीं माणा गांव तक गश्त कर बेर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। अभियानक दौरान पुलिसल यात्रियों व्यापारियों और स्थानीय मैशों हेते सतर्क रूणक और कश्य संदिग्ध गतिविधि सूचना सिद्ध पुलिस के दिनक अपील करी। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पंच केदारूम बटी एक मद महेश्वर मंदिर कपाट आणवाल 21 मई हते श्रद्धालुओं के दर्शनक लिजी खोल दी जाल। 17 मई हते भगवान मद महेश्वरक उत्सव मूर्ति ओमकारेश्वर मंदिरक गर्भगृह बटी भ्यार अबेर सभा मंडपुम विराजमान है। एक बाद 19 मई हते भगवान मद महेश्वरक उत्सव डोल ओमकारेश्वर मंदिर बटी प्रस्थान करबेर रात्रि विश्रामक लिजी राकेश्वरी मंदिर पहुंचेल। वहीं 20 मई हते डोल रांची बटी रवाना हैबेर गोंडार पहुंचेल। 21 मई हते उत्सव डोली गोंडार बटी प्रस्थान करेल और कर्क लग्न विधि विधानक दगड़ भगवान मद महेश्वरक कपाट श्रद्धालुओं के लिजी खोल दी जा। नई टिहरी नगर पालिका परिषद शहरक सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं के भल बनाक लीजिए जल्दी अपूर्ण ब्यड़ में 8 नई गाड़ी शामिल कर रहते हैं जा रहे। यूं गाड़ियों के जरिए गद्दर प्रबंधन व्यवस्था के मजबूत करी जल। यह एक दगड़ नगर क्षेत्र में पली बार गौ ग्रास सेवा और शव यात्रा गाड़ी सेवा ले शुरू करी जल। एक रिपोर्ट।
3: नगर पालिका अध्यक्ष टिहरील बताए कि नई वाहनों को ऊंट जाड़ल सपे वार्डो में रोज कूड़ जमा करी जाल और सफाई व्यवस्था के और भल करी जा सकल। गोग्रा सेवा भीतर एक विशेष वाहन घर घर जेबेर गोरू क्लीजी रोट सागों को छिलको और अन्य खाद्य सामग्री जमा करल जेल गौशाला में पशुओं को चारों को रूप में उपयोग करी जा सकल।
4: अभी 8 वाहन हम होले उससे हमारा स्वच्छता के लिए 2-2 ट्रक के वाहन है, उसमें हमारा ढिंगे वाहन है, उसमें हमारा पानी का टैंकर है, उसमें हमारा जो है एक सब वाहन का भी हमारा प्रावधान है। और हम शहर को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए हमको संसाधन की अत्यंत जरूरत थी और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं।
3: यह के अलावा नगर क्षेत्र में पहली बार शव यात्रा वाहन सेवा शुरू करी जाली जैल लोगों के कम खर्च में भल सुविधा मिल सकल। वहीं स्ट्रीट लाइट मरम्मत पेयजल आपूर्ति और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए जिले विशेष वाहन लगाई जाल। आकाशवाणी देहरादून के लिए टिहरी बठे जयप्रकाश कुकृतिक दगड़ मी ममता पांडे।
2: देवभूमि उत्तराखंडम पिछड़ 27 सालों बटी निकाली जा रही विश्वनाथ जगदीशिला डोल यात्रा यो साल ले श्रद्धा और उत्साह दगड़ प्रदेश भ्रमण पर निकल रहे। यात्रा विभिन्न धार्मिक स्थलों भ्रमण करते हुए धार्मिक एकता विश्व शांति और उत्तराखंडक आध्यात्मिक विरासतक संदेश दी रहे। हरिद्वार बटी शुरू हुई यो यात्रा प्रदेशक कई

0: उनका स्वरूप दिया जाना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की इस यात्रा में डोली ने पूरे प्रदेश में 432 देवालयों को धाम के स्वरूप में चिन्हित करने का संकल्प पूरा किया है। दूसरा उद्देश्य जो हमारी देववाणी संस्कृत भाषा का उन्नयन हो, संस्कृत के विद्यालय खुले, यहाँ पर ध्यान केंद्र बने।
1: प्रदेश के कुछ हिस्सों में रुक रुक बेर ड्योहुरो, मौसम विभाग देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरगढ़ दगड़ कई जिलों में द्योहुणक संभावना जतर है। यह दगड़ बहुत तेज द्यो कड़ताई पड़नक, डाव पड़नक और उदगर आणक लय ऑरेंज अलर्ट जारी करी जा रो। मौसम विभाग मुताबिक 4200 मीटर है बे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में ह्यू लय पड़ सकूं, जैल पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ सकूं। वहीं भो लय द्योहुणा दगड़ मौसम खराब रोणक अनुमान छू। मौसम विज्ञान केंद्र पर्वतीय जिलों में हल्के बटी मध्यम द्यो और तेज हाव चलनक संभावना जतर है। 14 मई है तल पर्वतीय इलाकों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार झोंकदार हाव चल सकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार आय सुनो। परीक्षा पत्र लीक होने का आरोपों कारण मेडिकल परीक्षा शिक्षा प्रवेशक लीजी है नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच का आदेश। हल्द्वानी नाबार्ड समर्थित 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। स्वयं सहायता समूह हेबे जुड़ी श्रेणियों के कुमाऊनी पिछौड़ बनून और स्वरोजगार बटी जुड़ी आधुनिक तकनीकों मिलल प्रशिक्षण। बद्रीनाथ धामक सुरक्षा व्यवस्था के लिबेर चमोली पुलिस एटीएस और 7 असम एटीएस संयुक्त फ्लैग मार्च माणा गांव तक सघन चेकिंग अभियान चलाई गो। और मध्महेश्वर धामक कपाट आणवाल 21 मई हते श्रद्धालुओं के दर्शनक लिजी खोल दी जाल। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यौ अंक समाप्त हो। नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं फिल्म पटियाला हाउस से महालक्ष्मी अय्यर हार्डकोर और जस्सी के स्वर में अन्विता दत्त के इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, ये गीत था फिल्म डियर जिंदगी से जसलीन रोयाल अमित त्रिवेदी के स्वर में, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। 7:50 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति सप्ताह सार।
1: श्रोताओं नमस्कार, क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार में मैं नीता कांडपाल आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, कार्यक्रम सप्ताह सार का प्रसारण प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं सप्ताह भर की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम सप्ताह सार। श्रोताओं, UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेन देन किए गए हैं। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक के बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए EKYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। सभी यूनिट धारकों को इस महीने की 30 तारीख तक हर हाल में अपनी EKYC पूरा कराने को कहा गया है, ताकि भविष्य में उन्हें राशन लेने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्रोताओं, सरकार द्वारा तैयार किए गए मेरा EKYC ऐप की मदद से बुजुर्ग, दिव्यांगजन और असहाय राशन कार्ड धारक घर बैठे ही अपनी EKYC आसानी से पूरी कर सकते हैं। देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से छूटे हुए लाभार्थी भी आसानी से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विशेष रूप से जो लोग राशन की दुकान तक पहुँचने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये ऐप काफी उपयोगी साबित हो रहा है। श्रोताओं, आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस सप्ताह देहरादून स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के विभिन्न अनुभागों का दौरा कर संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री जैन ने कहा कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने सार्वजनिक सेवा प्रसारण और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति आकाशवाणी की प्रतिबद्ध को दोहराया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की ताकत उसके कुशल प्रस्तुतकर्ताओं के समूह में निहित है। उन्होंने अनुभवी आवाजों को बनाए रखते हुए नई प्रतिभाओं को लगातार शामिल करने के महत्व पर बल दिया। श्रोताओं, भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर लोकतांत्रिक देशों के निर्वाचन प्रक्रिया के शोध अध्ययन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल यूरोप के सर्बिया गणराज्य पहुंचा। इस सप्ताह भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सर्बिया के नौवीं सात प्रांत की विधानसभा का भ्रमण किया, जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन व प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की गई। भारत और सर्बिया के मध्य निर्वाचन प्रक्रियाओं व लोकतांत्रिक व्यवस्था के श्रेष्ठ अनुभवों के आदान प्रदान के उद्देश्य से भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सर्बिया की प्रांतीय निर्वाचन आयोग के साथ बैठक भी की। श्रोताओं, उत्तराखंड शासन ने आगामी जनगणना 2027 के सुचारू और सफल संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जनगणना सचिव दीपक कुमार ने जन सामान्य से जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग करने तथा पूछे गए सभी प्रश्नों के सटीक और स्पष्ट उत्तर देने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि जनगणना देश का एक महत्वपूर्ण और प्राथमिक सांख्यिकीय स्रोत है, जिसके माध्यम से मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं, संपत्तियां, जनसांख्यिकी विवरण,

साक्षरता, धर्म, आर्थिक गतिविधियों और प्रवासन से संबंधित जानकारी ग्राम और नगर स्तर तक उपलब्ध होती है। उन्होंने बताया कि जनगणना अधिकारी को अपने निर्धारित क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। प्रत्येक नागरिक का ये वैधानिक दायित्व होगा कि वह अपने सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही उत्तर उपलब्ध कराए। हालांकि किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार की किसी महिला सदस्य का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही कोई महिला अपने पति, मृत पति अथवा ऐसे किसी व्यक्ति का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होगी जिसका नाम बताना सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध माना जाता हो। श्रोताओं, देश ने इस सप्ताह यानी 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तानी प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में बुक बैंक बनाने के शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किताबों को इन बुक बैंक्स में वापस रखा जा सके और अगले सत्र में नए छात्रों को इन किताबों को वितरित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि जो किताबें खराब हो गई हों या बच्चे किसी कारण से इसे वापस नहीं कर पाए तो मांग के अनुरूप किताबें छपवाई जाएं। इससे हर साल हजारों किताबें छपवाने के लिए करोड़ों रुपयों का खर्च बचेगा। श्री वर्धन ने इस सप्ताह सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने सभी विद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय सहित सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने विद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालयों की व्यवस्था भी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिलेगा। श्रोताओं, हरिद्वार जिले में संचालित मदरसों में पीएम पोषण योजना की प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में 23 मदरसों में मिड डे मील व्यवस्था और छात्र उपस्थिति से जुड़ी गड़बड़ियां पाई गई, जबकि छात्र संख्या में अनियमितता मिलने पर 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना का संचालन बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इन मदरसों में मार्च और अप्रैल माह के भुगतान पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी मदरसों की विस्तृत जाँच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ मदरसों में उत्तराखंड से बाहर के राज्यों के बच्चों का दाखिला कराया गया। प्रशासन अब इन बच्चों के सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी जुटा रहा है। श्रोताओं, इस सप्ताह 8 मई को आकाशवाणी की स्थापना के 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सुबह आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून से नेहरू कॉलोनी तक वाकाथन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रम का प्रसारण करता है। श्रोताओं, चमोली जिले में स्थित पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आगामी 18 मई को ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में एसडीओ मोहन सिंह के नेतृत्व में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की टीम ने सगर से रुद्रनाथ धाम तक पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। प्रशासन का प्रयास है कि यात्रा को और अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं इस सप्ताह की महत्वपूर्ण खबर की तरफ। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिए 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 मई से शुरू हो चुकी है और 24 मई तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि छात्र आवेदन पत्र 20 मई तक जमा कर सकते हैं। विद्यालयों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 24 मई तक का समय दिया गया है। श्री सिमल्टी ने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। 10वीं परीक्षा में अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं

0: परीक्षा सुधार में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जबकि 12वीं में एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र अंक सुधार परीक्षा दे सकते हैं। श्रोताओं, भारतीय रिजर्व बैंक और यूरोपीय केंद्रीय बैंक ECB ने केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता 2015 में हुए पुराने समझौतों का नवीनतम रूप है। इसके अंतर्गत दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच नियमित रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान, नीतिगत संवाद और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सहयोग उन क्षेत्रों में केंद्रित होगा जो दोनों संस्थानों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। RBI ने कहा कि इस नए समझौते से केंद्रीय बैंकिंग प्रथाओं और वित्तीय क्षेत्र के विकास पर संस्थागत जुड़ाव और सहयोग को अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। श्रोताओं, कार्यक्रम सप्ताह सार में आज इतना ही। अगले अंक में कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति सप्ताह सार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर हरिशंकर डिमरी द्वारा संस्कृत वार्ता। विषय है संस्कृति साहित्य गीता सरम।
2: प्रिय श्रोतारः, सर्वेभ्यो नमो नमः। आकाशवाण्याः अस्य पवित्र कार्यक्रमे सर्वेभ्यः सादरं वन्दनम्। अद्य वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारत्वं विचारयाम। महाभारतस्य भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतायाः महात्म्यं वर्णयन् ऋषिभिः निगदितं यत् सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात सर्वाणि उपनिषदः गावः सन्ति, तासां गवां दोहकः स्वयं गोपालनन्दनः श्रीकृष्णः। पार्थः अर्जुन वत्स यस्य निमित्तं धेनुक्षीरं ददाति, सुदयः बुद्धिमन्तः साधकाः श्रोतारः च तस्य क्षीरस्य भोक्तारः, दुग्धं च तत् महत् गीतामृतम् एव। वस्तुतस्तु अस्य गहनं तत्त्वमिदं भवति यत् उपनिषत्सु निहितं यत् वेदान्तस्य परमं रहस्यं वर्तते, तत् अतीव गूढं दुर्बोधं च। यथा वत्सस्य साहाय्यं विना धेनोक्षीरं न निर्गच्छति, तद्वत् उपनिषदां गूढं तत्त्वं सामान्यमनुष्यस्य दुर्ज्ञेयं भवति। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनं वत्सरूपेण समीपे संस्थाप्य अर्जुनस्य प्रश्नान् युद्धपरिस्थितिश्चैव निमित्तेन उपनिषदां सम्पूर्णं तत्त्वक्षीरम् अतीव सरलरीत्याः दुदोह। यत् अमृतं तस्मात् निर्गतं तत् श्रीमद्भगवद्गीता एव। अतः ये सुदयः श्रद्धयाः ध्यानपूर्वकं गीतायाः श्रवणं मननं च कुर्वन्ति, त एव उपनिषत्साररूपिणः अमृतस्य पानं कृत्वा स्वजीवनं कृतार्थं कुर्वन्ति। संक्षेपेण वदामश्चेत् सर्वाण्युपनिषदः गावः श्रीकृष्णदोहकः अर्जुनवत्सः सुदयः भोक्तारः, दुग्धं तु तत् महत् गीतामृतमेव। एवं प्रकारेण अयं श्लोकः गीतामाहात्म्यं वर्णन् स्पष्टयति यत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदां सारसंग्रह सर्वसुलभस्य रूपं वर्तते। वस्तुतः गीतायां ज्ञानयोगः, कर्मयोगः, भक्तियोगः विशदविवेचनं। यद्यपि अत्र ज्ञानयोगस्य सन्दर्भे वयं विचारयाम, तत्र भगवान् वर्णयति यत् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ज्ञानयोगस्य निरूपणं कुर्वन् भगवान् निगदति यत् आत्मा कदापि न जायते, न म्रियते च, न अयं कदाचित् अभूत् न च कदाचित् भविष्यति एव न भविष्यति। स अजन्मा, नित्यस्वरूपः, शाश्वतः, पुरातनतमः च अस्ति। शरीरं छिद्यमानं, भिद्यमानं, दह्यमानं वा यदा नश्यति तदापि आत्मा न कदाचन हन्यन्ते। इदम् अवगम्यते यत् आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचिन् सामान्यलोकः शरीरमेव अहम् इति मन्यते, अतः जन्म मृत्युभयाक्रान्तः भवति। भगवान् स्पष्टं वदति आत्मा जन्म मृत्युचक्रे कदापि न प्रविशति, जायते म्रियते च तत् शरीरम्।

0: ऊर्ध्वमेव उत्तीर्णा भवति। एवं प्रकारेण यः दुःखे अविचलत सुखे निर्लिप्तः राग भय क्रोध त्रयात् पूर्ण मुक्तः च यस्य बुद्धि स्थिराः सः एव साक्षात् स्तधीः मुनि इति कथ्यते। भगवान श्रीकृष्ण अनेन उपदेशेन स्थित प्रज्ञावस्थां तादृशीं परां कोटिं नयति यत् तां प्राप्य मुनः किमपि प्रापणीयं न अवशिष्यते। इदम् एव गीतायां परमं लक्ष्यम्।
1: श्रोताओं, संस्कृत वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना डॉक्टर हरिशंकर डिमरी द्वारा विषय संस्कृति साहित्य एवं गीताश्रम। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:15 है। सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मुकेश के स्वर में गीत।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने मुकेश के स्वर में सुने गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत के अंतर्गत फिल्म पुकार से शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में AR रहमान का संगीतबद्ध किया मजरू और जावेद अख्तर के द्वारा लिखा ये गीत।

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम फिल्म संगीत और इसको आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं सुखविंदर सिंह अलका याग्निक के स्वर में फिल्म ताल से इस गीत को। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत पद किया इस गीत को AR रहमान ने।

0: 3 दशक पहले से बिल्कुल जो दूरस्थ क्षेत्र से ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र वहीं आज भी रेडियो लोग वही उत्सुकता से सुनना जो पहले छे कि जनसंपर्क को साधन आज भी रेडियो था। रेडियो की महत्ता आज भी वही चाहे वो जो समाचारों का क्षेत्र में हो चाहे वो जानकारी का क्षेत्र में हो चाहे संस्कृति संरक्षण का क्षेत्र में हो और आकाशवाणी देहरादून तो ये मामलों में बहुत अच्छा प्रयास कर।
1: कुजानी कितना लोक कलाकारों थे आकाशवाणी ना पहाड़ का जनमानस तक पहुंचे की उन्हें प्रसिद्धि दिले।
2: जो भयों की होनी होनी वो कठराला अनमिल भयों को लोग ठटाला।
1: जीत सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी, गोपाल बाबू गोस्वामी, हीरा सिंह राणा, महेश तिवाड़ी, कपोत्री देवी, प्रीतम भरतवाण जना कितना ही नौछन जोन आकाशवाणी का माध्यम से अपनी पहचान बने।

गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी बोली भाषा का दगड़ी लोक संस्कृति, लोक संगीत और लोक जीवन पर आधारित कार्यक्रम ग्राम जगत ना सिर्फ स्टूडियो में ही कार्यक्रमों को निर्माण नहीं करी, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र का सुदूरवर्ती गांव-गांव पहुंची की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम ग्राम जगत की सबसे बड़ी ताकत बनी। स्कूल नांतिनो आज किलकारी कार्यक्रम प्रस्तुत करनी च हाई स्कूल सुनाऊ जो कि थराली ब्लॉक के एक स्कूल छ।

0: बड़ी सुविधा है हमको से नीचे फिर हॉस्पिटल तो छे लेकिन दीद का सुविधा है हम तो भैरी जान पड़न दे और जो सुविधा भी होता धीरे धीरे लेकिन क्या करे पलायन ज्यादा हो गया है गाँव में लोग भी कम छे यहाँ को से सुविधा जागरूकता बिल्कुल कम हो गई।
1: आकाशवाणी का 90 साल और ग्राम जगत कार्यक्रम का 47 साल से ज्यादा कुछ समय पहाड़ का गोंगों की छुई लगांदू हुंगरा पुरांदू ग्राम जगत इन्हीं एथर बढ़नु छ
2: कार्यक्रम ता एथर बढ़ंदो और सुनदो हीरा सिंह राणा का स्वरमायु कुमाऊनी लोकगीत। ये गीत की फरमेश करीच श्री दिनेश चंद्र थपलियाल विनीता थपलियाल सरोज थपलियाल और उनकी सरा कुटुम्बदरी की तल्या सुना यो गीत।

हीरा सिंह राणा का स्वरमा युछा कुमाऊनी गीत सुनदरो ये गिरिगुंजन कार्यक्रम में आप अपने फरमेश भेज सकते हो। यहाँ के वास्ता हमारो व्हाट्सएप नंबर 7 0 8 8 0 0 0 7 3 1 एकदा फिर बोल दी 7 0 8 8 0 0 0 7 3 1 ये व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पसंद का गीत का बोल गीतांक को नौ अपन पता जग बटेन आप हम तक सुनना छे लेख भेज दिया। हम आपे गवो को गीत भी सुनोला और आपे चिट्ठी को जवाब भी दूला स्वागत भी करला तुम्हारे जरूर भेजा। अब सुन दो मीना वर्मा और दगड़ियों को स्वर मा यू जौन सारी लोकगीत।

मीना बर्मा और दगड़ियों का गया ये जौन सारी लोकगीत की दगड़ संपन्न होनु चो हमारू आज को गिरिगुंजन कार्यक्रम अगल महीना का दूसरो मंगलवार को ये कार्यक्रम मा आपसे फिर भेंट हुई। तब तक अकवास्ता पर दगड़िया शांति बिंजुलता दया अनुमति नमस्कार।

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा?
1: हाँ
0: क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: श्रोताओं, आपने सुना कार्यक्रम गिरी गुंजन, आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 10 बज रहे हैं। समय है लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम खेल दर्पण का। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: करते हैं। और जब बात आईपीएल की होती है तो भारत में ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मनोरंजक और व्यावसायिक मंच बनता है। ये टूर्नामेंट युवा भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ खेलने, आर्थिक मजबूती और खेल को ग्लैमर के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने का अवसर प्रदान करता है। आईपीएल न केवल क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करता है बल्कि पर्यटन, खानपान और अन्य क्षेत्रों में भारी राजस्व उत्पन्न करता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये केवल क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि भारत में क्रिकेट की संस्कृति को बदलने वाली एक
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए अब

0: थे हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ देवराज। श्रोताओं, यूं तो क्रिकेट किसी भी फॉर्मेट में खेला जाए, ये खेल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है और न केवल आकर्षित करता है बल्कि लोग इसे दीवानगी की हद तक पसंद करते हैं। और जब बात आईपीएल की होती है तो भारत में ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मनोरंजक और व्यावसायिक मंच बनता है। ये टूर्नामेंट युवा भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ खेलने, आर्थिक मजबूती और खेल को ग्लैमर के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने का अवसर प्रदान करता है। आईपीएल न केवल क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करता है बल्कि पर्यटन, खान पान, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में भारी राजस्व उत्पन्न करता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये केवल क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि भारत में क्रिकेट की संस्कृति को बदलने वाली एक व्यावसायिक क्रांति है। क्यों है लोगों में और खिलाड़ियों में आईपीएल के प्रति इतना जुनून और इसका क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, आइए जानते हैं शरद श्रीवास्तव से।
2: भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग आज की तारीख में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि पूरे खेल जगत की एक बेहद लोकप्रिय और चर्चित इवेंट बन चुकी है, जिस पर पूरी दुनिया की उत्सुकता भरी निगाहें टिकी रहती हैं। और महज भारतीय क्रिकेट प्रेमी ही नहीं, पूरे क्रिकेट जगत में सभी खेल जानकार, विशेषज्ञ, पूर्व खिलाड़ी तथा आम खेल प्रेमियों के मध्य इस वक्त यदि चर्चा का कोई सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है तो वह आईपीएल ही है। वर्ष 2008 में अपने प्रारंभ के समय जिस आईपीएल की वैश्विक ब्रांड वैल्यू करीब $2 बिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वह आज बढ़कर लगभग 6 गुनी यानी $12 बिलियन हो चुकी है, जो कि भारतीय मुद्रा में तकरीबन 10,200 करोड़ रुपए बैठती है। वर्ष 2008 में बीसीसीआई ने कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ आईपीएल के आयोजन की शुरुआत की थी। यह वो समय था जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट का चलन प्रारंभ ही हुआ था। उस वक्त तक विश्व स्तर पर क्रिकेट में मुख्यतः 5 दिन के टेस्ट मैच और 50 ओवर प्रति पारी वाले एक दिवसीय मुकाबले ही लोकप्रिय हुआ करते थे। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठा था कि क्या T20 फॉर्मेट वाली आईपीएल व्यावसायिक रूप से अपने कदम जमा पाएगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यह सारी आशंकाएं निराधार साबित हुई। आईपीएल न केवल व्यावसायिक रूप से बेहद कामयाब साबित हुई बल्कि इसकी आशातीत सफलता ने पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट को भी लोकप्रियता के चरम पर पहुंचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आईपीएल की सफलता ने दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी व्यावसायिक कामयाबी की एक नई राह दिखाई और नतीजा यह हुआ कि आने वाले सालों में दुनिया के अन्य कई हिस्सों में भी आईपीएल की तर्ज पर प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीगों के आयोजन शुरू हो गए। इस तरह के कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इंग्लैंड की इंग्लिश क्रिकेट लीग, दक्षिण अफ्रीका की SA20, पाकिस्तान की PSL और वेस्टइंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग के नाम लिए जा सकते हैं। इनके अलावा श्रीलंका, USA, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के क्रिकेट बोर्डों ने भी अपने यहाँ प्रोफेशनल T20 लीग के आयोजन प्रारंभ किए। ये अलग बात है कि इन तमाम लीगों में से अधिकांश व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई और कुछ सीजन के बाद बंद हो गई। दरअसल आईपीएल की जबरदस्त व्यावसायिक कामयाबी के लिए जिम्मेदार है इसका सुव्यवस्थित ढांचा और अनुभवी प्रोफेशनल टीम, जो कि मैदानों और क्रिकेटरों के प्रबंधन से लेकर प्रसारण, टिकट बिक्री, प्रचार और आर्थिक मुद्दों तक आयोजन के प्रत्येक पहलू को बड़े प्रभावी ढंग से संभालती है। इस सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि साल दर साल आईपीएल की प्रसिद्धि, लोकप्रियता और व्यावसायिक कामयाबी में बढ़ती ही जा रही है। आज यह न सिर्फ विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग बन चुकी है बल्कि दुनिया भर की तमाम प्रोफेशनल खेल लीगों में भी चौथे नंबर पर आ गई है। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आईपीएल ने इंग्लैंड की मशहूर फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2008 में 8 टीमों के साथ आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था। उस वर्ष शेन वॉन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब जीता था। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें कुल मिलाकर 5-5 बार आईपीएल चैंपियन बनने में कामयाब रही हैं और उनके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार आईपीएल खिताब जीता है। समय के साथ आईपीएल में उतरने वाली टीमों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, साथ ही टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि

0: और विभिन्न टीमों द्वारा अपने प्रमुख खिलाड़ियों को दी जाने वाली अनुबंध राशि भी कई गुना बढ़ चुकी है। 2008 के पहले सीजन में जहां टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक बनने के लिए डीएलएफ समूह ने प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए की बोरी लगाई थी, वहीं आज टाटा समूह ने 2024 से 2028 तक के 5 वर्षों के प्रायोजन अधिकार 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष में हासिल किए हैं। लेकिन आईपीएल की सबसे बड़ी खासियत यह है, अपनी लंबी कामयाब यात्रा के दौरान अब यह महज एक खेल टूर्नामेंट नहीं रहा है, बल्कि एक बहुत बड़ा व्यावसायिक अवसर बन चुका है, जिसका लाभ असंख्य व्यक्तियों, कॉरपोरेट हाउसेस को होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी इससे कई रूपों में लाभान्वित हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की, जिनके लिए आईपीएल के जरिए से सर्वोच्च मंच पर अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका हाथ लगा। इस मंच पर सही वक्त पर चमक जाने वाले कई युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के द्वार भी खुलते देखे गए, और इनमें देशी और विदेशी दोनों ही तरह की प्रतिभाएं शामिल थी। विभिन्न टीमों द्वारा अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी अच्छी खासी रकम में अनुबंधित किए जाने की जो परिपाटी आईपीएल ने शुरू की, उसकी बदौलत क्रिकेट को करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले युवाओं की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। युवा प्रतिभाओं के अलावा खेल से अवकाश ले चुके पूर्व दिग्गजों के लिए भी आईपीएल ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। ऐसे तमाम नामचीन खिलाड़ी आज कमेंटेटर, तकनीकी विशेषज्ञ, कोच के रूप में विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जुड़कर अपनी आजीविका चला पा रहे हैं। अब बात करते हैं देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर आईपीएल के प्रभाव की। एक प्रमुख अखबार के सर्वे के मुताबिक आईपीएल के जरिए से देश में लगभग 12.5 लाख रोजगारों का सृजन हुआ है। इनमें होटल, पर्यटन, टैक्सी, खानपान तथा विज्ञापन सेक्टर में बने अवसर शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अप्रैल और मई के 2 महीनों में, जबकि आईपीएल का सीजन अपने पूरे शबाब पर होता है, उस दौरान देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। सीजन के दौरान विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खेल रहे विदेशी स्टार खिलाड़ियों के प्रशंसक उनका प्रदर्शन देखने के लिए निश्चित रूप से भारत पहुंचते हैं। यदि देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में आईपीएल के प्रत्यक्ष योगदान की बात करें, तो अब तक आईपीएल प्रबंधन, आयकर व जीएसटी के रूप में भारत सरकार को करीब 3,500 करोड़ रुपए की कर राशि अदा कर चुका है। इसे भी आईपीएल के एक सकारात्मक योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आईपीएल आज की तारीख में महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक व्यापक जीवन दृष्टि अर्थात परसेप्शन की शक्ल ले चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर तो वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभाव डाल ही रहा है, साथ ही इसके अनूठे बिजनेस मॉडल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी समृद्धि की एक नई राह दिखाई है।
1: श्रोताओं, खेल न केवल शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि मानसिक मजबूती के साथ व्यक्तित्व विकास में भी ये योगदान करते हैं। इनसे ऊर्जा का सदुपयोग होता है, और आजकल खेल एक शानदार करियर विकल्प भी बन गया है, जो युवाओं को न केवल नाम बल्कि अच्छी आय भी प्रदान करता है। बस आवश्यकता है प्रतिभाओं को खोजकर एक मंच देना, और कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जनपद मथुरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, आइए सुनते हैं जिला खेल अधिकारी राकेश यादव से की गई ये बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
2: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जिला खेल कार्यालय से जुड़कर जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
3: हमारे यहाँ सुबह और शाम, सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक प्रशिक्षण का कार्य चलता है, जिसमें हमारे पास 8 कोचेज हैं, फुटबॉल, हॉकी, फेंसिंग, जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, ये सारे, और स्विमिंग के। हम लोग 8 लोग हैं, तो बच्चे आते हैं यहाँ रोज प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने यहाँ चले जाते हैं, और उनको जितने भी हमारे कोचेज हैं सब बहुत डिसिप्लिन और अनुशासित हैं। बच्चों को स्किल पर और उनकी फिजिकल फिटनेस पे काम किया जाता है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं।
2: और वर्तमान में हमारे जिले के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों से संबंधित किस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं?
3: हमारे पास सभी ग्राउंड आधुनिक तरीके से बने हुए हैं, जैसे फेंसिंग का है, उसमें पिस्ट वगैरह है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, जूडो है, जूडो का हॉल है, मैट्स हैं, कुश्ती है, कुश्ती का हॉल

0: मेंटते हैं, तो सारे उन मानकों पे है जो एक बाहर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेता है। तो वो हमारी सरकार साथ में बहुत अच्छे सहयोग कर रही है, खेलों को आगे बढ़ा रही है, खेलों में बहुत सारे पुरस्कार सरकार के द्वारा, सरकार नौकरियां भी खेल कोटे से देने लगी है, ये सब है।
1: जिला खेल कार्यालय से खिलाड़ी किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में और बताएं।
0: बड़ी सरल प्रक्रिया है, हमारे यहाँ जो कोचेज हैं आठों खेल के या और अन्य खेल के, तो उनमें आता है बच्चा, एक 18 साल से नीचे है, वो 210 रुपये उसका पूरे साल का कार्ड बनता है, जो हमारे यहाँ फीस एक है सरकार द्वारा निर्धारित, उससे लेके 210 रुपये में पूरे साल का एक कार्ड वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने लगता है सुबह शाम आके, वो कार्ड आइडेंटिटी कार्ड रहता है, मिनिमम फीस है आ सकता है, और अपना रजिस्ट्रेशन करा कि जिस खेल में इच्छुक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उस पर फिर हमारे कोचेज उस बच्चे पे काम करते हैं, काम करके वो बच्चा हमारे जिले के लिए, हमारे मंडल के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए खेलता है।
1: जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर आते हैं सीधा अपना यहाँ जुड़ सकते हैं, या वो किसी स्कूल से संबंधित होना चाहिए।
0: ऐसा कुछ नहीं है किसी स्कूल से, लोकल बच्चे गार्जियन आते हैं अपने घर से बच्चे लाते हैं, जरूरी नहीं है कि स्कूल का बच्चा है, सारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो वो इंडिविजुअल गार्जियन ले आता है, कोई स्कूल नहीं आ रहा है, उनकी संख्या नहीं हो रही है, तो वो सीधा आ सकता है, तो ऐसी कोई वो उसमें पाबंदी नहीं है।
1: वर्तमान में किस खेल में विशेष रूप से खिलाड़ियों की रुचि देखने को मिल रही है?
0: यहाँ जो बेल्ट है हमारी मथुरा की या मथुरा के आसपास की, वो कुश्ती वाली है, तो कुश्ती यहाँ का एक समझ लीजिए जनपद का खेल है, यहाँ के लोकल खेल है, तो कुश्ती में ज्यादा बच्चों की रुचि रहती है, तो यहाँ हमारा खेलो इंडिया का सेंटर भी कुश्ती का ही चल रहा है, तो उसमें बच्चे लाभान्वित होते हैं, खेलने जाते हैं।
1: और इसके अलावा और किन-किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है?
0: एथलेटिक्स में है, फुटबॉल में है, सारे बच्चे, जूडो में है, बैडमिंटन में भी है, सारे खेलों में बच्चे पर्याप्त हैं।
1: यहाँ पर स्टेडियम में एक तरणताल बना हुआ है, उसमें क्या विशेष सुविधाएं, क्या उसके लिए यहाँ विशेष कोच रखे हुए हैं?
0: बिल्कुल, स्विमिंग का मैं खुद हूँ, तो मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ, लाइफ गार्ड है, उसकी प्रक्रिया आजकल में पूरी हो जाएगी, रेगुलर चालू हो जाएगा, अभी भी स्विमिंग पूल चल रहा है, उन बच्चों को एडमिशन है जो बच्चे स्विमिंग जानते हैं या स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, उन सारे बच्चों को हम एडमिशन दे रहे हैं और चला रहे हैं स्विमिंग पूल।
1: तैराकी में भी क्या कुछ विशेष रुचि देखने को मिल रही है?
0: हाँ, तैराकी में जो बच्चे हैं वो आते हैं, अपने कॉम्पिटिशन में भाग भी लेते हैं और अपना प्रैक्टिस करते हैं।
1: सरकार के द्वारा खेलो इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ हमारे जनपद के खिलाड़ियों को किस प्रकार मिल रहा है?
0: पूरे इंडिया स्तर पर खेलो इंडिया भारत सरकार की स्कीम है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है पूरे देश में, तो हर एक जनपद में अलग अलग खेल है, हमारे यहाँ कुश्ती का चयन हुआ है, जो कुश्ती खेल है वहाँ 30 बच्चों का चयन किया जाता है, और उन 30 बच्चों को रेगुलर अभ्यास किट वगैरह हमारी सरकार द्वारा दिलाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाता है।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन उनको एक सही मंच नहीं मिल पाता है। तो ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में भी खेलों को लेकर क्या कोई विशेष योजना है?
0: जी बिल्कुल, विशेष योजनाएं इस बार जो विधानसभा स्तर पर विधायक खेल स्पर्धा, जिले स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा, वो उसी का भाग है, जो ग्रामीण अंचलों से जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वो पहले विधानसभा स्तर पर भाग लेंगे, फिर सांसद खेल स्पर्धा वे जिले स्तर पर, और इसके बाद जोन स्तर पर आगरा में जोन होगी, फिर इसके बाद स्टेट होगी, ऐसे उन बच्चों को अवसर दिए जाते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए।
1: मथुरा जनपद में मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा अन्य जगह भी स्टेडियम वगैरह या अन्य सुविधाएं खेलों से संबंधित मौजूद हैं?
0: जी, जैसे हमारा एक समकक्ष विभाग है, हम लोग मिलके काम करते हैं, जिला युवा कल्याण अधिकारी, वो माट में उनका स्टेडियम है, कोसी में है, एक शेरगढ़ में है, तीन उनके बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनके बीओज वगैरह हैं तो उसको देखते हैं।
1: जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन वो प्रतिभावान हैं, तो ऐसे खिलाड़ी अगर खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या सरकार द्वारा उन्हें कुछ सहायता या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है?
0: जी बिल्कुल, कराई जाती है जूनियर स्तर पे, सब जूनियर स्तर पे और सीनियर स्तर पे, हमारे यहाँ एकलव्य क्रीड़ा कोष की व्यवस्था है, जो खेल साथी पोर्टल पे अच्छे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट से लेके 6th प्लेस तक पोजीशन है, वो राष्ट्रीय स्तर पे है और प्रतिभावान है, अच्छे खिलाड़ी हैं, गरीब हैं, उनको एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता उनके उपकरण खरीदने पर,

0: उनके भोजन पर, उनके अभ्यास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा एक कोष बनाया गया है, उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और यहाँ से 4 तीरंदाजी में बच्चे हैं और 2 कुश्ती में हैं, उनको लाभ अभी तक हम 14 लाख रुपए दे चुके हैं तीरंदाजी पे और लगभग 4 लाख रुपए कुश्ती पर।
1: इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है?
0: बिल्कुल, जब बच्चा अच्छा अचीव करने लगता है तो छात्रवृत्तियां हैं, खिलाड़ी को पुरस्कार राशि है जो हमारा विभाग सब देते हैं।
1: आगे आने वाली कुछ विशेष बड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बताना चाहेंगे?
0: हम इस साल 26-27 में बहुत सारी यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे जिले और मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी, तो उनमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे कराना है।
1: यहाँ जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं तो समय समय पर उनको प्रतियोगिताओं के बारे में और ट्रायल्स के बारे में सूचित किया जाता है?
0: बिल्कुल, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से खिलाड़ियों का जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक जनमानस तक हमारी बात पहुंचे, सरकार की बात पहुंचे। सरकार खेल के रूप में बड़ा काम कर रही है तो बच्चे पार्टिसिपेट करें और प्रतियोगिताओं में भाग लें।
1: ऐसे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देती हैं और उनको खेलों से दूर रखते हैं? देखा जा रहा है कि आजकल खिलाड़ी जो हैं खेलों में भी बड़ा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपना अच्छा कैरियर बना रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा इसको लेकर आपका?
0: खेल में अनुशासित रहें बच्चे और अपना बेस्ट करें, ये नहीं देखें कि ये आइडियल, सबके आइडियल होते हैं, उनके भी आइडियल हैं, उन आइडियल को पकड़ें। जैसे आप एथलेटिक्स के हैं तो पीटी ऊषा वगैरह या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, हमारे थ्रोअर हैं अभी चोपड़ा जी, उनका इतिहास देखें कि इतना कितना ही वर्क करते थे जब ये सफल हुए, तो उस पर फोकस करना पड़ेगा। बच्चों को जो ट्रेनिंग करने वाले हैं तो वो जरूर वो अचीव करेंगे जो उनने किया। नीरज चोपड़ा ने जो अचीव किया, हमारी उड़न परी कहलाने वाली पीटी उषा थी, उनने बहुत अचीव किया। हमारे नामी ग्रामी आप जानते ही हैं, दद्दा ध्यानचंद का नाम सुना होगा आपने, वो तो महान हस्ती थे। उनके जन्म दिवस पे हम लोग 29 अगस्त को बढ़िया खेल डे बनाते हैं और बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं।

0: और अब श्रोताओं खेल की सुर्खियों के साथ हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
1: खेलों में सबसे पहले बात खेल हॉकी की। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह में महिला टीम की स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर और पुरुष टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 1980 के मास्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में हार्दिक के अलावा सुखजीत, संजय और अभिषेक शामिल हैं। 2025 की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब बलजीत सिंह पुरस्कार विदु देवी खारी बम को दिया गया, जबकि हॉकी इंडिया प्रगट सिंह सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार संजय ने जीता। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अजीत पाल सिंह पुरस्कार सुमित को और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का धनराज पिल्ले पुरस्कार सुखजीत सिंह को मिला। सभी खिलाड़ियों को 5-5 लाख का चेक दिया गया। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 48 टीमें तैयार हो गई हैं। पिछले 2.5 साल से क्वालिफाइंग प्रक्रिया चल रही थी। उत्तरी मेक्सिको के मॉन्टरी में मंगलवार को खेले गए अंतर महाद्वीपीय प्लेऑफ में इराक ने बोलिविया को 2-1 से हराकर 48वां और अंतिम स्थान हासिल किया। यह मैच बोस्निया हर्जेगोविना की यूरोपीय प्लेऑफ में 4 बार के चैंपियन इटली पर पेनल्टी शूटआउट में उलटफेर भरी जीत के कुछ घंटे बाद खेला गया। क्वालिफाइंग के आखिरी दिन यूरोप की 8 टीमें 4 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाली

एक अन्य टीम कांगो थी जिसने मेक्सिको में जमैका को 1-0 से हरा दिया। स्वीडन, तुर्की और चेक गणराज्य तीनों ने यूरोपीय प्लेऑफ में क्वालिफाइंग किया है। स्वीडन ने पोलैंड को 3-2 से, तुर्की ने कोसावा को 1-0 से, चेक गणराज्य ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। विश्व कप 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा कि विश्व कप फुटबॉल में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने मेलबर्न में जबरदस्त कारनामा किया। वे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के चैंपियन बन गए हैं। 22 साल के अल्काराज ने पुरुष एकल के फाइनल में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 से हराया। अल्काराज का यह 7वां ग्रांड स्लैम है। पहली बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा था। सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रांड स्लैम जीतने का सपना टूट गया। हालांकि जोकोविच के पास हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडर और राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम्स से एक और अधिक खिताब है। सेरेना के नाम 23 एकल खिताब है। जोकोविच टेनिस के दमदार खिलाड़ी रहे हैं। कोर्ट पर उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। उनकी सर्विस और बैकहैंड ड्राइव देखते ही बनता है। जोकोविच से आने वाले समय में भी बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। भारत में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी और क्रिकेट को जरूर शामिल किया जाएगा, जबकि कबड्डी, योगासन, खो खो और मलखम जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों में से 2 को जगह दी जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे की अध्यक्षता में इसके प्रतिनिधि मंडल ने पिछले सप्ताह मेजबान शहर अहमदाबाद में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। हमारे पारंपरिक खेलों में से कबड्डी, मलखम, खो खो और योगासन में से 2 को शामिल करने का प्रयास है। ग्लासगो में इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में बजट में कटौती के कारण क्रिकेट और हॉकी को शामिल नहीं किया गया है। खेल मंत्री ने कहा कि भारत में होने वाले खेलों में इसकी वापसी होगी। भारत में अब खेलों को प्राथमिकता में रखा जा रहा है। भारत में 2010 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। भारत में फॉर्मूला 1 रेस की वापसी होगी। इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत में 2013 के बाद रेस नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के 10 वर्षीय आरित कपिल स्पेन के मेनारका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के अंतिम दौर में ऑस्ट्रेलिया के सैमुअल असाका के साथ ड्रॉ खेलकर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर आईएम नाम हासिल करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आरित ने यह उपलब्धि 10 साल 7 महीने की उम्र में हासिल की। प्रतियोगिता में आरित का सबसे शानदार प्रदर्शन अर्जेंटीना के 12 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ओरो के खिलाफ रहा, जिन्हें शतरंज की दुनिया का मेसी कहा जाता है। टिपेश सिंगेमन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट के 31वें संस्करण में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने शानदार शुरुआत करते हुए दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ड्रॉ पर रोक दिया। मैच के दौरान कार्लसन ने क्वीन साउंड पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने सटीक बचाव करते हुए 24वीं चाल चलकर पास्ट प्यादे के खतरे को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े को सक्रिय करते हुए स्थिति को सरल बनाया। रुक के आदान प्रदान के बाद सफेद मोरों के पास जीत का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ये टूर्नामेंट क्वालिफाइंग शतरंज के सबसे मजबूत आयोजनों में से एक माना जाता है। इसमें 2024 के विजेता नॉर्डरबैक, 2021 के चैंपियन जॉर्डन वान फॉरेस्ट और स्वीडन के नंबर 1 खिलाड़ी निल्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल में आईपीएल का 19वां संस्करण चल रहा है। ये टूर्नामेंट मई के अंत तक चलेगा। इस समय आईपीएल टूर्नामेंट अपने रोमांचक दौर में चल रहा है। प्रत्येक टीम प्लेऑफ में आने के लिए संघर्ष कर रही है। टूर्नामेंट में अब तक 50 से ज्यादा मैच हो चुके हैं। इस समय में खेले जा रहे सभी टीमों के सभी मुकाबले टूर्नामेंट के लिए अहम माने जा रहे हैं। अभी तक पहले नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स, तीसरे स्थान पर आरसीबी और चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स।

0: जैसे टीमें हैं। इस बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने सभी को प्रभावित किया है। सूर्यवंशी ने आकर्षक क्रिकेट खेली है। सूर्यवंशी बहुत जल्द भारतीय टीम में खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा, संजू सैमसंग, रिंकू सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स की दो बार मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आईपीएल क्रिकेट अपने चरम पर है, कौन जीतेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आईपीएल क्रिकेट भारतीयों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। खेल जगत में यह महीना उपलब्धियों और संघर्ष से भरा रहा। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के इस अंक में बस इतना ही। आलेख, वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुतकर्ता थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। समय हो चला है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का।

आप सभी का स्वागत है श्रोताओं आपके अपने कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज के लिए मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्वेता शर्मा, लेकर आ गई हूं आप सभी के पसंद के चुनिंदा गीत। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जल्द ही, परंतु जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताते चले कि आप अपनी पसंद के गीत हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा 7088-0007-31 पर, यानी 7088-000-731 पर। और हमारे जो सुनने वाले लगातार दर्शक हैं, अक्सर सुनते हैं, उनकी फरमाइशें भी आनी शुरू हो चुकी हैं, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस आप लोगों की ही पसंद के गीतों के साथ। पहले गीत की फरमाइश करने वाले हमारे जो श्रोता हैं वे हैं राजनगर कांति निकेतन, कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र गुप्ता, सिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता, लखनऊ ऐशबाग से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, रश्मि गुप्ता और नीलम गुप्ता। इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ वे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। इनके साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता जो कि है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। इनके साथ ही देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला निवासी सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला चोपड़ा, दिनेश चोपड़ा, तनु, नानू, राधिका, रानी गुप्ता, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी गुप्ता, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आर एस आहूजा, रजत आहूजा, सोनिया आहूजा, तनीषा आहूजा सीमा द्वार से और सभी चावला फैमिली मेम्बर्स की तरफ से। चलिए आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म सिलसिला से ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में।

अगले गीत की फरमाइश करता है गंज डंडवारा से शमसुल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान खान फैजान खान अनू खान उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी इनके साथ ही सुनना चाहते हैं राजेश्वरी सागर

अधिकारी निवास, मिलन विहार, GMS रोड, देहरादून से। और इनके साथ जुड़ने वाले हमारे अन्य श्रोता हैं, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। और इनके साथ ही साथ जुड़ने वाले हमारे जो अन्य श्रोता हैं वो हैं बिलासपुर ताड़ा हरमत नगर से अब्दुलवाहिद अंसारी, आमना अंसारी, नबीस अंसारी, साजेब अंसारी, साजिया अंसारी। और इनके साथ ही सुनने वाले श्रोता हैं कस्बा चिलकाना, ज़िला सहारनपुर से एम ज़रीफ अंसारी, नैम अंसारी, डॉक्टर आमिर मुन्ना नसीम। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में।

लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म दोस्ताना के इस गीत की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं शांति निवास लेह गांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से, कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े, दीपक कुरहाड़े, और इनके साथ ही सुनने वाले श्रोता पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, और साथ ही गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, और साथ ही सुनने वाले श्रोता बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, रचिता मस्कीन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, रिधान खुराना, और इनके साथ ही सुनने वाले श्रोता हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं इस गीत को।

अगले गीत की फरमाइश करता है अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। और आप सुनना चाहते हैं फिल्म उपहार से लता मंगेश मोहम्मद रफ़ी के स्वर में इस गीत को। और इनके साथ ही साथ हमारे सुनने वाले श्रोता जो जुड़ रहे हैं वो हैं गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, और इनके साथ ही साथ ऊपर कोट मोहल्ला चौकुंठी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। और इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, रसीद वारसी। और आइए आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी के स्वर में सुनते हैं फिल्म उपहार के इस गीत को।

अगले गीत के हमारे फरमाइश करता है गांव खरखड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट, तमन्ना कांगड़ा। इनके साथ ही साथ हमारे सुनने वाले श्रोता हैं जो कि जुड़ते हैं हमारे साथ, भाई रफत साहब, सैयद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोज़ा मुस्कान और अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी, मोहल्ला बारादरी, महमूद खान रामपुर से। और इनके साथ ही जुड़ने वाले हमारे जो अन्य श्रोता हैं वो हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। और आप सुनना चाहते हैं फिल्म कुदरत से लता मंगेशकर के इस गीत को।

और प्रीत बराई से आप ये गीत सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। और हमारे श्रोता जो सुनना चाहते हैं किशन वंजानी, नीलम, स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन महाजन और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार, दिल्ली से।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर समाप्त होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, अब समय हो चला है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित

0: साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सकें। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA.